इसके अलावा जानकारी वृक्षारोपण की पूर्व तैयारी कैसे करें। राजस्थानी लोक संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:30। रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे का समय रहेगा न्यूज एट 9 का। राजस्थानी लोक संगीत आप सुन पाएंगे 9:15 पर। राजस्थान दर्शन आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 10 बजे। रात 10:30 पर सुनिएगा सुगम संगीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत सुन रहे हैं।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।

नमस्कार साथियों, हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम चिंतन की एक और नई कड़ी को लेकर के। यानी जब भी हम कभी कहीं पर भी बातचीत करते हैं, काम करते हैं, और काम करने का हमारा जो तरीका होता है उसमें जिस तरह के भाव जुड़े हुए होते हैं उनके अनुरूप ही हमारे काम का परिणाम हमें मिलता है।

हम किसी का सहयोग लेकर के आभार व्यक्त करते हैं, यानी कृतज्ञता की भावना को हम जताते हैं, तो ये हमारी सकारात्मकता का मूल आधार होती है। जब हम धन्यवाद कहते हैं, किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो ये एक अच्छे शिष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा जो मनोमस्तिष्क है उसमें जो नकारात्मक भाव है वो निकल करके आशावादिता की ओर झुकते हैं, खुशी मिलती है, मन प्रसन्न रहता है। किसी के प्रति किए गए काम के प्रति हमेशा हमें आभार जताना चाहिए। इस आभार व्यक्त करने मात्र से ही जो तनाव है वो कम होता है, चिंता कम होती है, यानी हमें मानसिक शांति मिलती है। जब आप बहुत सी चीज़ों को महत्व देते हैं और जो आपके आसपास के अच्छे रिश्ते हैं या स्वास्थ्य है या कोई भी जीवन में तलाश किया जाने वाला अवसर है, तो आप में से शिकायत करने की आदत अपने आप ही कम हो जाती है। यानी कि जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो नकारात्मक विचार वहीं पर ही रुक जाते हैं। और अपनों के प्रति जब कभी आपने आभार व्यक्त किया है तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि प्रेम बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आपसी जो रिश्ते होते हैं उसमें भी सहयोगात्मक भावना है, यानी हमारे जो रिश्ते होते हैं वो मजबूत बनते हैं। सकारात्मकता सामाजिक जो वातावरण है उसका निर्माण करती है, बढ़ता है आत्मविश्वास और इससे हमें उपलब्धियां हासिल करने में मार्ग है वो सरल बन जाता है। जीवन की छोटी छोटी सफलताओं के लिए अगर हम जो राह में हमारे साथी बने उनका आभार व्यक्त करते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार

दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। हम शाम को सोते समय एक बार अपने पूरे दिन का अगर अवलोकन करें कि आज हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या कौन लोग हमारे सहयोगी रहे, और उनके प्रति अगर आप ये आभार व्यक्त करते हैं तो आपके जो सकारात्मक भाव है वो हृदय में संचरित होने लगते हैं। और जब किसी की आभार व्यक्त करने के दौरान आप सच्चे मन से तारीफ करते हैं तो कोई भी इसका आभार व्यक्त होने के साथ ही अगले के मस्तिष्क में भी खुशी का संचार होता है। धन्यवाद कह देना मात्र ही आभार नहीं है, इससे धन्यवाद कहने के साथ साथ आपके जो भाव हैं, जो कहने के बोल हैं, वो भी सकारात्मक होने चाहिए। और नहीं तो अगर हम सुबह उठकर के प्रकृति को भी एक बेहतर दिन देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें।

अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। सुबह के 6:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अनूप जलोटा के स्वरों में अभी आप कृष्ण भक्तिमय रचना सुन रहे थे। कार्यक्रम था वंदना। यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम

गीत बाहर कार्यक्रम के आगाज में लीजिए, सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये नगमा, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में लीजिए सुनते हैं मिशन कश्मीर फिल्म का ये गीत। बोल समीर के हैं और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चोरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

0: कविता कृष्णमूर्ति अभिजीत की आवाज में मोहब्बत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। श्रोता इस समय आकाशवाणी चुरू से सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत बहार।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चुरू।

मुझसे दोस्ती करोगे। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वरों में। आनंद बख्शी की बोल है, राहुल शर्मा का संगीत है।

अभी आप गीत बाहर कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 107 MHz पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान उत्तरकांड से संकलित एपिसोड 382। कलाकार अनुराधा पुडवाल और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है ये मनोहारी रूप, लाल लाल हथेलियां मानो कमल की रक्ताभ पंखुड़ियां हों, भुजाओं पर

अभी आप श्री रामचरितमानस गान सुन रहे थे, एपिसोड था 382। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 107 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

नमस्कार साथियों, हाजिर हो गए हैं एक और कड़ी लेकर के नमस्कार चोरों की। काश ऐसा होता कि हम आतंकवाद को पूरी तरीके से रोक पाते। 21 मई यानी आज है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। इसका उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद, हिंसा और समाज पर इसके विनाशकारी प्रभाव के खतरों के बारे में जागरूक करना है। स्कूल कॉलेज में जितने भी आतंकवादी शक्तियों के खिलाफ एकता के महत्व के बारे में जानकारी देना, जनता को शिक्षित करना है और जितने भी सार्वजनिक जो संस्थान है उसमें भी हम हमारे राष्ट्र की अहिंसा के प्रति जो प्रतिबद्धता है उस पर बल देते हैं और अपने देश की अहिंसा और सही सहिष्णुता की परंपरा में अटूट विश्वास रखते हुए हमें आतंकवाद और हिंसा के सभी रूपों को अपनी शक्तियों से विरोध करने का हम संकल्पबद्ध होते हैं। ये दिवस हमें शांति, सामाजिक सद्भावना, सभी मनुष्यों के बीच में आपसी समझ को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए मानव जीवन के मूल्यों को खतरे के डालने वाली जितनी भी विघटनकारी शक्तियां हैं उससे लड़ने का संकल्प दिलाने के लिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चोरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस एक प्याली चाय सिर्फ स्वाद नहीं है, बल्कि किसानों की मेहनत और अपनों का प्यार भी है।

दुनिया भर में हर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को उजागर करना और उसके स्वास्थ्य लाभों के प्रति जानकारी देना, चाय उत्पादक किसानों और श्रमिकों को सम्मान देना है। चाय और भारत का रिश्ता तो बेहद ही गहरा और पुराना भी है और इसीलिए जो चाय उत्पादक देश हैं वे जो चाय दिवस मुख्य रूप से 15 दिसंबर को मनाते हैं, जिसमें भारत और श्रीलंका आदि भी शामिल है। लेकिन आज जो चाय दिवस मनाने का उद्देश्य रहता है कि श्रमिकों को सम्मान देना है। चाय के बागानों में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनको उनका उचित वेतन, स्वास्थ्य, सुरक्षित काम की स्थितियां और मानवाधिकार की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। और अगर हम इसका सांस्कृतिक महत्व देखें तो ये मेहमान नवाजी के लिए, सामाजिक मेलजोल के लिए और दिन भर की थकान मिटाने का भी एक अहम हिस्सा रहती है।

अपने भारत में चाय की कई किस्में लोकप्रिय रहती है। असम की कड़क चाय, दार्जिलिंग की सुगंधित चाय, मसाला चाय और हमारे राजस्थान के कई हिस्सों में मिलने वाली खास कुल्हड़ और मटका चाय।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।

जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। अगर हम ये सकारात्मक सोच निरंतर अपने बनाए रखेंगे मनोमस्तिष्क में, तो इसी सकारात्मक सोच से हमारी नई ऊर्जा है वो विकसित होती चलाई जाएगी। हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारे काम करने की जो शैली है, उसमें अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो हमारा जीवन है वो सुगम हो जाएगा, और इस तरीके से जो मानसिक तनाव है उससे भी मुक्ति मिलेगी। यानी सकारात्मक विचारों से तनाव, चिंता, डिप्रेशन दूर होते हैं और आप हर चुनौती का डट करके सामना कर पाते हैं। आशावादी दृष्टिकोण रखने से रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती है और हृदय जैसे रोग हैं उनकी समस्याओं का खतरा भी कम होता चला जाता है, और इससे हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सकारात्मक जो सोच होती है उससे हमारी जो मानसिकता असफल होने की है उससे हम उभरते चले जाते हैं, और हमारा जो ध्यान है वो लक्ष्य के प्रति ही केंद्रित होता है। हम कृतज्ञ बनते हैं, कुछ भी हमारे जो आसपास होता है उसके प्रति हमारा सकारात्मक भाव है वो बना रहता है। हम ईश्वर के प्रति भी एक सकारात्मक सच्ची श्रद्धा रखते हैं और जीवन में उसका भी हम धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता उसके प्रति हम व्यक्त करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें व्यवहारिकता के और अधिक करीब ले जाता है, तो हमें अपने जीवन में निरंतर ऐसे ही लोगों से जुड़े हुए रहना चाहिए जो आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, सकारात्मक भाव रखते हैं, और इससे आपका उत्साह बढ़ेगा। और जो भी आप फैसला लेते हैं, जो भी आप निर्णय लेंगे, जब भी कोई काम करेंगे तो वहां जो परिणाम है वो भी आशा के अनुरूप भी आएंगे जब आप सकारात्मक होकर के किसी भी काम को करते हैं। सकारात्मक सोच मनोवैज्ञानिक और जो वैज्ञानिक पहलू है उन दोनों पर ही सही और सटीक और खरी उतरती है कि जितना हम सकारात्मक भाव से काम करेंगे उतना ही हम अपने लक्ष्य के करीब चले जाएंगे, और सकारात्मक सोच के साथ में हम में रचनात्मकता का भाव है वो बढ़ता चला जाएगा, और हम एक अच्छी तरीके से लोगों को भी समझ पाएंगे और हमारे जो भाव है वो भी दूसरों तक संप्रेषित कर पाएंगे। यानी सकारात्मक सोच अक्सर आत्मसंवाद से शुरू होती है और आत्मसंवाद मन में चलने वाले अनकहे विचारों की एक अंतहीन धारा है। तो कहने का मतलब यही है कि आप निरंतर किसी काम को सफल होने के लिए ही अपने मनोमस्तिष्क में विचार करके उस कार्य की ओर लग जाइए, और तभी आप है वो सफल हो पाएंगे।

श्रोता समय सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से कार्यक्रम नमस्कार चुरू। बात करते हैं पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल के उन्नयन की। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन का अर्थ ये हुआ कि युवाओं को समकालीन उद्योगों की मांग के अनुसार सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान से तैयार करना है। ये शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक ज्ञान से आगे बढ़कर डिजिटल साक्षर, प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए रोजगार के अवसरों को कई गुना बढ़ा देती है और इससे रोजगार और स्वरोजगार में वृद्धि होती है। नौकरी खोजने वाले जो लोग हैं वो नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाले आत्मनिर्भर बन सकते हैं। पारंपरिक शिक्षा की तुलना में तकनीकी शिक्षा सीधे तौर पर उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के आधारित ये कौशल उन्नयन विकास योजना है। इसमें डिजिटल कौशल, व्यवसायिक ट्रेंड और सॉफ्ट स्किल है वो सिखाई जाती है, जिसमें समस्या समाधान है और तकनीकी संचार इसके अंतर्गत शामिल रहता है। और इसके में कौशल विकास सेल है, जन शिक्षण संस्थान है और TST योजना जो कि औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी जो ITI के बीच में एक साझेदारी है, जिससे होगा यह है कि जो व्यवहारिक प्रोजेक्ट है, प्रमाणिक जो पाठ्यक्रम है और जो इंटर्नशिप आदि जो उद्योगों के साथ जुड़कर काम सीखने का अनुभव है इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रोताओं ये जानकारी थी तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल के उन्नयन की। तो श्रोताओं ये था आज का नमस्कार चुरू कार्यक्रम। कार्यक्रम से हमें दे अनुमति, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। हम आपको याद दिला दें, 8:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले मॉर्निंग न्यूज, और अभी 8 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहां भारत की बहुपक्षवाद

0: वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
5: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने जो TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
1: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह

सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को

0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। AI से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, CBSE की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने CBSE के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, UGC नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग श्वांगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने NEET UG पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: श्रोता आकाशवाणी चुरू से सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर संगम। लीजिए सुनते हैं अगली गजल पंकज उदास की आवाज में।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: सुर संगम कार्यक्रम में अभी आप पंकज उदास की आवाज में गाई नाच में सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 107 MHz पर सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को है, कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार,

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आम जन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कल अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की। दोनों देशों ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्यन्मुखी रोड मैप देगी।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। ये बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबैट सामग्री और अपुष्ट जानकारी फैलाते हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के ठुम्बड़ गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिनमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी। इस पर मुख्यमंत्री ने एनिकट, हैंडपंप और तालाब बनाने सहित कई कार्य स्वीकृत किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गांवों की मजबूती के लिए काम कर रही है। पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है।
2: हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम नई तकनीकी से कैसे कर सकते हैं, कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहाँ आवश्यकता है जिसको हमारी खेती होती है, उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारे माता बहने, हमारे मजदूर आर्थिक रूप से संबल कैसे हो। और ये जब संभव है, जब हम गांव की छोटी छोटी बातों को, गांव के लोगों का मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत बनाए।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम

0: में भाग लिया। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। श्री शर्मा ने किसानों से प्राकृतिक खेती और उन्नत तकनीक को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात कही। मुख्यमंत्री आज शाम डूंगरपुर पहुंचेंगे। वे वहां कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे जालौर रेलवे स्टेशन से भुज दिल्ली वाया भेलड़ी जालौर पाली मारवाड़ जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस रेल सेवा के जरिए जालौर पहली बार राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ेगा। ये ट्रेन अंजार गांधीधाम भचाऊ भेलड़ी धनेरा रानीवाड़ा मारवाड़ भीनवाल मोदरान जालौर मोकलसर समदड़ी लूनी पाली मारवाड़ मारवाड़ जंक्शन ब्यावर अजमेर किशनगढ़ जयपुर जंक्शन जयपुर गांधीनगर स्टेशन बांदीकुई अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ये ट्रेन कल उद्घाटन स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी। इसके बाद इसे नियमित कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। आमजन को किसी भी प्रकार की घबराहट में आकर अनावश्यक खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। कल राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर मुख्य सचिव ने जयपुर सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान देश की प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क प्रणाली से जुड़ा हुआ है, के माध्यम से पेट्रोल डीजल और एलपीजी की नियमित आपूर्ति लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने भी प्रदेश को आश्वस्त किया है कि भविष्य में भी आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि अधिवक्ता केवल न्यायालय में पैरवी करने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। उन्होंने कहा कि समाज में न्याय की स्थापना, आमजन के अधिकारों की रक्षा और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल पावटा में न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ कार्यालय के लोकार्पण और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा कि एक सफल अधिवक्ता वही है जो अपने मुवक्किल के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का हम सभी को पालन करना है, बचत करना हमारी परंपरा भी रही है।
1: मोदी जी का आह्वान आम जन के लिए है, जनता में इसका बहुत फायदा मिल रहा है, इसलिए हमारा भारतवासियों का आने वाला भविष्य सुरक्षित है अपेक्षा अन्य देशों की।

0: और थोड़े दिन बाद में जो घटनाक्रम में निपट जाएगा उन्हें सामान्य स्थिति।
1: राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इसे लेकर जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा आज डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इस दौरान गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि गोडावण संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं।
2: गोडावण दिवस को लेकर स्वर्ण नगरी में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा गोडाउन संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दौरान गोडाउन प्रतिमाओं का अनावरण भी किया जाएगा। वहीं आज जैसलमेर शहर के उत्कृष्ट जैन भवन में गोडाउन दिवस समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि गोडाउन के संरक्षण के लिए जैसलमेर के रामदेरा व सुदासरी में विशेष ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां AI तकनीक से इनकी आबादी बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य पक्षी के सुरक्षित आवागमन के लिए रामदेरा में एक विशेष टनल का निर्माण भी करवाया जा रहा है। मनीष व्यास, गोडाउन दिवस को लेकर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल और LPG का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है।

समूह स्वरों में अभी आप देशगान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 107.7 MHz पर। मरुवाणी लीजिए पेश है इस कार्यक्रम में लोक संगीत।

सीमा मिश्रा की आवाज में भी आप लोग संगीत सुन रहे थे। मरुवाणी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक।

कभी ठहरता नहीं है, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें। ये गाना हमें यही संदेश देता है कि समय कभी आपका इंतजार नहीं करता है। समय लगता है सपनों की उड़ान भरने में, हिम्मत लगती है उनको सच कर देने में। संघर्षों की आंच पर खुद को तपाना होगा, मुसीबत से खुद को बाहर निकालना होगा। रोते रहोगे तो रोते रह जाओगे, हौसलों से कदम बढ़ाओ, मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। ये संदेश फेसबुक के माध्यम से हमें भेजा है गाँव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा ने। कार्यक्रम दिल से दिल तक में हम शामिल कर रहे हैं फेसबुक कमेंट्स आप सभी के, जो इस कार्यक्रम में आपने हमें भेजे हैं। सतीश अनेजा और विमला अनेजा लिखती हैं, जिस दिन जिस पल आपको ये एहसास हो जाए कि सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है, आप बस धैर्य के साथ एक अंतिम प्रयास जरूर कर लेना, वो आपको आपके मुकाम तक जरूर पहुंचाएगा। ये ईश्वरीय परीक्षा है, ये वो घड़ी है जहां अगर आप टिके रहते हैं तो अंधेरे में भी रोशनी दिख जाती है, और जब जिंदगी के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक दरवाजा जरूर खुला रहता है।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

अगला संदेश कार्यक्रम दिल से दिल तक में शामिल करते हैं सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। लिखते हैं कि इस गर्मी के मौसम में मटके का ठंडा पानी हमें सादगी, सेहत और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में बाहर की गर्मी में भी शांत और शीतल अंदर से सकारात्मक बने रहते हैं। धीरज और शीतलता के साथ जिस प्रकार मटका भीषण गर्मी को भी सहन करता है, उसी तरह पानी को धीरे धीरे प्रकृति के रूप में ठंडा करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन की परेशानियों से धैर्य पूर्वक रहकर शांत चित्त रहने का पाठ सिखाता है। प्रकृति से जुड़ाव, ये मिट्टी से बनी एक प्राकृतिक दिन है जो हमें संस्कृति और पर्यावरण के करीब रहने का संदेश देती है।

चिनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से लिखते हैं बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता, राम, श्याम, रवि, आर्यन, रंजीता और रामानंद कुशवाहा। लिखते हैं गर्मी का मौसम पूरे रंग पे है, ऐसे में बीते दो दिन से प्रदेश में हीट वेव यानी गर्म हवाओं का दौर अपना पूरा असर दिखा रहा है। अस्पतालों में गर्मी के कारण, लू के कारण बीमार बहुत से लोग पड़े हुए हैं, तो मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। घर पर भी छोटी छोटी बातों का ख्याल हमें जरूर रखना चाहिए। गर्मी यानी लू की चपेट में आने से बचा जा सकता है अगर हम खास तौर पर छाछ, कच्चे आम, पर्याप्त मात्रा में पानी आदि पीते रहें, नींबू पानी भी पीते रहें, खीरा तरबूज आदि पानी की जो वस्तुएं हैं वो भी खाते रहेंगे, तो इस गर्मी के मौसम में हम लू से बचे रहेंगे।

रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये संदेश है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। लिखते हैं, सूर्योदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं।

0: विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कार्यक्रम दिल से दिल तक में अगला संदेश हमें लिख भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल ने। लिखते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग वे होते हैं जो खुद दर्द में होते हैं और दूसरों को हंसने की कोशिश करवाते हैं, जो अपने आंसू छुपाकर किसी और की खुशी बन जाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, पर मिल जाए तो संभाल कर जरूर।

श्रोता इस समय आकाशवाणी चूरू से सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक। इस कार्यक्रम में अगला संदेश हमारे पास है पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेश विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष का। लिखते हैं, वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी संघर्ष के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते हैं जितनी हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए, वे आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जो आपकी जिंदगी की उड़ान को सहज और सरल बना देगा। अगला संदेश भैरूलाल वाकतरिया, धाकड़, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से। यादें एक तरह से चलचित्र के समान होती है जिसमें हमारे द्वारा निहारी गई जो प्रकृति है नजारों को हूबहू हमारे सामने लाती है। शांत मन से यादों में उतरते रहने से अपने आप हमारे द्वारा देखे गए दृश्य सामने आते रहते हैं। हमें समय समय पर अपनी यादों को ताजा करते रहना चाहिए। और अगला संदेश हमारे पास है संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा का, पोटिया कला दुर्ग से। हर आने वाला दिन एक बेहतर दिन होता है, सकारात्मक सोच के भाव से आपने हमें ये संदेश भेजा। और एक और संदेश हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं माबुलवाड़ी महाराष्ट्र से, सोपान ताइडे, वसंतराज भोज के, निवृत्ति आडोरकर। लिखते हैं कि जमाने में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपसे परिचित नहीं हो फिर भी आपके है वो करीब आना चाहे। इसलिए जो कोई अनजान व्यक्ति भी अगर आपसे किसी तरह की कोई दोस्ती वगैरह करना चाहता है तो पहले उसकी जान पहचान जरूर कर लीजिएगा।

साहिराम नगर पीथीसर से हरि नायक, दुर्गाराम बुडानिया और बीरबल राम इंदलिया लिखते हैं, समय ने सिखाया कोई भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता और जिंदगी ने सिखाया कि अपनों का चेहरा भी एक वक्त पर बदल जाता है। एक और संदेश हमारे पास है परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रतेश और पूरे संघई परिवार का। आप लिखते हैं कि जीवन में मेलजोल ऐसे लोगों के साथ रखिएगा जो आपकी भावनाओं को समझे, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना रहे जो सामने मीठा बोले और पीछे से छुरा घोंपे। एक और संदेश ऊपर कोटमल चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सहनाज सरफत, फरदीन सुहान, अरजान अब्बाज और इनका अब्बासी परिवार। आप लिखते हैं कि संगीत दिल को बड़ा सुकून पहुंचाता है, तो जब भी समय मिलेगा

पलारी छत्तीसगढ़ से लिखते हैं नितेश कुमार देवांगन। कहते हैं कि रिश्ते में सॉरी और थैंक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ये दो लफ्ज रिश्तों को बचाने वाले होते हैं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: ये आकाशवाणी का प्रसारण है. आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू.

श्रोता आकाशवाणी चुरू से सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक। इस कार्यक्रम में ये संदेश शामिल करते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, मोहिनी, बलवीर और ऋतिक ने। आप लिखते हैं कि संगीत में वो जादू है जो उदास मन को भी खुश बना सकता है। एक और संदेश है रियासत हुसैन सदीकी, नजमा बेगम सदीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। आप जसपुर उत्तराखंड से लिखते हैं। आप लिखते हैं कि संगीत के माध्यम से हम अपने दिलों के भाव दूसरों तक प्रेषित कर सकते हैं। और ये अगला संदेश हमें लिखा है नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी और नवेद हसन अब्बासी का, मारहारा दरवाजा एटा से। आप लिखते हैं कि गीत के माध्यम से हम दूसरों तक अपने भाव है बहुत अच्छे से बता पाते हैं।

कार्यक्रम में अगला संदेश शामिल करते हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव और आरव अर्पिता डाबकी रोड अंकोला से। आप लिखते हैं कि हमें माता पिता का जीवन में सम्मान जरूर करना चाहिए, वो हमें

अपने आप को खोकर भी बनाने की इच्छा रखते हैं और जैसा हम उनके प्रति सम्मान रखेंगे तो हम भी आगे उसी तरह की एक और नई पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं। आकोट से लिखते हैं विनायक बेड़े, श्रीमती मंगला बेड़े, शुभम, विजय, पवन और संजीव। आप लिखते हैं कि संगीत वो माध्यम है जो दिलों को तो सुकून पहुंचाता ही है, जब खाली समय में संगीत सुना जाए तो दिमाग को भी शांत करता है।

अगला संदेश लेते हैं गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, दीपल और हर्ष का। ये कहते हैं कि कई बार हमारी जो आंखें हैं हम बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाती है, यानी कि आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है और आपकी आंखें हैं वो सामने वालों को

श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से कार्यक्रम दिल से दिल तक। हमारी तमाम श्रोताओं से ये गुजारिश है कि बहुत से श्रोता ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी पसंद की फिल्म की फरमाइश का गाना लिखकर हमें भेजते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम श्रोताओं के चुनिंदा विचार शामिल करते हैं, श्रोताओं के जो उपयोगी संदेश होते हैं या दिन विशेष पर जो जानकारी होती है या आपके शहर की जो खास बात होती है या किसी महापुरुष के व्यक्तित्व के बारे में कोई विचार होता है तो हम इस कार्यक्रम में शामिल कर पाते हैं। केवल आप अगर फिल्म संगीत के माध्यम से अगर अपनी फरमाइश लिखकर भेजते हैं तो हम श्रोताओं को की फरमाइश शामिल नहीं कर पाते। तो आपसे गुजारिश है अगली बार आप इस कार्यक्रम में हमें कोई ना कोई चुनिंदा विचार जरूर लिख करके भेजेंगे। तो ये था फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक। हमें अनुमति, नमस्कार। अभी आप फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चुरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह के 10 बजने को है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
3: क्या बात है सर। बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहाँ एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहाँ ले गई?
2: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
3: जी
2: अल्मोड़ा हुआ।
3: अरे गजब, पहाड़ों पर।
2: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं, मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
3: अच्छा।
2: तब तक शुरू नहीं हुआ था
3: जी।
2: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
3: जी, जी।
2: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
3: जी,
2: वो एक अलग अनुभव था
3: जी।
2: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ उतरते जाओ चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। घूमने जाओ तो अलग बात है
3: जी।
2: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो, तो वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था। लेकिन वो गुजरा और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
3: अच्छा,
2: 86 में।
3: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
2: और वो भी सब भी देखा हमने। वो पंत जी, अग्गे जी वहाँ पे रहे और रविशंकर जी का वहाँ पे वो था,
3: बिल्कुल
2: यस। तो ये सब भी
3: उदय शंकर जी का।
2: तो वो सब भी देखा, घूमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
3: जी।
2: कि ये सब, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
3: रहते कैसे।
2: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं, जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
3: पहाड़ों में
2: पहाड़ों में कैसे।
3: बिल्कुल,
2: तो ये था
3: मुंबई। 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
2: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो सपनों की नगरी थी
3: जी,
2: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त ये 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटोपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहाँ पे था, तो 11-11 महीने का जो किराया होता है उस पे वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम।
3: बिल्कुल, और तब तो लंबी लाइनें
2: हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो एंटोपिल की थी वहाँ रहे, और फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर इधर आना, एंटोपिल से किंग सर्कल आना वहाँ तो पैदल
3: जी,
2: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई।
3: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से डाल लेता
2: है, तो फिर वो लोग अपने आप आपको उतार देते हैं
3: जी, जी।
2: तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ
3: जी,
2: उतार देंगे लोग,
3: लोग उतार देंगे,
2: ये उतार
3: जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
2: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी
3: चरम पर थी,
2: चरम पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी
3: जी,
2: मतलब जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त बजाया करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो,
3: बिल्कुल,
2: और वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
3: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
2: बहुत प्यार,
3: बल्कि हमने उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं, तब मैं था नहीं शहर में।
2: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कुछ चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की
3: जी,
2: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर
3: जी
2: तो खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
3: क्या बात है,
2: तो
3: क्या
2: वो किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ, वो
3: पेडर रोड,
2: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था
3: जी।
2: तो मैं गया और उस समय का वक्त था, तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है
3: जी।
2: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, रोज रियाज करना उनका काम था। जब मुंबई में होते थे तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो ये तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे
3: जी,
2: हाँ, वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरे निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहले ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
3: वाह वाह,
2: मतलब अक्सर होता है कि रख के जाओ, देखता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, है ना
3: जी।
2: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
3: वो कौन सी गजल थी, घर से निकले थे?
2: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब,
3: ये जो जिंदगी की किताब है। वाह वाह वाह,
2: तो ये वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
3: और भूपी जी ने क्या गाया था?
2: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गज़लों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गज़लें बहुत हैं, मुझे हल्की फुल्की गज़ल चाहिए।
3: अच्छा
2: हाँ
3: हा?
2: तो मैंने पहली गज़ल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे वो ये गज़ल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ, और वो गज़ल जो मैंने कभी आज तक छुई नहीं।
3: अच्छा
2: वो गजल शराब पड़ती। तो वो गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए।
3: जी जी जी, ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
0: और ये बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होने जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया
0: जी जी,
1: और ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे, और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: जो कमेंट्स है लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स है उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था।
1: पंकज जी उसके बाद
0: जी,
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गजल थी, वो जो यहाँ शख्स हर पल हादसा होना, तो पंकज जी से भी जब मिला तो उन्होंने खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है, है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की।
0: नबील था,
1: हाँ
0: नबील,
1: नबील, नबील
0: जी जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं
0: जी।
1: तो एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पे आता था गजल का, आरोही। तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में
0: जी।
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था।
0: अरे बाप रे,
1: नहीं था। तो उन्होंने गा दी गजल, तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें ये गजल कहीं मिली?
1: नहीं नहीं नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है।
0: अच्छा
1: है,
0: ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही में गया
1: था। तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ। तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनते हैं, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने ये बात कही,
1: मेरे उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में, वो हम बहुत अरसे से नहीं मिले थे
0: जी जी।
1: तो ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं,
0: ओहो,
1: है ना। तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था।
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा नाम है अजय कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था
0: जी।
1: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम, आदम वाला को एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। तो पंकज जी वहाँ पे उन्होंने कंसर्ट किया, वहाँ गाने गए, मजरू सुल्तानपुरी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया।
0: हाँ बिल्कुल,
1: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया, कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया है, सुना दिया सुर का इधर उधर, नहीं फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर उन्होंने तीन बार ये सुना। और हाँ वाह, तो ये फिर जब ग्रीन रूम में आए मजरू साहब, उनसे मिले तो बोले कि ये किसकी गजल थी है। तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था
0: जी।
1: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
0: वाह वाह वाह,
1: तो ये मजरू सुल्तान का आशीर्वाद
0: शायर की बात है ना।
1: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये शेयर करना चाह रहा था।
0: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादातर शायरी का ही रहा
0: जी।
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है
0: जी।
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल बहुत ही मशहूर जी।
1: आज तो वो दौर नहीं है
0: जी,
1: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी
0: जी,
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी,
1: मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना, बशीर बद्र, निदा साहब उसके संचालन कर रहे थे
0: जी।
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे, सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे,
1: अजित एक्टर
0: जी,
1: और कई तो फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर के अलग ही हुआ करता था
0: जी,
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा तो बड़ा मुशायरा। तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए
0: अरे बाप,
1: तो शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पे बुला के, मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग है ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी, तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, मैं होता तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया।
0: अरे अब तो शुरुआत कर रहे थे जब जी,
1: मुशायरा तो हो गया।
0: अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है।
1: तो ये बड़ी बात थी
0: जी।
1: तो ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना
0: जी,
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया,
0: गजब,
1: अपने घर पर
0: जी,
1: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन जो बता रहा हूँ जिसके बारे में
0: जी,
1: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी।
0: हाँ हाँ।
1: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया। उनका आखिरी एल्बम था ये।
0: ओहो हो,

0: वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे दुनिया में,
1: जी, जी,
0: वो चले गए
1: जी।
0: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे
1: जी।
0: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
1: जी
0: और दूसरी आसमान से आगे।
1: बिल्कुल।
0: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें, हाँ तो मैं उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा
1: जी जी जी।
0: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके मैं चला गया, तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडिशन में बैठो मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गजल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन खोला
0: ऑडियंस के सामने ये सब हो गया और तालियां वालियाँ सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा
1: जी।
0: तो बोले नहीं राजेश रुकिए, तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है पूरा
1: और पूरा हॉल
0: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, सारा गा रहे हैं वो, बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए, स्टैंडिंग माइक दीजिए, हाँ तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गजल पढ़िए जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे,
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे मतलब उनको पसंद थी गजल, तो सारे तो वो गजल पढ़िए जाने कितनी उड़ान बाकी, तो बात वही खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी
1: जी।
0: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब,
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: जी जी,
0: आज तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: गजब गजब,
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान ऐसा प्यार, तो मैं पढ़ रहा हूँ और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वो उसे गा रहे हैं,
1: अद्भुत अद्भुत
0: ये अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप,
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: लगे,
0: और आपको मालूम था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मुझे तो ये था उनका प्यार, ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका, तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है इसलिए मैंने बताया।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।

0: उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन।
1: वाह वाह।

0: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में दो बार गुजारा है, और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए उसमें सरगम के सितारे उजाले उनकी यादों के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है। सखी सहेली आपके दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से, मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था, और उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा, तो सबसे पहले यूनुस,
0: अरे राकेश जोशी,
1: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे, एक तरह
0: सब
1: से
0: चीजों को संभालते
1: थे। तो एक अच्छी टीम थी जो हर तरह से जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ
0: जी,
1: मतलब हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया।
0: बिल्कुल, और हर रोज आप एक नई चुनौती सामने रखते हैं।
1: ऐसा कम होता है
0: जी।
1: तो मैं हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है,
0: खयाम
1: साहब आ गए, लक्ष्मी प्यारेलाल जी आए, आनंद जी आए,
0: बिल्कुल
1: है ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग,
0: रवि जी आए,
1: हाँ
0: बिल्कुल,
1: खयाम साहब
0: आए, और बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है।
1: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज
0: मुझे याद है कि खयाम साहब, नौशाद साहब आए हैं, और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं, और वहीं एक घंटे बात हो रही है।
1: उनको वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था
0: जी,
1: वो अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का,
0: बिल्कुल,
1: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के भी हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि एक घंटे में बांध लिया, दो घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी मैं हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम उनके ले सकते हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग कहाँ आएंगे अब इस दुनिया में, तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं,
0: किसी के पास
1: नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशंस पे है
0: जी,
1: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, जब गानों पे बातें हो रही है या गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही है
0: जी,
1: है ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
0: एक से बढ़कर एक
1: प्रोग्राम जो है वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर,
0: और
1: पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं हो सका।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हो चाहे ट्रिब्यूट्स हो, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
1: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा, और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
0: जी।
1: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए
0: जी जी।
1: तो ये भी हुआ है, और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में,
0: बिल्कुल,
1: तो उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया, मतलब, और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
0: जी।
1: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
0: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात। हाँ।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी जी
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी

0: हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बड़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं है मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान पे, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था
1: जी।
0: तो कोई संभावना नहीं थी इसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था
1: जी जी।
0: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है
1: जी।
0: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है।
1: ओके।
0: घर में तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन-लॉ, फादर इन-लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन-लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हम आर्य समाज में शादी करते हैं।
1: अरे बाप रे।
0: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी। हम मेरे कोई निकट के मित्र पांच सात, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के जमाने से अपनी एक्टिविटीज की वजह से लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब यह था
1: जी,
0: तो वो सब आगे आगे करते थे, तो मेरे दो तीन जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए।
1: अरे वाह,
0: आर्य समाज की शादी में,
1: क्या बात है।
0: तो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई।
1: अरे
0: मैं अपने घर चला आया
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ कि हम, मैंने शादी कर ली है। और तो अब तो
1: कुछ हो नहीं सकता,
0: होंगी नहीं कि सबकी। तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए, फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ। तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे।
1: हाँ हाँ।
0: तो मुझे यहाँ से ले जाओ।
1: अरे बाप रे,
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने दो लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके।
1: गजब।
0: हाँ। और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे।
1: हाँ।
0: तो हाँ हाँ ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ। तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना, ढंग से करते हैं, इस करेंगे उसको। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा है,
0: ये नहीं होने देंगे।
1: हाँ हाँ।
0: मैं भी चलूंगी।
1: गजब।
0: मैं भी चलूंगी। तो फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
1: जी जी जी,
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है
1: और ये है।
0: तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई। और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है।
1: हाँ।
0: सारा साहस इनका है।
1: क्या बात है,
0: ये उस जमाने में
1: जी। शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं दो तीन शेर सुनाता हूँ
1: जी। जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ, किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा क्यों नहीं होता।
1: वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के
1: कितने
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा

0: तो और ये शेर में जो खास सुनाना चाह रहा हूँ, इसमें एक लफ्ज है, शब्द है शराब
1: जी,
0: एक होता है शराब और एक होता शराब, मृग मरीची का मिराज जिसे उर्दू इंग्लिश में बोलते हैं कि रेगिस्तान में पानी जैसा होता है दिखता है होता नहीं,
1: होता नहीं
0: है ना, मरुस्थल में
1: आग का धोखा है,
0: हाँ पानी का धोखा, आग का धोखा, वो सब रहे। तो ये जो इस्तेमाल किया उस पर पूरी जो महफिल थी उसने प्यार दिया।

0: से हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का आज के

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारे इस सभा में शेष रहे और शाम की सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 11:05 पर आप सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा दिन में 12 बजे से। 12:30 पर आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर, इसमें हमारे आज के कलाकार होंगे सुजान सिंह खींची एंड पार्टी। 1:05 पर महिलाओं के लिए होगा कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें आज आप सुनेंगे चर्चा व्यायाम से बढ़ती है एकाग्रता, एक और चर्चा होगी स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। मिड डे न्यूज का प्रसारण किया जाएगा दिन में 2 बजे से। 2:15 पर आप सुनिए

हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ। 5 बजे आप सुने कार्यक्रम चुपाणी, जिसमें आज आप सुनेंगे फेसबुक कमेंट्स पर आधारित कार्यक्रम बातें रेडियो की। 5:55 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। 6 बजे आप सुनेगा हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार होंगे 6:05 पर। इन समाचारों को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:10 पर आप सुनिए देशभक्ति फिल्मी गीत। शाम 6:20 पर आप सुन सकते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार। शाम 6:30 पर हिंदी में और शाम 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। जयपुर से आप सुनेगा जिले की चिट्ठी। शाम 7 बजे आप सुने कार्यक्रम किसानवाणी, जिसमें आप सुनेंगे चर्चा डेयरी व्यवसाय लाभ का सौदा। एक और चर्चा होगी वृक्षारोपण की पूर्व तैयारी कैसे करें। बाजार भाव मौसम की जानकारी के साथ साथ कल के कार्यक्रम भी इसमें बताए जाएंगे। आप सुनेंगे कुछ लोक रचनाएं। शाम 7:30 पर और रात्रि 9:15 पर आप सुनिए राजस्थानी लोक संगीत। रात्रि 8 बजे सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। समाचार संध्या का अंक होगा रात्रि 8:45 पर। 9 बजे आप सुनिए News@9। रात्रि 9:30 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम कंट्री वाइड, इस कार्यक्रम को हम दिल्ली से रिले करेंगे। 10 बजे आप सुनिए जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम राजस्थान दर्शन और 10:30 पर आप सुनिए सुगम संगीत के अंतर्गत गजलें। सभा के अंत में यानी रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।

आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। आइए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सबसे पहले सुनते हैं जीना मरना तेरे संगीत फिल्म का गीत। आवाजें अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की हैं। गीतकार समीर, संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन।

जीना वरना तेरे संग इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं लाल दुपट्टा मलमल का इस फिल्म का गीत। आवाजें अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की हैं। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आनंद मिलिंद।

आइए सुनते हैं समीर की बोलों को। संगीतकार है नदीम श्रवण, फिल्म का नाम है तड़ीबार, गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को। फिल्म का नाम है तवायफ। गीतकार हसन कमाल, संगीतकार रवि।

अब जब सुन रहे थे आग ही आग फिल्म का गीत, आवाजें थीं आशा भोंसले और शब्बीर कुमार की। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को। फिल्म का नाम है क्लर्क, गीतकार मनोज कुमार, संगीतकार उत्तम सिंह।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
0: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
0: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
0: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: जी
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
2: जी
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
2: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
2: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे

0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओं, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम

0: साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्यपुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
1: सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।

0: किरण।
1: दादी माँ, दादी माँ, क्या हिरण अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई।

0: और दीपू, तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको

0: साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओहो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश, छाई थी घटा घन घोर।

0: और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर
0: अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: अरे
1: तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू।
7: इसे काट। भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे पेड़ उनसे बोला,
7: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
5: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
6: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
4: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
6: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
5: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
4: वो उसे काटने लगे।
7: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
5: अच्छा

0: ठीक है,
1: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
2: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
3: क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
1: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
2: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
4: अरे वाह अटकू मटकू,
2: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
5: पेड़ हमारे
1: दोस्त हैं।
5: जीवन में हरियाली लाओ,
1: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
6: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। दिन के 12:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें हमारे आज के कलाकार हैं सुजान सिंह खींची एंड पार्टी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। हमारे आज के कलाकार हैं सुजान सिंह खींची और पार्टी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। हमारे आज के कलाकार थे सुजान सिंह खींची एंड पार्टी। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। इस समय दिन का एक बजने वाला है। अब आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के चुड़ादा गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मॉर्निंग वॉक के बाद मुख्यमंत्री बांसवाड़ा सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को आगे बढ़ाते हुए आम जनता से पेट्रोल डीजल बचाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। सर्किट हाउस पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री का आज कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वे डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे। श्री शर्मा वहां भी कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। कल मुख्यमंत्री इसी गांव में प्रातःकालीन भ्रमण करेंगे। देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की प्रवृत्ति से दूर रखना है। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर पाली के राजीव गांधी स्मृति भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया और 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावण की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वन मंत्री ने डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण कर गोडावण संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा भी की। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने सरस दूध और दूध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें आज शाम से लागू होंगी। डेयरी दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए की वृद्धि की है। दूध के साथ दही, छाछ, लस्सी और पनीर की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। 200 ग्राम पनीर का पैकेट अब 74 रुपए की बजाय 80 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा 200 ग्राम दही का पैक अब 16 रुपए की जगह 18 रुपए में मिलेगा। सादा छाछ पर 1 रुपए और नमकीन छाछ और लस्सी पर 2-2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले 13 मई को अमूल और मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अभी इससे कोई राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। विभाग ने आगामी 3 से 4 दिन तक प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में गर्म हवाओं का असर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य के 7 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जबकि 8 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं बीकानेर की रात सबसे गर्म रही, वहां न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आम जन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह जारी की है। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक VK सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी अब गूगल जेमिनी, ChatGPT और ग्रोक जैसी AI तकनीकों का उपयोग कर आधार बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणालियों को बायपास करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपने आधार बायोमेट्रिक्स को एम आधार ऐप या UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लॉक करने की अपील की है। बायोमेट्रिक्स लॉक होने पर फिंगरप्रिंट और आइरिस डेटा का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक स्वयं उपयोगकर्ता उसे अनलॉक ना करे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से ही बोल रहे हैं, FM 107 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

बेहद खास हमारी सभी श्रोता बहनों का स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में। और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी सखी मंजू, तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हम जिस तरह से अपना कार्यक्रम लेकर आते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत सी जानकारियाँ होती है, स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ होती है, प्रेरणादायक और घरेलू जीवन से जुड़ी उपयोगी बातें हम करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो महिलाएं हैं वो परिवार की शक्ति होती है, परिवार की धुरी होती है, और घर की देखभाल हो, बच्चों का भविष्य हो, परिवार का स्वास्थ्य हो या समाज की प्रगति, हर जगह महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए महिला जगत हमेशा आपके लिए ऐसे विषय लेकर आता है जो आपके जीवन को आसान, स्वास्थ्य से भरे हुए और खुशहाल बना सके। बहनों, गर्मियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में शरीर का ध्यान रखना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना और परिवार को भी सुरक्षित रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जरूरत भरी बात है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे

चार महत्वपूर्ण अपने चर्चाएं लेकर जो हम आए हैं उस पर, और वो है कि किस तरह से व्यायाम करके आप एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। जो हमारी दूसरी चर्चा है वो है कि स्वास्थ्य शिक्षा, चाहे वो घर पर मिले या स्कूलों में, वो क्यों ज़रूरी है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि गर्मियों में यात्रा करते समय हमें किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिस तरह से अब गर्मी पड़ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे कि लू से बचने के लिए हम किस तरह से स्वादिष्ट पने बना सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो ये सब चर्चाएं तो हम करेंगे ही, लेकिन अभी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस मधुर से गीत के साथ।

गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में। और अब समय है हमारी पहली चर्चा का, जिसपे हम बातचीत करेंगे। बहनों, आज का जीवन बहुत तेज गति से चल रहा है और महिलाएं, या हम खुद को कह लें कि सुबह से रात तक लगातार काम करती हैं, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, परिवार की देखभाल, ऐसे में मानसिक थकान और तनाव होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिन में केवल 20 या 30 मिनट का व्यायाम अगर आप करती हैं तो मानसिक शक्ति को कितना बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ आपकी जो एकाग्रता है वो कितनी बढ़ती है। अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, तो केवल शरीर को फिट रखने के लिए ही नहीं, बल्कि ये हमारे मस्तिष्क को भी सक्रिय बनाती है और हमें एकाग्रचित होने की जो क्षमता है वो देती है। जब हम योग, प्राणायाम, सैर या हल्की एक्सरसाइज करते हैं, तब शरीर में रक्त संचार तेज होता है। इससे मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचती है और सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है। अगर विशेषज्ञों की माने तो नियमित व्यायाम करने से तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। जब मन शांत होता है तब हमारा ध्यान भी काम में अधिक लगता है और हम उस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहनों, कई बार हम छोटी छोटी बातों में से परेशान हो जाते हैं। काम का दबाव हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, घर की चिंता, ये सब हमारे मन को थका देते हैं। और जब हम इन चीज़ों से थक जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हो जिससे कि हमारी जो ये थकान है ये मिट जाए। तो इसमें जो इंस्टेंट आपको ऊर्जा देने वाली चीज़ है वो है प्राणायाम। प्राणायाम विशेष रूप से बहुत लाभकारी माना जाता है। इसमें जब आप गहरी सांस लेते हैं तो मन शांत और चिंता कम होती है। इसके अलावा सुबह पार्क में टहलना, हल्का स्ट्रेचिंग करना या फिर संगीत के साथ भी आजकल एक्सरसाइज की जाती है, तो वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है और उसे आप अपना सकती हैं। इसी के साथ साथ जो किताबें पढ़ना है वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है तनाव से मुक्ति का, और साथ ही साथ अपने जो दिमाग है उसको एकाग्रचित करने का। जहाँ एक तरफ आप जब किताब पढ़ती हैं तो आपका कंसंट्रेशन पूरा उसी पर रहता है और इससे जो आपका एकाग्रचित, जो मन इधर उधर भटक रहा होता है वो एकाग्रचित होता है और आप उसमें पूरी तरह से ध्यान लगा सकती हैं। साथ ही साथ जो हम अक्सर देखते हैं कि कुछ मानसिक बीमारियां हैं, चाहे किसी तरह के स्ट्रेस लेने के कारण हमें दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, तो अगर हम कुछ छोटे छोटे से उपाय अपने जीवन में अपनाते हैं तो शायद हमें वो दवाइयां ना लेनी पड़े। कारण

उसका ये है कि हम जब भी परेशान होते हैं सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी या फिर अपने ही आप से कुछ दवाइयाँ खुद को सजेस्ट कर देते हैं और लेना शुरू कर देते हैं, और ये चीज़ जो होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगर कोई इस तरह की परेशानी है जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तनाव मुझे हो रहा है, तो पहले कुछ इस तरह के नुस्खे आप अपना सकती हैं, जैसे कि कुछ एक्सरसाइजेस करके अपने ध्यान को एक तरफ लगाकर, अगर घर या परिवार से टेंशन मिल रही है या अपने काम से टेंशन मिल रही है, तो उसके अलावा जब समय मिलता है तो आप उन चीज़ों में मन लगाएं जिनको कर आपको खुशी मिलती है। तो इससे क्या होगा कि आपका मन हल्का होगा और जो मस्तिष्क है वो भी आपका शांत होगा। और इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है और अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो आप किसी भी चिकित्सक से सलाह ले सकती हैं, परामर्श ले सकती हैं और फिर दवाइयों का सेवन करें। लेकिन जो ये छोटे छोटे से योग है, चाहे प्राणायाम आप करें, तो ये वो चीज़ें हैं जो डेली अगर आप करती हैं तो एक समय पर ये आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर पहुंचाते हैं। आपके शारीरिक स्वास्थ्य को तो बनाते ही बनाते हैं, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इनका भी आपको उपयोग करना चाहिए। जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उन पे अगर हम गौर करते हैं तो उनसे भी बड़ी बड़ी जो हमारी आशाएं या एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो निकल सकती हैं। तो उनको हमें इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, और फिर भी अगर कोई फ़ायदा ना हो तो हम ज़रूर किसी अच्छे चिकित्सक से कंसल्ट कर सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
2: बहनों, शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है, लेकिन आज अगर हम देखें तो शिक्षा का अर्थ केवल किताबों तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब है ऐसी जानकारी जो हमें अच्छा स्वास्थ्य, स्वच्छता, सही खानपान और बेहतर जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दे। यदि घर की महिला जो है वो जागरूक होती है तो पूरा परिवार स्वस्थ और खुशहाल रहता है। बच्चों को हाथ धोने की आदत सिखाना, पौष्टिक भोजन देना, साफ सफाई रखना, समय पर सोने जागने की आदत डालना, ये सब स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। आजकल कई बीमारियां केवल जानकारी के अभाव में बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। यदि सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो कई समस्याओं से बचा जा सकता है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की भूमिका यहाँ सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को जीवन के पहले संस्कार देती है। यदि बच्चे को बचपन से ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाया जाए तो वे आगे चलकर अनुशासित और स्वस्थ नागरिक बनते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि बच्चे जो कुछ देखते हैं वही ही सीखते हैं। यदि घर में साफ सफाई रखी जाती है, समय पर भोजन किया जाता है और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है तो बच्चे भी वही आदतें अपनाते हैं। माता पिता यदि बच्चों को हाथ धोने, समय पर सोने जागने, पौष्टिक भोजन खाने, नियमित एक्सरसाइज की आदत डालें तो ये उनके पूरे जीवन के लिए लाभदायक होता है। आजकल कई बच्चे मोबाइल टीवी में अधिक समय बिताते हैं, ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वे अपने बच्चों को खेल कूद और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये भी उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है। घर में स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब ये है कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी समझाया जाए, उन्हें प्यार, सहयोग और खुलकर बात करने का माहौल मिले ताकि वे तनाव या डर महसूस ना करें, जब भी ज़रूरी हो तो खुलकर आपसे बात कर सकें। अब बात करते हैं कि स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो स्कूल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं होता है, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र भी होता है। यदि स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा तो वे छोटी सी उम्र में ही अच्छी आदतें सीख जाएंगे। स्कूल में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए और ख़ास तौर पे इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाता है, जैसे साफ़ सफाई का महत्व क्यों है, उसके अलावा संतुलित भोजन किसे कहते हैं,

एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, योग ध्यान से आपको क्या लाभ हो सकते हैं, स्वच्छ पानी का उपयोग और पर्यावरण की स्वच्छता क्यों जरूरी है। अगर ये सभी चीजें स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत ली जाए और बच्चों को सिखाया जाए तो वो छोटी उम्र में ही अपने आप को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे, उसके प्रति जागरूक हो पाएंगे, साथ ही साथ वो अपने आस पड़ोस अपने पर्यावरण को भी स्वच्छ रख पाएंगे। और इस तरह की गतिविधियां आजकल स्कूलों में होती भी हैं जिन्हें योग दिवस, हेल्थ चेकअप, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम इस तरह से आयोजन किए जाते हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि इससे बच्चे छोटी उम्र में ही सीख जाते हैं कि किस तरह से स्वस्थ रहना है और स्वच्छता का क्या महत्व है। इसके साथ ही शिक्षकों को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है क्योंकि जब हम किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं तो पहले ज़रूरी होता है कि उन चीज़ों को हम अपनाएं और समझें। तो अगर छोटे से ही हम बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताएंगे और अच्छे स्वास्थ्य को कैसे रखा जाता है इस विषय में उन्हें समझाएंगे तो वो अपने स्वास्थ्य को सही रख सकेंगे और स्वच्छता के प्रति जागरूक हो पाएंगे। और यही कारण है कि यदि घर और स्कूल दोनों में मिलकर बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए तो उसके बहुत से फायदे हो सकते हैं, जिनमें से कुछ हैं कि बच्चे बीमार कम पड़ेंगे, आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा, पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगेगा, मानसिक और शारीरिक विकास बेहतर होगा और अनुशासन और स्वच्छता की आदत उनमें बचपन से ही पैदा हो जाएगी, जो उन पर थोपी नहीं जाएगी बल्कि उनको इन चीज़ों की आदत हो जाएगी। और हम बहनें जो हैं वो परिवार की आधारशिला होती हैं, यदि हम एक महिला जो है वो जागरूक होगी, शिक्षित होगी तो वो पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है। एक माँ बच्चे के खान पान, दिनचर्या, आदतों पर सबसे अधिक ध्यान देती है, इसलिए महिलाओं की भूमिका स्वास्थ्य शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस सारी चर्चा के साथ ही हमें एक संकल्प जरूर लेना चाहिए कि घर पर हम अपने बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य को कैसे रखना है और स्वास्थ्य से जुड़ी क्या शिक्षा है वो जरूर दें, और साथ ही साथ स्कूल में भी अगर इस तरह की स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है तो उसके महत्व को हम जरूर जानें और उसकी सराहना करें क्योंकि अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। स्वस्थ बच्चे ही देश का उज्जवल भविष्य बन सकते हैं। तो इसी सुंदर संदेश के साथ अब समय हो गया है कि एक प्यारा सा गीत सुन लें।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: इस मीठी सी गजल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम महिला जगत में। बहनों, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और एक तरफ गर्मियां शुरू होती हैं और दूसरी तरफ छुट्टियों की योजनाएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त सभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है। तो परिवारों में कहीं घूमने का, बाहर जाने का, रिश्तेदारों से मिलने का, या फिर धार्मिक यात्राओं पर निकलने का, या फिर अपने परिवारों के साथ यहाँ वहाँ घूमने के कार्यक्रम बन ही रहे हैं। लेकिन गर्मियों में यात्रा करते समय थोड़ी सी लापरवाही परेशानी का कारण भी बन सकती है। तेज धूप, गर्म हवाएं, पानी की कमी और थकान कई बार स्वास्थ्य पर असर डालती है। इसलिए आज की हमारी जो चर्चा है उसका विषय है गर्मियों में यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखें। आज हम बात करेंगे कि छोटी दूरी की यात्रा में क्या सावधानियां रखें, लंबी यात्राओं में आप क्या सावधानियां रखें और किस तरह से तैयारी करें उन लंबी यात्राओं की, सफर के दौरान खान पान कैसा हो और स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मियों में तापमान बहुत अधिक होता है, ऐसे में शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है और पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। यदि समय पर पानी और आराम ना मिले तो चक्कर आना, सिर दर्द, कमजोरी और लू लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस तरह के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम छोटी दूरी की यात्राएं कर रहे हैं तो किस तरह का हमें सावधानी बरतनी है, क्या ध्यान रखना है। कई बार हम बाजार, स्कूल, ऑफिस या किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ घंटों के लिए मिलने के लिए जा रहे होते हैं और इस तरह की जब कोई यात्रा हम कर रहे हैं तो हमें किस तरह की सावधानी बरतनी है, इस विषय पर हम बात करते हैं। सबसे पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि घर से जब भी निकलें तो पहले पानी ज़रूर पिए, बिना पानी पिए घर से ना निकलें। इस नियम को इस गर्मी में अपना लें। खाली पेट और बिना पानी पिए धूप में निकलना ठीक नहीं होता। दूसरी बात, सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने। गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं वो गर्मी ज़्यादा सोखते हैं, जबकि सूती कपड़े और हल्के रंग के कपड़े जो होते हैं वो शरीर को आराम देते हैं। जब भी बाहर निकलें तो सिर ढककर निकलें, चाहे वो उसके लिए आप छाता यूज़ करें, कोई टोपी पहने, दुपट्टा लें, गमछे लें, उनका उपयोग करें। सीधी धूप से सिर को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही जब आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ एक पानी की बॉटल हमेशा ज़रूर रखें। गर्मी में शरीर को बार बार पानी की ज़रूरत होती है और घर से निकलते समय पानी की बोतल अवश्य रूप से आपको लेनी चाहिए। ज़्यादा देर तक धूप में ना खड़े रहें, इस नियम को भी आपको अपनाना चाहिए। कहीं आपको जाना है तो देखें कि अगर आप रोड पर खड़े हैं, किसी बस का या किसी वाहन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो किसी छायादार वृक्ष के नीचे खड़े हों। कोशिश करें कि धूप में ना खड़े रहें और अगर संभव हो तो सुबह या शाम को अपनी जो ये छोटी यात्राएं हैं इनको रखें। यानी कि घर से बाहर अगर आप किसी काम के लिए निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि या तो सुबह उन्हें 10 बजे से पहले ही सलटा लें या फिर 4-5 बजे के बाद शाम को घर से बाहर निकलें। दोपहर की जो तेज़ धूप होती है उससे बचना ही आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद हो सकता है। और जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो जो गर्मियों में केवल ठंडा पानी ही काफ़ी नहीं होता है, शरीर को ऊर्जा देने के लिए नमक की भी ज़रूरत होती है। इसलिए यात्रा के दौरान नींबू पानी, ORS, ग्लूकोज, आम का पना, छाछ, नारियल पानी, इस तरह के जो पेय हैं उन वो भी लाभदायक होते हैं और इनका आपको उपयोग भी करना चाहिए। जहां आप पानी की एक बोतल अपने साथ रखते हैं तो इनमें से कोई एक चीज़ भी आप अपने साथ रख सकते हैं, और जब आपको ऐसा फील हो, ऐसा महसूस हो कि शायद गर्मी में मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है वो नहीं महसूस हो रही है, ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, तो आप उसे पी सकें। हम लोग जब बाज़ार जाते हैं या बाहर जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें या ऐसे पदार्थ जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनको पीना पसंद करते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो जहाँ तक कोशिश हो आप अपने घर से ही कोई ऐसा पेय पदार्थ लेकर निकलें साथ में, जिसको जब ज़रूरत हो तो पी सकें। गर्मी में बाहर का खुला खाना जल्दी खराब हो जाता है और इसलिए यात्रा के दौरान खाने पीने में विशेष सावधानी रखनी ज़रूरी होती है। हल्का और ताज़ा भोजन जो होता है वो ही इस वक्त सबसे लाभदायक होता है। बहुत ज़्यादा मसालेदार या तला भुना खाना इस वक्त अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जो खुले कटे फल अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ वहाँ बाज़ारों में मिलते हैं, तो उन्हें कभी भी नहीं खाना चाहिए, उन्हें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उनको खाने से आप जो है पेट से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। घर का बना हुआ खाना हमेशा बेहतर रहता है, तो संभव हो तो अपने साथ अपना खाना लेकर जाएं। लंबी यात्राओं की जिसमें आप किसी ट्रेन में, बस में या अपनी कार के द्वारा जा रहे हैं और घंटों आपको यात्रा करनी है, तो इसमें भी कुछ आपको तैयारियां पहले ही कर लेनी चाहिए। यात्रा से पहले एक सूची बना लें ताकि कोई भी ज़रूरी चीज़ आपकी ना छूटे, और अपने साथ पानी की बोतल, दवाइयाँ, टोपी या छाता, हल्के कपड़े, टिश्यू, सैनिटाइज़र, मोबाइल चार्जर, ज़रूरी दस्तावेज़, ये सारी चीज़ें वो है जो आपको रखना चाहिए। यदि छोटे बच्चे साथ हों तो उनके लिए अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं वो भी आप रखें, और हल्का फुल्का खाने का सामान भी रखें। जब आप 5, 6, 7 या इससे ज़्यादा घंटों की यात्रा करने वाले हैं, लगातार किसी भी बस में, कार में या ट्रेन में चलने वाले हैं, तो आपको कुछ दवाइयाँ भी अपने साथ रखनी चाहिए, जैसे सरदर्द से संबंधित, उल्टी, बुखार, पेट दर्द, इन सब से जुड़ी हुई जो दवाइयाँ हैं वो भी आपको साथ में रखनी चाहिए। अगर आप कार से यात्रा कर रहे हैं तो बीच बीच में आप स्टॉपेज लें और रुकें और आराम करें और फिर ड्राइव करें। बहुत तेज़ धूप में लगातार ड्राइव ना करें। गाड़ी में पर्याप्त पानी रखें। बच्चों को बंद गाड़ी में अकेला ना छोड़ें। बुजुर्गों की अगर बात करें तो उन्हें समय समय पर पानी पिलाते रहें, हल्का भोजन दें, ज़्यादा धूप से बचाएं, थकान महसूस होने पर तुरंत आराम करवाएं। तो इस तरह से सफ़र पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी आप ज़रूर ले लें। टिकट और ज़रूरी जो कागजात हैं वो तो आप रखेंगे ही रखेंगे। बहुत ज़्यादा सामान लेकर यात्रा ना करें, और रात की अगर यात्रा संभव हो तो उसका आप पहले प्रायोरिटी दें, उसे प्राथमिकता दें, तो आप कुछ ठंडक में अपनी यात्रा को पूरा कर सकेंगे। बहनों, यात्रा तभी सुखद बनती है जब हम अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखें। थोड़ी सी सावधानी हमें कई परेशानियों से बचा सकती है। गर्मी में शरीर को ठंडक, पर्याप्त पानी, आराम देना बहुत ज़रूरी है। यदि हम सही तैयारी करके यात्रा करें तो सफ़र भी आनंदमय होता है। तो बहनों, गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज़ धूप, गर्म जो हवाएं और थकान लेकर आता है, लेकिन कुछ सावधानियां, कुछ सूझबूझ से अगर हम चलते हैं तो इस मौसम को भी हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो अब चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक मीठा सा नगमा।

बहनों, गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं और थकान लेकर आता है, और ऐसे में शरीर को ठंडक और ऊर्जा देना बहुत जरूरी हो जाता है। पुराने समय में जब बाजारों में कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट वाले पेय नहीं मिलते थे, तब हमारे घरों में पारंपरिक पन्ने और शरबत बनाए जाते थे। ये पेय न केवल स्वादिष्ट होते थे, बल्कि शरीर को ठंडक देने और लू से बचाने में भी बहुत सहयोग करते थे। आज हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे ही पारंपरिक सेहतमंद पन्नों और शरबतों को आसान तरीके से आप कैसे बना सकते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकती हैं और सभी को परोस सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आम का बना, जो बहुत ही साधारण भी है और बहुत तरीकों से इसे बनाया जाता है इस वक्त। तो जो आम का बना है, ये बहुत लोकप्रिय तो है ही है। कच्चे आम से, यानी कि कैरी से इसे बनाया जाता है, और इसे पीकर माना जाता है कि शरीर को जब लू से बचाना होता है तो उसके लिए ये लाभदायक होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आम का पन्ना बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 कच्चे आम यानी कि कैरी, 2 कैरी लेनी है आपको, 4 से 5 चम्मच चीनी या गुड़, आधा चम्मच काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, पुदीना पत्तियाँ और ठंडा पानी। तो सबसे पहले कच्चे आम को अच्छी तरह से धो लें, उन्हें कुकर या बर्तन में उबाल लें। जब आम नरम हो जाए तब उसका छिलका हटाकर गुद्दा निकाल लें, और उसमें आप चीनी या गुड़ जो मिलाना चाहती हैं उसमें मिलाएं। फिर इसमें काला नमक, भूरा जीरा और पुदीना डालें, और इसके बाद में ठंडा पानी मिलाकर अच्छी तरह से घोल तैयार कर लें। इसे कुछ देर फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दें और इसे ठंडा ठंडा ही परोसें। अगर इसके फायदे की बात करें तो आम का पन्ना शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, और ये लू से बचाता है और थकान दूर करता है, साथ ही पाचन के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। दूसरा जो है वो हम बात करते हैं नींबू पुदीना के शरबत की। जो साधारणतः हम सभी इस मौसम में नींबू की सिकंजी तो पीते ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा और सुधार अगर कर लिया जाए तो वो नींबू पुदीना शरबत बन जाता है। तो उसके लिए हमें चाहिएंगे 2 नींबू, पुदीना पत्तियाँ, चीनी या शहद आप ले सकते हैं, काला नमक और ठंडा पानी। करना आपको ये है कि नींबू निचोड़ने के बाद में उसमें आप चीनी या शहद मिला लें, साथ में जो काला नमक है उसे भी आप मिला दें, पुदीना की पत्तियां पीसकर उसमें डाल दें, और इसे भी आप ठंडा करें या फिर बर्फ मिलाकर सर्व कर सकती हैं। अगर इसके फायदे की बात करें तो ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो ये हमने बात की आज एक पने और शरबत की, और अब चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको एक मीठा सा गीत।

बहनों, आज के कार्यक्रम महिला जगत में हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। हमने जाना व्यायाम से एकाग्रता कैसे बढ़ाई जा सकती है, स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व क्या है, गर्मियों में यात्रा करते समय किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है और गर्मी से राहत देने वाले पारंपरिक पन्ने और शरबत कैसे बनाए जाते हैं। उम्मीद है कि आज की सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि हम छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाएं तो हम अपने परिवार को स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। इसी आशा के साथ अब मुझे दीजिए, यानी आपकी सखी मंजू को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे कार्यक्रम महिला जगत में नई जानकारी और नए विषयों के साथ। नमस्कार।

0: An orange color warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख

0: किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: It is ironic that Pakistan with its long time...
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: India has recently launched...
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के

0: 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ हार्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: चाय, ये चाय।
5: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

0: है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। सबसे पहले सुनते हैं प्रेम कैदी फिल्म का गीत। आवाज़ SP बालासुब्रमण्यम और साधना सरगम की है।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की आवाज में पद्मावत फिल्म का ये गीत है।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम था पेंटर बाबू। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ सुरेश वाडकर की आवाज़। फिल्म का नाम है पांच फौलादी।

अब यह सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर को। फिल्म का नाम था पांच फौलादी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और उनके साथियों को। फिल्म का नाम है परदेसी बाबू।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सभा अब समाप्त होती है। 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

हम आकाशवाणी के चूरू के अंदर से बोल रहे हैं FM 107 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 4 बजने वाले हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं हमारे दिल्ली के अंदर से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है, दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी

0: अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके। आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश सुसोलिस आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, बहुत अच्छा लगा।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर 1 रेडियो आपका अपना।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहाँ पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूँ ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो हम अक्सर मूवीज में जो देखते हैं सर, वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की या वॉर सिचुएशंस की या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड जीरो। तो वो सिचुएशन वहां पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में जिसमें एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क BSF को दिया गया था। और BSF उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीजों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं है अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में BSF के बटालियन को लेकर डिप्लाई हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर के मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
0: बिल्कुल
1: जैन की असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
0: जी,
1: उस पे 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर

0: ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान में इस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना की
1: जी।
0: और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर की सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है और आज भी वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिसपे हमला हुआ।

0: और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका एफआईआर दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में। और उस एफआईआर के बाद तो वो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जे एन के पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
1: मतलब इतना बड़ा आतंकवादी और इतना
0: बड़ा जी के
1: सब
0: जान भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है
1: जी,
0: 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पे हमला करते हैं, जिस पे अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोस खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी और ये मौका मुझको मिला, बीएसएफ के बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
1: जी।
0: 27 और 28 अगस्त 2003 को एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे
1: जी।
0: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका की कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जे एन के पुलिस बीएसएफ का बड़ा अहम किरदार रहा और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया। लेकिन जो ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
1: जी,
0: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए। और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ, दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। बीएसएफ ने जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा मेरी बटालियन ने और वो मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में थर्ड फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
1: जी
0: गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड यूएसए इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11, लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
1: जी
0: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा एनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पे गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही और
1: बिल्कुल
0: बीएसएफ को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात,
1: बिल्कुल बहुत सम्मान की बात है और ये देश के लिए भी देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब वो जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो वो जो मोमेंट रहा होगा वो कैसे आप लोगों ने आपकी टीम ने फेस किया और वो सब जो इंसिडेंट हुआ जब फायरिंग हुई फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
0: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं ना कहीं
1: कुछ बड़ा करना
0: है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी एस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि पीएम का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था
1: बिल्कुल,
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसको पकड़े जाने के बाद जो फॉलो अप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक,
1: बिल्कुल
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटीन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं, मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को बनाया था, डिजाइन किया था और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टॉकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट विजन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका

0: तुमको इल्म ही नहीं
1: था। बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने वो ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई। अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था, और सारी कोई आवाज नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज नहीं करेगा, शू की आवाज नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पर हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले हमारे पर फायर करे, हमारे
1: या वो भागने की कोशिश करे,
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी।
1: अच्छा।
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी एस्केप रास्ता था, और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे
1: जी,
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने, तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया बेवकूफ बना दिया इनफार्मर, शायद सही जगह नहीं आए, और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के जो कि वॉल में फिट था।
1: अच्छा।
0: और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था, नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं,
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको देख रहा था, जिसका हमको इल्म नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: तो वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था। अच्छा। पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों देख रहे थे, उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा।
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो शायद
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता।
1: ओके।
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती,
1: ज्यादा होती,
0: मार तो हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत को ज्यादा चुकानी पड़ती, और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक।
1: अच्छा।
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है, और इस ऑपरेशन में बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ।
1: ओके।
0: निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की गई और अपने ऑपरेशन को भी,
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों।
1: अच्छा।
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो 2 ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन छोड़ना पड़ा। 3 ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहां ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है, अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और उसके बाद वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती, पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज बताऊं कि बीएसएफ के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए
1: जी,
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी,
1: कितनी
0: गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा, वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है।
1: यानी कि आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया,
0: आप उस वक्त
1: सिर्फ हाथ का,
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा
1: जी।
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल टेबल के ऊपर ही ओटी में पता लगा, डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी। सर, हम इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग हुई और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथ ही लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज क्या संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्र

दुबे। और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868 1070 पर। और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर हैं, जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं।

0: कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरीज रही
0: जी,
1: वो बहुत ज्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी, उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
0: अच्छा।
1: कमेंडेशन
0: जी जी,
1: मैं
0: जी,
1: अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा
0: जो छाती पर लगता है।
1: जी जी जी, उस पे कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया
0: जी जी,
1: उसमें ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहाँ क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हेमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे दिख रहा था
0: जी,
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
0: जी,
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका खराब ब्लड होता है, बैंक के बाहर आता है। फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहां कहां चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया
0: जी। आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
1: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
0: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी सात गोलियां शरीर में,
1: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा क्योंकि हाथ का विजिबल था
0: जी,
1: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि, तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संक यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने एक जीवन रक्षक के तौर पर ड्राइंग रूम में लगा रखा,
0: जिसने
1: है
0: आपका दिल बचाया।
1: उसमें, यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, सफिशियंट थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशन भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है।
0: अच्छा।
1: फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया
0: फेंट हो जाता है, और फिर
1: हाँ कि मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने लगते हैं। बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए, जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
0: नहीं
1: हो पाया, शिनाख्त बाद में हुई
0: जी,
1: और नीचे आए, पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। तो हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल बीएसएफ मिले मुझसे
0: जी,
1: मेरी वाइफ आई।

0: 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू एंड फर्स्ट दे वर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो
1: जी
0: क्रिटिकल हो लेकिन डॉक्टर से हमने डिस्कस कर लिया योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग
1: जी,
0: रहा था
1: जी.
0: मैंने कहा सर फॉर व्हाट बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड मेन एक्यूज्ड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक एंड होल कंट्री होल नेशन एंड बीएसएफ इज प्राउड ऑफ यू एंड बीएसएफ टीम तो वो ऐसा रहा ना सारा दर्द काफ हो
1: गया खत्म हो गया सही
0: नहीं लगा कि दर्द में तो हम थे
1: जी
0: और दर्द तो होता ही है ह्यूमन बॉडी पेन अगर है तो महसूस होगा लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो उसे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट होता है अगर आप फाइनल फतह कर लेते हैं
1: जी, जी.
0: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना वो कहीं कहीं उसका पेन
1: कम हो जाता है यस उसका एहसास कम हो जाता है क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो अपने नमूने पेश करता
0: वैली में 1994 से 2001 तक he was on killing spree एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग IC-814 हाईजैकिंग
1: और फिर
0: दिस सारीमर किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी उसके बाद जेएनके असेंबली अटैक 1
1: अक्टूबर
0: 2001 अटैक के पराकाष्ठा पे था इम्तहा बिल्कुल कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वो भी दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
1: जी
0: परिंदा नहीं पर मार सकता तो इतना बड़ा प्लान
1: इतना बड़ा प्लान है इतना बड़ा
0: आतंकवाद से लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के
1: जी
0: लॉजिस्टिक्स वेपन आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस और पार्लियामेंट्री स्टाफ कि उन्होंने इतनी बड़े एम्बरेसमेंट से बचाया जान पे खेल के और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी
1: बहुत बड़ी बहुत बड़ी सर यहाँ पर
0: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ
1: बिल्कुल
0: देश का सर मस्तक ऊंचा हुआ
1: बिल्कुल और सर इसका सहरा इसका ताज वो आपके सर पर सजा
0: है क्योंकि बीएसएफ एक टीम वर्क करती है
1: बिल्कुल
0: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर इसको टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के
1: बिल्कुल
0: उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम
1: सर मुझे फौजी का जो जज्बा होता है ना वो जो मर मिटने वाला देश पर जान निछावर कर देने वाला वो चीज थी ना वहां पर
0: क्या है जब इस तरह का मिशन होता है
1: जी
0: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे हैं
1: जी
0: अगर आपके पैर कमजोर हुए आपके पैर थोड़े से
1: डगमगाए जी
0: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा
1: बिल्कुल
0: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है
1: तो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से जिम्मेदारी तो और भार
0: बटालियन का हेड था
1: जी मेरे आप लीड कर रहे थे
0: लीड कर रहा था मैं चाहता तो अपने किसी नंबर 2 को भेज सकता था नंबर 3 को भेज सकता था
1: लेकिन आप फ्रंट पर रहे
0: खुद के रहने से
1: जी
0: मोरल बड़ा होता है
1: बिल्कुल
0: जवान बेपरवाह काम करता है मौत के मुंह में भी घुस
1: मौत के मुंह में घुस गया
0: और घुसे वो
1: बिल्कुल
0: गाजी बाबू के माद में घुसना कोई सिंपल
1: और जैसा आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था
0: 100% ट्रैप था अदरवाइज वो मिलता नहीं
1: हमको मिलता नहीं
0: और हुआ मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी जाने की खुद को कोसते
1: बिल्कुल
0: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया बट हो नहीं पाया वो एंड वी आर प्राउड ऑफ दोस मोमेंट्स
1: दुबे सर यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे हैं मैं बीच में ले नहीं पाया लेकिन मैं बताता हूं आपको ये है यश शिंदे मुंबई से संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं जय हिंद वंदे मातरम वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी हैं कुर्बानियां उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है
0: शुक्रिया भाई साहब शुक्रिया ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स
1: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से सर आई सल्यूट फॉर योर करेज यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ योर स्टोरी गिव्स मी गूस बम्स
0: So great words because we still remember the bloodshed in Australia, the Mardi Beach very recently by the IC
1: जी.
0: by the ISIS cadres. हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं और इसमें आप हमारे साथ हैं हमारी तारीफ कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी और एक और है सर ये मैसेज मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन एंड दुबे सर को आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं एकदम

0: फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है। आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है या सिलचर असम से?
1: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सेल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है। ये वर्ड उनके थे।
0: अच्छा।
1: उनके बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
0: जी जी बैजो
1: बच्चन,
0: हाँ अच्छा जी,
1: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
0: जी,
1: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है।
0: वो आपकी
1: आप
0: यादगार
1: में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी। मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
0: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल।
1: काफी उन्होंने ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
0: जी,
1: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है और एक कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती
0: है। सर एक चीज लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं, लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है।
1: 100% नहीं होता, वहाँ कैसे होगा, वहाँ कुछ नहीं होता।
0: वहाँ जान जाएगी या जान ली जाएगी,
1: वहाँ या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का। तीसरा कुछ नहीं।
0: या तो
1: दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप
0: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं।
1: दो ही कैटेगरी होती है। मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा और आज के तारीख में आपके सामने मैं एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं
0: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ। सर सर एक मैसेज और है। हाय सर, मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं। सर ये एकदम बच्चा यंग लड़का है, ये कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं, यूपी से।
1: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है
0: जी।
1: क्योंकि आप पीसीएम से हैं, 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफी ज्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है, आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना, बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं,
0: बिल्कुल।
1: प्रिपेयर ऑल द बेस्ट।
0: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है, मैं शबनम हूँ, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही हैं। जय हिंद सर, आपको सुन रही हूँ, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
1: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं जिसके नाम पे बी के दत्त है
0: जी।
1: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच।
0: सर देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं। और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्र नाथ।

0: तो सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता ही लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा, मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए बीएसएफ में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर बहुत देर से हम बात कर रहे हैं,
1: आप इस मौके पर मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है
0: जी,
1: के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा।
0: ये क्या बात,
1: फील्ड सिचुएशन का गाना है, जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया

0: मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला मैसेज आया था वो चिट्ठी के जरिए आया था।
1: अच्छा, और आप अपनी ड्यूटी पर थे।
0: मैं ट्रेनिंग में था, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 45 डेज बाद में उसे मिल पाया
1: जी।
0: तो उसके पैदा होने का भी मुझे इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद।
1: ओके।
0: तो बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था, बिकम फादर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई तो वो पहले है,
1: पहले
0: तो हो मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। अगर आप सुना सकें
1: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस काम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIGBSF श्री नरेंद्र नाथ।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब बीएसएफ आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह के?
1: देखिए, मैं एक

0: अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
1: अच्छा।
0: हिमालयन नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
1: अच्छा।
0: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की, आंवले के पेड़ के नीचे उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई, जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
1: पढ़ाई के लिए
0: दे दीजिए।
1: अच्छा।
0: तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज्यादा था
1: जी।
0: मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा। 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
1: दादाजी।
0: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी
1: जी
0: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
1: जी,
0: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और एक साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में, और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
1: जी।
0: और वो बड़े जबरदस्त नेशनल फरवर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
1: जनसेवा।
0: तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो चारपाई पर बैठ के सुनाते
1: अच्छा।
0: थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था, तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसी वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
1: जी,
0: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
1: जी,
0: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पे कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय हो ये तो तब था ही नहीं, ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लॉय हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी, उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रहकर नहीं कर सकते थे, और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
1: बिल्कुल। तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरह से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर, कोई जाना चाहता है BSF में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है, वो उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
0: BSF में एंट्री के लिए 3 लेवल हैं, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल
1: जी।
0: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
1: ठीक है,
0: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटर्न बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए, और रिटर्न की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
1: बिल्कुल।
0: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है।
1: बिल्कुल।
0: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता है,
1: मिलता है,
0: विदेश में जाने का मौका मिलता है
1: जी। सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूंगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आपका जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है, और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज

0: असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप यूएसए, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
1: इस इंजरी के बाद में दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया
0: जी,
1: 26-11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर तोयबा की तरफ से
0: जी।
1: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्रिएट हुई और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में
0: जी। सरकारी तो 25 साल जो सर आपने BSF में दिए उसके अलावा
1: ये 9 वर्ष NIA में,
0: अच्छा
1: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
0: जी, जी,
1: और
0: जी।
1: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
0: अच्छा
1: मेरे दिल से लगा हुआ है, मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया।
0: अच्छा।
1: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता हूं।
0: जी सर, आगे बढ़ूंगा मैं और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर, FM रेनबो की ऑल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से गिरीश, आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूँ, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
1: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं।
0: अच्छा,
1: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और आप उसको एंजॉय करिए, बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माय साइड बेस्ट ऑफ लक।
0: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है।
1: सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है
0: जी।
1: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी
0: जी।
1: और बड़ा उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की थी
0: बिल्कुल।
1: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजेडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजेडी के साए में फिल्म रिलीज हुई थी तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है
0: जी।
1: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजेडी हुई थी देश में
0: जी, जी, जी,
1: कश्मीर में, तो वो एक वजह है। बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
0: जी। सर एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं। यश शिंदे हैं ये। DIG नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल है आप। नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप। चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है। नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
1: जबरदस्त आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, अपने जज्बाती हैं,
0: बिल्कुल
1: प्रेमी हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड।
0: और सर यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे। हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें, जैसे आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर अपने
1: युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पज है अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है, आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं
0: जी।
1: तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज होगी।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया और आप जिस शख्सियत से बात करना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, फॉर्मर DIG BSF। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही है रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।

FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: जी दोस्तों, इस गाने के साथ हो चुकी है कार्यक्रम युवाणी की शुरुआत। और आज की इस युवाणी में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त डिंपल शर्मा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी हरीश मोहन। युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

0: जी दोस्तों, इस प्यारे से गाने के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है युवाणी, और जैसा कि आप सभी श्रोता साथी जानते ही हैं कि आज है गुरुवार, और गुरुवार के दिन जो है युवाणी में खास और स्पेशल सेगमेंट जो है हम आपके लिए लेकर आते हैं, वह लेकर आते हैं बातें रेडियो की। जी हाँ दोस्तों, ये वही खास और स्पेशल सेगमेंट रहता है जिसके अंदर जो है हमारा आकाशवाणी चूरू का जो ऑफिशियल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो पेज है उसके ऊपर हम एक टॉपिक शेयर करते हैं, और उस टॉपिक के ऊपर जो है आप अपने कमेंट्स जो है, अपनी राय है, या फिर जो आपके अनुभव होते हैं वो हमारे साथ साझा करते हैं।
1: जी बिल्कुल, और वो जो अनुभव हैं वो आपके खुद के फील किए होते हैं, और जो टॉपिक्स हैं उन पे आपने क्या क्या चीजें उनको अनुभव किया है वो आप हमारे साथ शेयर करते हैं, और चुनिंदा कमेंट जो है वो हम उनमें से चुनते हैं और वो आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज का जो कमेंट, जो टॉपिक रखा है हमने जिसपे आपने कमेंट किया है दोस्तों, वो बहुत ही आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आप सबने फील किया है, आपके जीवन का एक सुनहरा जो सफर कह सकते हैं या सुनहरी जो यादें हैं वो वहीं से ही है।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, और आज हम आपको लेकर चलेंगे यादों की उस गली में जहां ना मोबाइल था, ना इंटरनेट का शोर, ना था तो बस खुला आसमान, दोस्तों की टोली, आम के पेड़ों की छाव और गर्मी की छुट्टियों का इंतजार।
1: जी बिल्कुल, गर्मी की छुट्टियां ये सिर्फ स्कूल से छुट्टी नहीं होती थी दोस्तों, बल्कि खुशियों का एक त्योहार होती थी, एक ऐसा समय जब हर बच्चा खुद को आजाद पंछी समझता था।
0: मई जून की जो तपती दोपहरें होती थी, शुरू होने से पहले ही स्कूलों में जो है एक अलग ही उत्साह दिखाई देने लगता था। आखिरी परीक्षा का आखिरी पेपर खत्म होते ही बच्चों के जो चेहरे थे वो खिल उठते थे। कोई कहता कि मैं नानी के घर जाऊंगा, तो कोई जो है खुशी से बोल पड़ता कि हम गांव जाएंगे। दोस्तों, उस समय छुट्टियों का मतलब जो है वो सिर्फ आराम नहीं था, बल्कि रिश्तों से जो है मिलने का समय था, अपने परिवार को समय देने का। उन सभी के पास इतना वक्त था कि वो अपने परिवार के साथ बैठ सकें और छुट्टियां जो है वो अपने परिवार के साथ अच्छे से मना सकें।
1: अरे हरीश, नानी का घर, वो मिट्टी की खुशबू, आंगन में बिछी चारपाइयां और रसोई से आती आम के अचार की महक। जैसे ही हम पहुंचते, नानी हमें गले लगाकर कहती, आ गए मेरे राजा बेटा। और ये जो बातें हैं, ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये हमें हमारी सुनहरी यादों में लेकर जाते हैं, और ऐसे ही हमारे जो श्रोता साथी हैं उनके साथ भी उनकी यादें जुड़ी हुई, और किस तरह की वो यादें थी या क्या क्या बातें जो है उन्होंने हमारे साथ साझा की है वो लेकर चलते हैं हम आपको उन कमेंट्स की ओर।
0: बिल्कुल डिंपल, और आज जो है ये हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर भी बहुत से हमारे जो नियमित श्रोता साथी हैं या फिर जो हमसे नए जुड़े हैं उन्होंने जो है अपने अनुभव है वो हमारे साथ साझा किए हैं। और जो आज का टॉपिक था वो कि गर्मी की छुट्टियां और बचपन की यादें, इस पर जो सबसे पहला कमेंट हमें प्राप्त हुआ है वो मिला है संदीप सिंह सोनग्रा, प्राची सोनग्रा, सोमल सोनग्रा, कार्तिक सोनग्रा और समस्त सोनग्रा परिवार की ओर से। ये हमें लिखते हैं फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिलसिला जिला चूरू राजस्थान से, और अपने कमेंट में इन्होंने लिखा है कि बचपन की गर्मियों की छुट्टियां एक अनमोल खजाना है, होमवर्क की चिंता से मुक्ति, नानी दादी के घर का सुकून, दोपहर में आम के बगीचों की सैर और दोस्तों के साथ देर रात तक खेलने कूदने के वे दिन जिंदगी के सबसे बेहतरीन यादें होती हैं। छुट्टियों का मतलब अक्सर ननिहाल जाना होता था, चचेरे भाइयों बहनों के साथ छत पर सोना, तारों को गिनना और रात में परियां या फिर राजा रानी की कहानियां सुनना, दोपहर की मस्ती और खेल, चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना दोपहर में कंचे, गिल्ली डंडा, लुक्का छिपी या घर घर जैसे खेल खेलना, पेड़ों पर चढ़ना, कच्ची अमियां चुराना, छुट्टियों की शुरुआत में ही जो है तेजी से होमवर्क खत्म करने की होड़, ताकि बाकी के दिन जो है बिना किसी टेंशन के मौज मस्ती में बिताए जा सके। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे जो इन्होंने अनुभव है अपने बचपन के हमारे साथ साझा किए हैं संदीप सिंह सोनग्रा ने। और दोस्तों, इन जो कमेंट है इससे, इनके अनुभव से ये पता भी चलता है कि जो बचपन के पुराने दिन थे ना वो कितने सुहाने थे। उस समय जो है हम आज के समय में देख रहे हैं कि जितनी जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उससे बहुत ज्यादा सुकून उस समय था, और जो जितने भी लोग जो है वो छुट्टियों में अपने बच्चे जो है नाना नानी के घर जाते थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से छुट्टियां मनाते थे और तरह तरह के खेल जो है वो खेला करते थे, और गर्मी की छुट्टियों का जो है वो बेसब्री से

0: इंतजार किया करते थे।
1: जी, अगला जो हमारा ये टॉपिक है कि गर्मी की छुट्टियां और बचपन की यादें, इस पे अगला अनुभव हमें लिख भेजा है स्वामी देव बोधिसत्व, जो हमें रतनगढ़ राजस्थान से लिखते हैं। और इनका कहना है कि जो बचपन है वो जीवन का वो अनमोल खजाना है जिसे हम जीवन भर संजोए रहते हैं। खट्टी मीठी यादें, प्यार, मित्रों का साथ, कभी झगड़ा तो अगले दिन वही साथ। गर्मी कितनी भी भयंकर हो, दोपहर में चुपके से घर से निकलते और साइकिल चलाने का शौक जो है वो पूरा करते। दोस्तों के बीच उनके घर जाकर ट्रांजिस्टर पर गाना सुनने का जो कार्यक्रम है वो करते थे। और बचपन के दिन भी क्या दिन थे। और वाकई में दोस्तों, बचपन के दिन जो है सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। आज जब हम बात करते हैं धूप की, तो थोड़ा सा कतराते हैं कि भरी दोपहर में हम घर से बाहर ना निकले। और एक बचपन का वो समय था कि हम ना धूप देखते थे, ना छांव देखते थे, ना बारिश का मौसम देखते थे, बस निकल जाते थे अपने दोस्तों के साथ। और वो जो सुनहरे अवसर हैं वो हमने हमारे जो बचपन के दिन हैं उन्हीं में ही जिए हैं।
0: जी बिल्कुल डिंपल। और अगला जो कमेंट हमें मिला है वो मिला है रवि कुमार राहुल की ओर से। ये हमें लिखते हैं कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। और इन्होंने भी जो है अपने बचपन के अनुभव है वो हमारे साथ साझा किए हैं। और इन्होंने लिखा है कि मेरी फेवरेट यादें जो है वो बचपन की थी कि दोपहर में 1 से 4 का कर्फ्यू, मम्मी के सोते ही चुपके से छत पर पतंग उड़ाना, लूडो और कैरम बोर्ड खेलने के लिए निकल जाता था। नानी का घर जो है हम वहां पर आम तोड़ते थे, तालाब में हम नहाते थे, रात को जो है छत पर तारे गिनते हुए हम जो है भूत प्रेतों की कहानियां है वो सुना करते थे, जिसमें हमें बहुत मजा आता था। आगे उन्होंने लिखा है कि 10 पैसे की जो अमीरी है वो उस वक्त की थी हमारी, तो उस समय जो है हम उन पैसों से वो बर्फ का गोला खाते थे, कच्ची कैरी खाते थे। और जब कुल्फी वाला जो है वो हमारी गली में टन टन करता हुआ आता था, तो हम सभी जो है अपने सारे काम छोड़कर जो है उस ठेले के पास इकट्ठा हो जाते थे और जो है वो बर्फ का गोला है वो खाने को बहुत ज्यादा आतुर रहते थे। और सबसे बेस्ट पार्ट इन्होंने लिखा है कि स्कूल खुलने से 2 दिन पहले जो है वो होमवर्क के लिए माथापच्ची और आखिरी दिन तक कल से पक्का करूंगा वाला कॉन्फिडेंस जो है वो मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट जो है मेरे उस बचपन का लगा।
1: जी बिल्कुल, और बहुत खूब कहा हरीश, हमारे जो श्रोता साथी हैं उन्होंने, कि गर्मी और आम दोनों का रिश्ता जो है वो तो सदियों पुराना है। पेड़ से आम तोड़ना, नमक मिर्च लगाकर खाना और दोस्तों के साथ बांटना, उस स्वाद में जो खुशी थी वो आज भी हमें कहीं भी ढूंढ ले हमें नहीं मिलती है। कई बार दादी डांटती भी थी, मम्मी भी डांटती थी, ये सब डांट के बावजूद जो अनुभव है वो इतने अच्छे हैं कि जब भी हम बैठकर जब बातें करते हैं तो बचपन की यादें ही सबसे अच्छा या सुनहरा जो अवसर है वो होती है और उसी में हम खो जाते हैं। जी दोस्तों, आगे भी हम बातें यूं ही करेंगे, फिलहाल ये चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम चल रहा है युवाणी, और इसमें जो है हमारे ऑफिशियल जो सोशल मीडिया का पेज है आकाशवाणी चूरू नाम से, उसके ऊपर जो आपको टॉपिक शेयर किया गया था उसके ऊपर जो हमें कमेंट मिले हैं उनका सिलसिला निरंतर जारी है। और अगला जो कमेंट हमें प्राप्त हुआ है वो हमें मिला है विनोद कुमार की ओर से, जो कि हमें लिखते हैं 10 DPN गोगामेड़ी नोहर राजस्थान से, और इन्होंने जो है अपने अनुभव हमसे साझा किए हैं। ये लिखते हैं कि जब बात गर्मी की छुट्टियों और बचपन की यादों की हो तो दिल जो है वो सीधे नोहर और गोगामेड़ी के उन रेतीले धोरों में पहुंच जाता है। चूरू और हमारे इलाके की उस कड़कती धूप के और लू के जो थपेड़ों में भी जो है दोपहर को घर वालों से छुपकर गलियों में खेलना, मटके के ठंडे पानी से प्यास बुझाना और शाम को रेत के टीलों पर दौड़ लगाना, वो भी क्या दिन थे। नानी के घर जाने का वो बेसब्री भरा इंतजार और रात को जो है खुली छत पर तारों की छांव में सोने का वो सुकून आज के एसी कमरों में कहां। बचपन की उन खूबसूरत और अनमोल यादों के सफर पर ले जाने के लिए आकाशवाणी चूरू के युवाणी प्रोग्राम का बहुत बहुत आभार, और आपका भी विनोद कुमार जी बहुत बहुत आभार कि आपने जो है अपने बचपन के अनुभव हमारे साथ साझा किए। और डिंपल, हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि हमको जितने भी आज कमेंट प्राप्त हुए हैं उसमें नानी के घर का जो है जिक्र जरूर है, क्योंकि जो बचपन में है हमारा बहुत अच्छा स्थान जो है, जिसको कि हम खेलने के लिए कह सकते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए कह सकते हैं, तो वो नानी का घर है वो बहुत ही हमको प्रिय रहा होता है सभी श्रोता साथियों को भी और खासतौर पर हमको भी, क्योंकि उसमें ये रहता ना डिंपल कि हमको ये लगता है कि नानी जो है वो हमको बहुत ज्यादा प्यार कर रही होती हैं उस टाइम, क्योंकि जो है वो हमको कई दिनों से हम उनसे मिले नहीं होते हैं, और जब गर्मी की छुट्टियों का इंतजार जो है वो हमारी नानी भी हमारे लिए करती है और हम भी जो है बहुत ही बेसब्री से उन छुट्टियों का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय हमको एक छोटा सा अंतराल बीच में मिल जाता है हमारी पढ़ाई से भी और हमारे डेली रूटीन से भी।
1: जी बिल्कुल, और इसी क्रम में बात करें कि अगला जो कमेंट हमें मिला है वो मिला है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थी तो मैं अपनी माँ के साथ नानी के यहाँ चला जाया करता था। बिल्कुल हरीश, देखिए आपकी बात एकदम सही है कि हमारे श्रोता साथी भी इससे रिलेट कर रहे हैं कि ये भी जो है वो नानी के घर ही जाना पसंद करते थे, क्योंकि वहां आम के बाग में सारा दिन ही रहते और आम खाते और रेडियो बड़े प्रेम से सुनते थे, और उनके नाना जो हैं वो भी रेडियो के शौकीन थे और उनके पास रेडियो सेट था विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम मनचाही गीत, जो पहले दोपहर 1 से 2 बजे तक आते थे वो उसे जरूर सुनते। जब क्रिकेट का मैच होता तो मैं उसे कभी मिस नहीं करता, और जब शाम को घर आता तो भी रेडियो मेरे साथ रहता। सिबा का गीतमाला और एस कुमार का फिल्मी मुकदमा जो है मेरे नाना भी मेरे साथ सुनते थे। मुझे आज भी याद है कि जिस दिन IAS जौहर पर फिल्मी मुकदमा आया था उस दिन मेरे नाना के घर बहुत भीड़ थी, और ये बातें हैं वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। यानी इनका कहना है कि ना सिर्फ ये ही रेडियो से एक जुड़ाव जो है वो पूरे परिवार का था कि इनके नाना जी को भी काफी शौक था और उनके साथ में ये भी जो रेडियो है वो सुनते थे। बचपन की यादें, नानी के घर के साथ साथ रेडियो के साथ भी इनकी कई सुनहरी यादें हैं जो इन्होंने हमारे साथ साझा की है।
0: जी बिल्कुल डिंपल, और जब बात रेडियो की चल रही है तो हमारे जो नियमित श्रोता साथी हैं जिनका की नाम है राम कुमार रेवाड और चंद्रप्रा रेवाड जो है, इनका कमेंट भी जो है हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, और ये हमें सादुल शहर जिला श्री गंगानगर से लिखते हैं। ये रेडियो के बारे में लिखते हैं कि बातें जब रेडियो की चलती है तो कभी भी जो है घर से बाहर हम जाते हैं तो किसी भी दुकान पर हम देखते हैं कि रेडियो चल रहा है तो यकीन मानिए ऐसा लगता है कि हमारा परिवार का कोई सदस्य ही है जो इतनी शिद्दत के साथ जो है रेडियो सुनते हैं। श्रोताओं के को जो है रेडियो के प्रति इतना प्रेम है कि जब किसी दूसरे श्रोता से मिलते हैं तो सिर्फ बातें रेडियो की ही होती है। एक दौर था जब सिर्फ फरमाइश भेजने के लिए पोस्टकार्ड का ही इस्तेमाल किया जाता था, उसे पोस्टकार्ड में लिखो फरमाइश जब शामिल हुआ करती थी तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा खुशी हमें हुआ करती थी। सप्ताह में एक बार भी जो है अगर रेडियो पर नाम शामिल हुआ तो उनकी जो है खुशी बहुत ही ज्यादा दुगुनी हो जाती थी और वो बहुत ही अच्छा महसूस करते थे। लेकिन अब जो है वो समय ने अपनी करवट बदल ली है। आज इंटरनेट के मार्फत हम सारी दुनिया जो है वो सबमिट कर बिल्कुल रेडियो और श्रोता और प्रस्तोता एक साथ हम जुड़ चुके हैं, और यकीनन प्यार तो बढ़ा है लेकिन संतुष्टि नहीं हुई, लालसा बढ़ती जा रही है। हर्ष जो है वो हमें ये होता है कि हम जो है आकाशवाणी चूरू से जुड़े हुए हैं और आज भी जो है हम बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुन पाते हैं।
1: जी बिल्कुल, यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रेडियो से जुड़े हुए हैं। और दूसरा साथियों, हम बात कर रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है कि गर्मी

0: की छुट्टियां और बचपन की यादें। तो इस पर जो हमें अगला कमेंट मिला है वो हमें लिख भेजा है बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथियों ने, जो कि हमें लिखते हैं चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। और इनका कहना है कि गर्मी की छुट्टियां और बचपन की यादें जीवन के वे सबसे खूबसूरत और बेफिक्र पल होते हैं जो हर किसी के दिल के बेहद करीब होते हैं। होमवर्क की चिंता से दूर, ननिहाल के लंबे सफर, दोपहर में दोस्तों के साथ आम के बागों की सैर और दादा दादी के किस्सों से जुड़े अनमोल जो क्षण हैं, आज भी मन को सुकून देते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भले ही कितने आगे बढ़ गए हों, लेकिन वे दिन और बचपन की जो मासूमियत है हमारे जीवन का सबसे खुशनुमा हिस्सा है। चाहे बचपन की वे धूप भरी दोपहरें हों या फलों से भरपूर गर्मियों के दिन, हर पल का अपना एक अलग मजा था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच इन छुट्टियों का असली आनंद भी कहीं पीछे छूट जाता है। आज की व्यस्त जिंदगी में गर्मियों की छुट्टी और बचपन की हकीकत केवल यादों और कहानियों तक ही सिमट कर रह गई है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो है हमारी जो भी यादें हैं, या यूं कहें कि थोड़ा सा समय जो है वो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और जी दोस्तों,
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी दोस्तों, अंतराल की बात एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। और अगला जो हमें कमेंट प्राप्त हुआ है वो मिला है राजा नंदवानी की ओर से। ये लिखते हैं कि बचपन की बातें सबके लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा रही है। ज्यादातर जिससे आप भी पूछेंगे तो यही कहेगा कि काश बचपन एक बार फिर मिले, क्योंकि किसी बात की कोई चिंता और न कोई फिक्र, और उस पर भी जब गर्मियों की स्कूल का अवकाश हो तो फिर कहना ही क्या। फिर तो ननिहाल की वो मीठी मीठी यादें जहन में आना स्वाभाविक है, और इन मीठी यादों को दिल से भुलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और हम यही सोचते रहते हैं कि काश वो बचपन फिर से हमें मिल पाए।
2: जी, और अगली जो बातें हैं वो लिखी है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा ने कि रेडियो हमारे सुख दुख का सच्चा साथी है। जब मैं 5 साल का था उस समय हमारे पिताजी के पास एक रेडियो सेट था। ज्यादातर बच्चे स्कूल से आने के बाद खेलते थे, लेकिन मैं अपना सारा समय जो है वो रेडियो सुनकर निकाल देता था। उस वक्त एक बहुत ही मशहूर कार्यक्रम था बिना का गीतमाला, ये प्रस्तुत करते थे और 1 घंटे का होता था। और 1995 से मैंने आकाशवाणी केंद्रों पर पत्र लिखना शुरू किया जो आज भी जारी है। रेडियो ने हमें ढेरों दोस्त दिए जिनसे बहुत कुछ सीखा। रेडियो मनोरंजन और ज्ञान का खजाना है।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है युववाणी, ये 30 मिनट का ही है। फिलहाल हमको जो है प्रोग्राम से जाने की इजाजत दीजिए। आपके रेडियो साथी हरीश मोहन को,
2: आपकी रेडियो साथी डिम्पल शर्मा को नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब सुनिए कार्यक्रम धीणी दी बाता।
1: धीणी दी बात्या, बात्या।

0: मिनट पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें।
1: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार किया बैठा हो।
2: काई करूँ दा अबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और बिरो जीसो रो भी कौन।
1: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी सु कार्यक्रम धीनेरी बातें। काकी साहब ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ी हुई सबली समस्या रो समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजक है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बातें धीनेरी बातें कार्यक्रम सुनने वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखो भाई और
5: साथे साथे बंशी भाई रा भी
4: मोकला मोकला
5: राम राम
4: राम राम, राम बंशी भाई
5: राम राम हरखो भाई राम राम
4: और राम राम सगला महाराज जी का भाई सुनने वाला है और हमारे सामने जी का चौपाल बैठा है सगला भाई ने भी राम राम सा। और देखो सा गर्मी है बात तो देखो
5: जही चेत की है भाई।
4: हाँ और देखो दिनों दिन आज की गर्मी बढ़ रही है नी, मेरे पीछे विशेषज्ञ भी कहवे और अपन आज का बुजुर्ग है माई थे वे भी आप कहवे है के हरा जी का वृक्ष है भी कटन सु भी और तापमान है वो वृद्धि हुआ इरमाई ने तापमान तेज हो गया है तो क्यों ना आपा भैया एक एक पेड़ लगावा।
5: बहुत ही अच्छा विचार है।
4: हाँ देखो अब टाबरिया कह के सोशल मीडिया पर से यंगला समाचार भी आवे के जे हमकी बिरखा वे नी तो एक एक दो दो पेड़ आपा लगावा और हर मान को जे एक एक दो दो पेड़ लगाई नी तो देखो राजस्थान है नी वो हरो भरो हो जासी और आज की तापमान की समस्या है जी आप आने वाली पीढ़ी है वे थोड़ा कम भुगत सी।
5: सच्ची बात क्यों कि भाई एक पेड़ है नी वो अनेक लोगों ने जीवन दिया करे।
4: बिल्कुल
5: है नी तो फिर तो ये पेड़ जो को महत्व आप सोचा नी उनको कितो बढ़ जावे।
4: बिल्कुल सर जिका पेड़ आप महित लगाया बियारो कहन के लाभ आपा ने मिल रही है और आपा अगर लगा सा पीढ़ी ने मिलसी है नी तो ये वास्ते आप निस्वार्थ हो प्रार ओ काम कर सा तो देखो जगत रो भलो है और आप भी भलो है तो पेड़ तो आपने लगावनी है और जिगा पेड़ खाली लगावनी को नहीं ऐसा के
5: उनको खासो ध्यान भी रखना है
4: के पेड़ लगाया एक फोटो खींची और सोशल मीडिया पर आज हमने एक वृक्ष लगाया है नहीं सा लगाया नहीं भी रही पूरी जिम्मेदारी भी आप नहीं उठावनी है जब आप जिम्मेदार बन सा नहीं जद ही देखो जो पेड़ है नहीं वो पूरा पनपसी
5: भाई आज रोज को पेड़ है लगेड़ो वो अपने आने वाले टाइम रे मायने वो जीवन देसी।
4: बिल्कुल जीवन देसी सा और साथे साथे देखो तापमान जी को बढ़ रहे हैं तो जे काम नहीं है ना अवश्य घर से निकलिया ना और जे काम है निकलना ही पड़े तो देखो कि खा पीर पानी पीर माथो ढकर ही आपने निकलना है।
5: जी हां रखू भाई।
4: हां छोटो सा काम है कि आपा आपरो ध्यान रखा सा देखो चौपाल में बैठा जन आपा हथई तो करई हां और चौपाल में आप पर विशेषज्ञ भी पधारे। तो देखो आज बात कर ला आप भेड़ व बकरियां की प्रमुख बीमारियां बचाव और रोकथाम। हाँ तब देखो आज विशेषज्ञ के बारे में बता दूं आज राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे हैं सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सेन। डॉक्टर मनोहर जी आप रो चौपाल में घनो घनो स्वागत है। आपने में करा
6: राम राम सा
7: राम राम सा राम राम सा
5: सेऊ पेली डॉक्टर साहब महाराज पशुपालक के उन्होंने आप बताओ कि भेड़ और बकरियां रा होवड़ वाला प्रमुख रोग है बे किसे किसा है।
7: हरको भाई है बंसी भाई भेड़ और बकरियों में बहुत सारे रोग होते हैं और उन रोगों के होने के कारण कई बार पशुपालकों को आर्थिक हानि भी होती है पशु मर जाता है। तो एक तो रोग होता है फड़किया रोग, एक होता है गलगोट रोग, खुर गलन रोग है, एंथ्रेक्स है और ब्रुसेलोसिस रोग है। इसके साथ साथ जैसे बकरी का प्लेग रोग है जिसे पीपीआर भी कहते हैं, चेचक रोग है, खुरपका मुंहपका रोग है, ब्लू टंग रोग है, ऐसे बहुत सारे और भी रोग हैं जो पशुओं में होते हैं भेड़ बकरियों में होते हैं और कई बार अगर ध्यान नहीं देंगे तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है।
4: तो सेऊ पहले डॉक्टर साहब हमने बताओ कि फड़किया रोग कहीं है किया हुए और पशुपालक आपरी भेड़ और बकरिया ने इनसू किया बचावे।
7: हरको भाई और बंसी भाई ये भेड़ बकरियों में जीवाणुओं से होने वाला बहुत ही खतरनाक रोग है जो क्लोस्ट्रिडियम नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु भेड़ बकरियों के आंतों में और ग्रास नल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे ही इस जीवाणु को अनुकूल परिस्थितियां मिलती है यह है वहां पर वृद्धि कर लेता है और वहां पर

0: जहर स्रावित करता है। उस जहर से भेड़ बकरियों की कई बार मृत्यु हो जाती है। यह रोग मुख्य रूप से तब होता है जब पशु को अचानक से चारे में परिवर्तन कर दें, उसके खान पान में अचानक से परिवर्तन कर दें, या पशुओं को जो बरसात फसल कटाई के बाद में पशुओं को अपन खेतों में चरने के लेके जाते हैं, वहां पर उसके चराई का समय अगर ज्यादा हो जाता है तो पशु ज्यादा खा लेता है, या बरसात के बाद में जैसे बरसात होती है उसके बाद में हरी हरी घास उगती है, प्रोटीन युक्त घास उगती है, उसको अगर ज्यादा खा लेता है तो इस रोग के होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। और इस रोग में प्रमुख रूप से पहले अचानक से पशु को आफरा आता है, पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, पशु के मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है और कई बार पशु की मृत्यु भी हो जाती है। और इस रोग में मुख्य रूप से जो स्वस्थ पशु होते हैं और जो मेमने होते हैं वो प्रभावित होते हैं
1: जी।
0: और अचानक से हरे हरे धस्त भी लग जाते हैं। तो इस रोग को पहचानने के लिए जो प्रमुख लक्षण बताए हैं मैंने उनका ध्यान रखें, और साथ में ही जो पशु बीमार हुआ है उसको अलग करके पशु चिकित्सक से उसका तुरंत उपचार करवाना चाहिए
1: जी।
0: साथ में ही 3 महीने से जो भी बड़े पशु हैं उन सबका बरसात से पहले टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए, और जो पशु जहां रहते हैं वहां की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रख करके आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं, क्योंकि ये रोग ऐसा रोग है एक बार आपके अगर फार्म पे आ गया है तो लगभग सभी पशुओं में होने की संभावनाएं रहती है। अच्छा। इसलिए विशेष ध्यान रख करके इसको इस रोग से अपने पशुओं भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है
1: जी। सर ये छोटी छोटी बातें हैं पर महत्वपूर्ण बातें हैं।
2: बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब गलघोंटू रोग है वो कहीं होया करे, इन रोग कहीं मतलब है भेड़ बकरिया में भी और रोग होया करे है क्या, और जे हुए तो पशुपालक आप पशुआ ने इन रोग से क्या बचा सके?
0: बंसी भाई जैसे फड़किया रोग है जो बरसात के समय होता है, वैसे ही गलघोंटू रोग भी बरसात के समय होता है। यह भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है जो पास्चुरेला मल्टोसिडामा नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु भी श्वास नली में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे ही इस जीवाणुओं को भी अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, जैसे ही पशु को तनाव मिलता है, जैसे पशु को तनाव देते हैं तो ये रोग अचानक से हो जाता है। तनाव कैसे मिलता है? जैसे पशु को अपन ने लगातार पैदल चलाया, या एक जगह से दूसरे स्थान पर किसी गाड़ी में उसको ट्रांसपोर्ट किया, या पशुओं के चारे में अचानक से परिवर्तन हुआ, या मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ, तो ये जीवाणु जो श्वास नली में उपस्थित है अचानक से वृद्धि कर जाता है और ये रोग कर देता है। इस रोग में सबसे पहले पशु को बुखार आता है, नाक से स्राव आने लग जाता है, गले पे और छाती पे सूजन आ जाती है, सूजन का हाथ लगाते हैं तो दर्द होता है, और सूजन आने से सांस नली पे जोर पड़ता है, उस जोर पड़ने के कारण से पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके सांस के समय घर घर की आवाज आती है, इसलिए इस रोग को गलघोंटू रोग भी कहते हैं। और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए रोग से बचने के लिए सबसे पहले आपको जो बीमार पशु है उनको अपने बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग करके उसका पशु चिकित्सक से उपचार करवाना चाहिए। यह रोग भी बरसात में होता है तो बरसात शुरू होने से पहले, मानसून शुरू होने से पहले इसका टीकाकरण करवाना चाहिए सभी पशुओं में जो 3 महीने से बड़े पशु हैं, और जो बीमार पशु हैं उनको अलग करके इलाज करवाएं, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार कह रहा हूं साफ सफाई ध्यान रखेंगे तो इस रोगों से बचा जा सकता है। और एक टीकाकरण जो पशु स्वस्थ हैं उन सभी पशुओं में बरसात शुरू होने से पहले अप्रैल और मई में पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए।
2: भाई क्या उन्होंने मतलब वही अर्खो भाई कि भाई साफ सफाई री सावधानी और टीकाकरण की सजगता ये जरूरी बात है।
1: बिल्कुल सर। गलघोंटू के बाद में डॉक्टर साहब अब मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि ब्रुसेलोसिस रोग किया फैलिया करे और पशुपालक भाई किन बातें विशेष ध्यान रखना चाहिए इस रोग के प्रति?
0: ब्रुसेलोसिस एक बहुत ही खतरनाक रोग है। यह एक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक का मतलब होता है कि ये पशुओं से मनुष्य में भी आता है, और ये एक जीवाणु है जो बकरियों और भेड़ों में होता है। ये मुख्य रूप से ब्रुसेला मेलिटेंसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में पशु की गर्भावस्था के अंतिम समय में, जो अंतिम महीने होते हैं 3 महीने, उनमें अबोर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, तथा जो जेर होती है जिसको अपरा भी बोलते हैं वो गिरता नहीं है, और बच्चा जाने से बदबूदार स्राव होता रहता है। जो नर पशु होते हैं उनमें अंडकोश में सूजन आ जाती है और जोड़ों में सूजन आ जाती है। ये जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है या जो मरा हुआ बच्चा बाहर आया है और जो उसका प्लेसेंटा बाहर आया है उसके संपर्क में आने पे दूसरे पशुओं में भी ये रोग हो जाता है। उसके संपर्क में अगर कोई मनुष्य आता है या कोई जो पशुपालक उसको हैंडल करता है वो उसके संपर्क में आएगा, उनमें भी ये रोग हो जाता है। तो इसमें विशेष सावधानी ये रखनी है कि जो भी जिस पशु में ये रोग होता है उस पशु को अलग कर दें, उसका उपचार करवाएं, और साथ में ही जो उसका बच्चा मरा हुआ है, जो उसका प्लेसेंटा बाहर आया है, और जो भी उसके आसपास जो भी खाद्य पदार्थ वगैरह जो उससे संक्रमित हुए हैं उन सबको गड्ढा खोद करके दबा देना चाहिए। और जो 4 से 6 महीने के जो बछड़ियां जो बकरियां होती हैं जो भेड़ होती हैं उनमें टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए, इस प्रकार से बचा जा सकता है। और मनुष्य में भी विशेष रूप से जो इस भेड़ों के और बकरियों के संपर्क में आते हैं उनको अपने हाथ अच्छे तरह से पानी और साबुन से धो करके फिर दूसरे काम करने चाहिए।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी साहब।
2: डॉक्टर साहब, बकरियां रो प्लेग और पीपीआर रोग कहीं हुआ करे, इनसे बचाव उपाय भी आप महाराज का पशुपालक भाई है उन्होंने बताओ सर।
0: पीपीआर रोग एक जीवाणुओं से होने वाला अत्यधिक संक्रामक रोग है, इसको बकरी का प्लेग भी कहते हैं। इस रोग में पशु को अचानक से तेज बुखार आता है, जीभ पे, मसूड़ों पे और होठों पर छाले हो जाते हैं, तथा मुंह से अत्यधिक लार गिरती रहती है और मुंह से बदबू भी आती रहती है और नाक से गाढ़ा स्राव आता है, वो स्राव पपड़ी के रूप में जम जाता है तो पशु को सांस लेने में भी दिक्कत होती है और बदबूदार दस्त भी लग जाते हैं, तो इसमें डिहाइड्रेशन से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। अगर समय पर इसका उपचार नहीं किया गया तो ये रोग खतरनाक हो सकता है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले जो बीमार पशु हैं उनको अलग करके अलग से उसका पशु चिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए, और 3 से 4 माह के बीच के जो पशु हैं या 3 महीने से जो बड़े पशु हैं उन सब में उसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। मैं बार बार टीकाकरण पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये रोग जो है पीपीआर रोग है ये सर्दियों में होता है, तो सर्दी शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में इसके टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए, और टीकाकरण से ही अपन रोग से पशुओं को बचा सकते हैं, क्योंकि जब पशु बीमार हो गया है उसके बाद उसका इलाज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि उपचार में भी पैसा लगता है, इसलिए टीकाकरण के द्वारा इन रोगों से पशुओं को या भेड़ बकरियों को अपन बचा सकते हैं, तो समय पर इसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए।
2: केवल मतलब वही है कि भाई सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधानी से हूँ पहली रखनी जरूरी है।
1: बिल्कुल सर, और अब जी को बखत है वो है गीतड़ ले रो।
2: बिल्कुल सर, जरूरत है गीतड़।
1: बिल्कुल, तो आपसे सुनो सा एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: भाई आभार आप सुनियो ओ एक मीठो मीठो सो गीतड़लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धुड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: बेड़ा आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोलामारू चैनल की प्रस्तुति धीणेरी बातियां। और आज चौपाल में जानकर देवन सारू पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सैन। और आज आप बातचीत करिया भेड़ और बकरिया री प्रमुख बीमारियां, बचाव और रोकथाम।
2: हरखू भाई, जिज्ञासा जी की जीवन ने कही है कि गति दिया करे।
0: बिल्कुल।
2: तो भाई देखो सर, जिज्ञासा ने बढ़ावन सारो डॉक्टर साहब सो आगलो सवाल मैं कर रहे हैं, खुरपका मुंहपका रोग किया फैले और पशुपालक इन रोग सो पशुआ ने किन भात बचा सके।
3: खुरपका और मुंहपका भेड़ बकरियों में होने वाला प्रमुख रोग है और अत्यधिक संक्रामक रोग है और ये एक विषाणु से होता है। यह बीमारी मुख्य रूप से जो दो खुर वाले पशु होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनमें ज्यादातर होती है। इस रोग में सबसे पहले तेज बुखार आता है, मुंह पे, खुर पे और थनों पर और अयन पर और खुरों के बीच वाली जगह पर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं, जो फिर अगर खतरनाक होने पे घाव का रूप भी ले लेते हैं। पशु लंगड़ा करके चलता रहता है, मुंह से अत्यधिक लार गिरती रहती है और बकरियां व भेड़ लंगड़ा कर चलती है और मेमनों में इस रोग से मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी पशु बीमार हो तुरंत पशु चिकित्सक को बुला करके उसको अलग करके उसका इलाज करवाएं। दूसरा, साल में 2 बार इस रोग के टीके लगते हैं, एक तो अप्रैल मई में तथा दूसरा सितंबर अक्टूबर में, वो टीके अवश्य लगवाएं। और इसमें गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है FMDCP प्रोग्राम, जिसमें साल में 2-2 बार ये टीके फ्री में लगाए जाते हैं। और साथ में जो पशु बीमार है उसको दलिया और मुलायम हरा चारा खिलाना चाहिए, जिससे पशु उसको आराम से खा सके। साथ में प्रतिवर्ष सभी पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं। और ये भी ध्यान रखिए, जो घाव हो रखे हैं उन पे मक्खियां नहीं बैठने देवें, एंटीसेप्टिक क्रीम उस पे लगाएं और लाल दवा का हल्का घोल बना करके उसको धो करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और मक्खियों पर नहीं बैठे, ये विशेष ध्यान रखे, नहीं तो वहां पर कीड़े पड़ जाते हैं और घाव अत्यधिक खतरनाक हो जाता है और फिर ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं रहती है।
0: बिल्कुल सर। और मक्खियां जदि बैठ सी जद बाड़े रे मायने गंदगी हुए, साफ सफाई नहीं हुए, साफ सफाई नहीं हुए जने जो कीट पतंगा जी कहने बहुत फैलिया करे और पशुओं वास्ते बहुत ही नुकसानदायक है। और साथ ही साथ अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहवा हाँ कि भेड़ बकरिया में संक्रामक रोग से क्या बच सका हाँ और इन्हें बाबत पशुपालक ने कई कई सावधानियां रखनी चाहिए।
3: संक्रामक रोग काफी घातक होते हैं और कुछ पशुओं को बीमार होने पर यह फार्म के लगभग सभी पशुओं में होने की संभावना भी रहती है, तो कई बार पशु की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही पता लगे कि पशु बीमार हो रहा है उस पशु को अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए, उसका खान पान, उसका पानी जो भी है सारा अलग करें। साथ में ही जो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो मानसून में होते हैं और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो सर्दियों में होते हैं, तो मानसून में जैसे मैंने बताया फड़किया रोग होता है, गलगोटू रोग होता है, तो इनके टीके लगते हैं, वो टीके मानसून शुरू होने से पहले अप्रैल मई में अवश्य लगाने चाहिए, जिससे ये रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती है। क्योंकि फड़किया रोग और गलगोटू रोग अगर आपके फार्म पे आ जाते हैं तो काफी नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसे ही कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सर्दी में होते हैं, जैसे चेचक रोग बताया मैंने, PPR रोग बताया, FMD बताया, खुरपका मुंहपका है, तो ये जो सर्दियों में होते हैं ज्यादातर होते हैं, लेकिन अभी आजकल मौसम परिवर्तन हो रहा है तो कभी भी होने की संभावना रहती है। इसलिए इनका भी सर्दियां शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में हमेशा टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। कुछ टीके गवर्नमेंट से फ्री भी अवेलेबल कराए जाते हैं, तो वो टीके आप जब भी आपके गांव में कोई पशु चिकित्सक आता है या कोई कंपाउंडर आता है तो उनसे टीके अवश्य लगवाने चाहिए। साथ में फार्म पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई रखेंगे तो ये बीमारी दूसरे पशुओं में फैलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। पशुओं को संतुलित और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, आहार हमेशा उनको संतुलित देना चाहिए, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा और अन्य फार्म से जो खरीदकर पशु लाते हैं या अन्य जगह से कहीं से पशु खरीद कर लाते हैं उनको सीधा अपने पशुओं के साथ पुराने पशुओं के साथ मिक्स नहीं करना है, मिलाना नहीं है, उनको अलग से रखें, एक महीने तक उनकी निगरानी करें और जब एक महीना हो जाए उसके बाद उसको अपने अन्य पशुओं के साथ मिलाना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखें और अपने पशुओं को सर्दी से, गर्मी से और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना चाहिए जिससे पशुओं में रोग होने की संभावनाएं कम रहती। इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रख करके पशुपालक अपने पशुओं को बचा सकते हैं और अपने आर्थिक नुकसान होने से बचा सकते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सर।
2: सौ बात रही एक बात के भी बचाव ही उपचार है।
0: बिल्कुल,
2: आप बताओ डॉक्टर साहब के भी बचाव ही उपचार होया करे और इन बाबत साफ सफाई के साथ साथ टीकाकरण है वो जरूरी होया करे। तो टीकाकरण सारू महाराज का पशुपालक भाई है उन्होंने किसी किसी जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए इन बाबत भी आप जानकारी दो सा।
3: अभी मैंने बताया कि बचाव ही उपचार है। बचाव का मतलब ये है कि रोग आना ही नहीं चाहिए अपने फार्म पे। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपना समय पर जो शेड्यूल है उसके अनुसार पशुपालकों को अपने भेड़ बकरियों का टीकाकरण करवाना चाहिए। टीकाकरण करवाते समय विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप ये पशुपालक शिकायत करते हैं कि मैंने टीका लगवाए थे लेकिन फिर भी ये बीमारियां आ गई हैं। तो सबसे पहले जब भी टीकाकरण करें हमेशा स्वस्थ पशुओं में करना चाहिए।
2: अच्छा।
3: दूसरा, टीकाकरण से पहले पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य पिलानी चाहिए जिससे जो टीके लगाते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है।
2: अच्छा।
3: टीका अच्छी तरह से काम करेगा। तीसरा, टीकों का रख रखाव हमेशा ठंडे तापमान 2-8 degrees पर ही करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर टीके को आपने गर्मी में रख दिया या बाहर रख दिया तो टीके खराब हो जाते हैं, वो काम ही नहीं करेंगे। और हमेशा उचित शीत श्रृंखला का पालन करना चाहिए, अर्थात टीकों को जब आप लगाएं और लगाने से पहले उनका अच्छी तरह से ठंडे तापमान पर रखना चाहिए, उसके बाद ही टीकों को लगाना चाहिए। और हमेशा पशुपालक को अपने जो टीके लगाते हैं उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए कि मैंने ये टीका कब लगवाया था, दूसरा टीका मेरे को कब लगवाना है। ये जब याद रखेंगे तो ये जो बीमारियां मैंने बताई हैं वो आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और टीकाकरण भी आप जब करवाएंगे अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो टीकाकरण भी फेल नहीं होगा, टीकाकरण भी काम करेगा और अपने पशुओं को आप बचा सकते हैं। टीका अगर समय पर नहीं लगवा पा रहे हैं फिर भी टीकों को लगवाना चाहिए क्योंकि बीमारी आने की संभावना आजकल कभी भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि कुछ दो रोग मानसून में होते हैं, अगर आप मानसून में अप्रैल मई में नहीं लगवा पाए तो अगर जून में या जुलाई में लगवाना तो लगवा लेना चाहिए क्योंकि टीकों जब भी लगाते हैं तो उसके 21 दिन के बाद में टीका काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा टीकाकरण अगर आप थोड़ा समय इधर उधर भी हो जाता है तो करवाना चाहिए।
2: पहली बात तो आई है कि भाई समय से लगा होना चाहिए और जो नहीं लगा पावा तो भाई देखो सा 2-4 दिन ऊपर हो जाए तो चिंता की बात को नहीं, तुरंत लगा लेना चाहिए,
0: टीको लगवाना है
2: जरूरी है।
0: बिल्कुल सा। और अब थाने एक अच्छी बात और बताऊं कि देखो 18 मई 2026 राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आप 17वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनायो और डॉक्टर साहब भी कार्यक्रम में शामिल आ।
3: हाँ हाँ, मैं भी इस प्रोग्राम का साक्षी बना हूँ और धूमधाम से हमारे विश्वविद्यालय ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है।
0: इन अवसर पर डॉक्टर सुमंत व्यास आप बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई थी, अब थारो मन उसी के हूँ भी सुनना चाहूँ।
2: बिल्कुल बताओ
0: सर। तो आपने और हमारा जितना भी श्रोता है, हमारा पशुपालक भाई है, बीएनबी में मेरा जगह अंश है, वे सुनावना चाहूं तो आपसे सुनो सा मेरा अंश।
4: जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सोचा गया था

के नाम पर अलग से स्थापित हुए थे और बहुत मुश्किल था कृषि के पारंपरिक क्षेत्र से अपने आप को अलग स्थापित करना। इस तथ्य के बावजूद कि कृषि के समग्र जो जीडीपी में योगदान है उसमें सबसे अहम योगदान पशुपालन का होता था और इस पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन का योगदान कृषि से भी ज्यादा होता था। मैं उन सभी को जिन्होंने प्रोफेसर गहलोत के नेतृत्व में संघर्ष किया, जिनमें प्रोफेसर टीके गहलोत, प्रोफेसर तंवर, प्रोफेसर कश्यप, प्रोफेसर मेहता, प्रोफेसर सिंह, प्रोफेसर राव, प्रोफेसर पुरोहित, ये सभी जो पीढ़ी थी इन्होंने उस वक्त जिस तरीके से काम किया तभी ये परिकल्पना साकार हो पाई। किसी भी अगर उच्च अधिकारी को अगर हम लेकर आए फार्म्स पे तो एक बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक बेसिक प्रोडक्टिविटी का काम हो रहा है। बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है फार्म्स पे। हमारे कंट्रोलर साहब की टीम जो है बड़ी अच्छी रही और कुछ पैसा इस विकट स्थिति में भी हम लाने में कामयाब हुए हमारे फार्म्स को सुदृढ़ करने में, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और बेहतर होगा। ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा क्लाइंट है उसी के कारण ही हमें टीम्स ने मेहनत करी तो ICR का जो प्रोजेक्ट है वो भी वापस आया, रिवाइव हुआ। दूसरा प्रोजेक्ट भी जो बंद होने वाला था वापस आया प्रोजेक्ट। एक और डिसहार्टेंड टीम थी उनकी भी स्पिरिट कुछ बढ़ी है और एक नया प्रोजेक्ट फार्म मशीनरी का भी सबमिट किया है। उम्मीद है कि वॉलंटरी सेंटर आना चाहिए। कुछ और रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हमने सबमिट किए हैं NLM में और टीम ने जयपुर में भी बड़ा प्रयास किया उसमें और आगे भी प्रयास जारी है। अगर वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मैं नहीं कहता पर कंटिजेंसी में हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और कुछ अच्छे रिसर्च आउटकम हमारे आएंगे। इस विश्वविद्यालय की जो टीम है उसने जो LST पे सर्वे करके जो रिजल्ट दिया, मेरे को भी लगता था कि ठीक है हम लोगों ने काम किया और अब भेज दिया और कर दिया, पर उसका इम्पैक्ट जब अब वहाँ से सुनने को मिलता है, उसका इम्पैक्ट जो है ये हुआ है कि जो वाइड स्प्रेड

0: उसकी जो परमिशन थी एलएसडी वैक्सीन की, उसके लिए वो स्टडी बहुत सहायक हुई है। मैं नहीं जानता कि वो क्रेडिट उस तरह का, उस जो उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी टीम थी जिसने उस कार्य को संपादित किया, वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा एग्जैक्ट क्रेडिट, पर अघोषित रूप से मुझे बहुत से लोगों ने उसका क्रेडिट इस विश्वविद्यालय को दिया। और उसी का नतीजा है कि इस साल राजस्थान सरकार ने 22 करोड़ रुपए की एलएसडी वैक्सीन खरीदने की अनुशंसा जारी की है। ये एक विश्वविद्यालय को, हमारी टीम को बहुत बड़ा क्रेडिट मेरी नज़रों में है। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत से बच्चों को टॉफल जीआरई क्या होता है ये भी पता नहीं होता। कोशिश है, मेरी प्रयास है कि आप लोगों में से भी लोग स्कॉलरशिप्स लेकर बाहर जाएं। क्लिनिक्स हमारी इस विश्वविद्यालय की शुरू से रीढ़ की हड्डी रही है। इस जो झंडा ने हमेशा हमारे विश्वविद्यालय को एक नई और अच्छी ऊंचाइयां, प्रोफेसर रतन सिंह से लेकर आज तक हमेशा इस क्लिनिक का जो है बड़ा नाम रहा है। एक चीज जरूर साथ में रखें कि हसरतें ख्वाहिशें बहुत हों पर जरूरतें कम रखें। अगर आपको बिना एसी के भी रहने दिया जाए तो आपको एक क्षण भी परेशानी ना महसूस हो। इस तरह की अगर जिंदगी अपन बना सकें तभी हम सही मायने में पशु चिकित्सक कहला सकेंगे। धन्यवाद।
1: वाह भाई अरखू भाई, देखो सा सुमंत व्यास जी का उद्बोधन सुना नहीं मैं, इया लगे कि भाई देखो सा जन जन सु जरूरी बातें बता रिया था।
2: बिल्कुल सर, अब देखो सा वक्त इशारों करण लग गया है
1: और उन इशारे ने तो भाई देखो सा समझते थका समय री कदर सगला ने करनी चाहिए
2: तो मैं आपने बता दूं सा, आज चौपाल रामायण राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर पधारिया सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सेन और आज आप बातचीत करी भेड़ और बकरियां री प्रमुख बीमारियां, बचाव और रोकथाम विषय पर। डॉक्टर मनोहर सेन साहब आप चौपाल में पधारिया, हमारे पशुपालक ने इतनी बढ़िया महत्व जानकारी दी, इन सारे उम्मीद देवा आपने धन्यवाद और करा
3: राम राम, राम सा
4: राम राम सा।
2: तो आज ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीणे री बातिया कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। तो सा हमें महने आज्ञा दिराओ सा घणान घणा राम राम सा।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
6: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार किया बैठा हो।
7: काई करू धापू बेटा, भैंस पूरो दूध भी कौन दियो और बिरो जीसोरो भी कौन।
6: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी सु कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी साहब ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ी सबड़ी समस्या रो समाधान।
8: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीणे री बातें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम प्रायोजित कार्यक्रम धीनी बाता। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चरण से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं और आपसे बस थोड़ी देर में सुनिए हिंदी में समाचार। सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओहो यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government today reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG with refineries operating at optimum capacity to meet the demand. LPG production has been ramped up and every day around 46 to 47,000 tons of LPG are produced in refineries. Addressing an interministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that supply remains stable and

पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया।

सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन

खबरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं होता। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए।

0: हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते रहे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़ते।
1: देशभक्ति फिल्मी गीतों में श्रोताओं, अभी आपने सुना बॉर्डर फिल्म का ये गीत शंकर महादेवन, सोनाली राठौड़ और साथियों की आवाजों में। देशभक्ति फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 110.7 MHz पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले संस्कृत में समाचार। इन समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर, राजस्थान को कई नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से दो दिन के प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और प्रदेश को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। रेल मंत्री

0: कल सुबह जोधपुर पहुंचेंगे जहां वे विभिन्न रेल सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22

0: घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: जोधपुर से श्री वैष्णव जालौर जाएंगे, वहां वे भुज नई दिल्ली ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। ये रेलगाड़ी राज्य के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इसके बाद उनका पाली जाने का कार्यक्रम है, जहां वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे लघु उद्योग भारती के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। रेल मंत्री शनिवार को जयपुर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद वे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर की धम्बोला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से संवाद का कार्यक्रम है। इससे पहले उन्होंने बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र जनों तक पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अवैध धर्मांतरण करवाने वाले तथा राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नहरों और तालाबों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और पानी का सदुपयोग करने का आह्वान किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कुशलगढ़ के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद के आयुक्त दुर्गेश सिंह रावल को तत्काल एपीओ करने के आदेश जारी किए। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज झुंझुनू के नारनोद गांव में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री पटेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा।
2: हमारी सरकार आने के बाद आयोग का गठन किया है। आयोग अपनी कार्यवाही तीव्र गति से कर रही है और जो आयोग की रिपोर्ट आएगी सरकार चुनाव कराने को तैयार है। संवैधानिक बाध्यता के तहत जब तक ओबीसी वर्ग के संबंध में आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक चुनाव कराया जाना शायद चुनाव आयोग।
1: राज्य मानवाधिकार आयोग ने नागौर जिले में खनन श्रमिकों में सिलिकोसिस बीमारी और समुचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी आर मूलचंदानी ने नागौर के जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य खनन अभियंता को नोटिस जारी कर अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अधिकारियों को सभी खनन क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण करने, श्रमिकों की सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और गीली खनन प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने सिलिकोसिस रोगियों के इलाज के लिए हर महीने विशेष चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज लोक भवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राज्यपाल ने अधिकारियों से आम जनता के प्रति संवेदनशील होकर काम करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से लेने की बात कही, साथ ही गरीब तथा वंचित लोगों के कल्याण के लिए काम करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित

0: किए जा रहे हैं। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का कहर जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से हाल बेहाल है। लगातार पड़ रही गर्मी से आम जीवन के साथ ही पशु पक्षी भी परेशान नजर आ रहे हैं। बाड़मेर में दिन भर धूल भरी आंधी चलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तेज गर्मी के मद्देनजर आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 45.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच विभाग ने कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इससे तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से पहली बार आज गोडावण दिवस मनाया गया। जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन विभाग और स्थानीय निवासियों की कोशिशों से इस विलुप्त प्राय पक्षी इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इन साझा प्रयासों और गोडावण प्रजनन केंद्रों के माध्यम से इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
1: और जो मुझे जानकारी दी गई है, इस अपने नेचुरल रिसोर्स में लगभग 130 गोडावण पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावण पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावण, उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावण की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावण पक्षी और वन विभाग देने का।
0: वन मंत्री ने गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण भी किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद श्री शर्मा ने समस्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर और डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का दौरा कर गोडावण संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों का जायजा लिया। कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का चयन आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। वे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले इन खेलों में 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अरुंधति कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली राजस्थान की पहली महिला मुक्केबाज बन गई हैं। इससे पहले वे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए अरुंधति को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री शर्मा ने कहा कि उनकी ये उपलब्धि युवा शक्ति के लिए प्रेरणा है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ओर से दृष्टि बाधित शतरंज प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। जयपुर स्थित कल्याण संघ परिसर में होने वाली इस प्रतियोगिता में वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग दो वर्गों में होगी। 3 दिन की स्पर्धा में लगभग 65 दृष्टि बाधित खिलाड़ी भाग लेंगे। जयपुर के बिचून औद्योगिक क्षेत्र में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। श्री यादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से माटी कलाकारों के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए रोजगार के द्वार खुलेंगे। राज्य में माटी कला के सभी कलाकारों कामगारों के लिए शिविर लगाकर आर्टिजन कार्ड बनाए जाएंगे। श्री टाक ने बताया कि बजट घोषणा के तहत 5,000 बिजली से चलने वाले चाक और मिट्टी गूंधने की मशीनों का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार और गूगल इंडिया की ओर से आज जयपुर में बिल्ड विथ एआई कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 100 से अधिक स्टार्टअप संस्थापकों, छात्रों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें गूगल के अत्याधुनिक एआई टूल्स का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं और स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय तकनीकी मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने सरकारी सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की आमजन तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एआई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया और

0: संक्षिप्त में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर, राजस्थान को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया के पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिकों ने ऑनलाइन स्वगणना की, वहीं 16 मई से जनगणना कर्मियों ने घर घर जाकर मकानों की गिनती शुरू कर दी है। ये 14 जून तक चलेगी। इससे पहले मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए। दौसा लोकसभा क्षेत्र में रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम की समस्या से जल्दी ही राहत मिलने वाली है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से रेलवे की ओर से 31 नए रेलवे अंडरपास RUB स्वीकृत किए गए हैं। इन अंडरपासों के निर्माण से दौसा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम होगा, साथ ही रेलवे फाटकों पर रोजाना लगने वाले जाम से भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर के सबसे व्यस्त मंडी फाटक, जड़ाव फाटक और छतरी वाली ढाणी फाटक पर

बनने से स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों सहित आमजन को फायदा मिलेगा। लंबे समय से स्थानीय लोग रेलवे फाटकों पर जाम की समस्या से परेशान थे, जिसके कारण कई बार एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होती थी। रेलवे के इस फैसले को क्षेत्र के विकास और यातायात सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जिले में भी ग्राम रथ अभियान चलाया गया। पिछले दिनों ये ग्राम रथ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे। इनके जरिए किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही कला जत्थे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी जागरूकता की अलग जगाई गई। जिले की लालसोट कृषि उपज मंडी इन दिनों सौंफ की खुशबू से महक रही है। मंडी में सौंफ की आवक अपने पूरे परवान पर पहुंच चुकी है। इन दिनों लालसोट कृषि उपज मंडी में सौंफ की 3000 से अधिक बोरी की आवक बनी हुई है। इसके चलते पूरी मंडी में दिन भर जगह जगह सौंफ की ढेरियां लगी हुई दिखाई देती हैं और पूरा मंडी क्षेत्र सौंफ की खुशबू से महकता रहता है। लालसोट मंडी की सौंफ की खुशबू और क्वालिटी ने देश के साथ विदेशों तक में भी अपनी पहचान बना ली है और विदेशों से भी लगातार डिमांड होने के चलते मंडी का कारोबार काफी फल फूल रहा है। कुल मिलाकर ये मंडी सौंफ व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बन चुकी है और अब इसका विस्तार अन्य बड़े व्यापारिक केंद्रों के समकक्ष माना जा रहा है, जिससे इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। हालांकि मौसम में पिछले दिनों उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले भर में धूल भरी आंधी चली, वहीं कुछ गांवों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। तेज गर्मी को देखते हुए लोगों को लू और तापघात से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। चिकित्सकों ने ठंडे पेय पदार्थों का सेवन अधिक करने की सलाह दी है। उन्होंने डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सर ढककर ही बाहर निकलने और प्रचंड गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी बरतने को कहा है। भीषण गर्मी के कारण सड़कों और बाजारों में आवाजाही कम देखी जा रही है। दिन के समय पैदल राहगीर पेड़ों और टीन शीट के नीचे छाया तलाशते नजर आ रहे हैं। प्रचंड गर्मी के कारण विभिन्न सामाजिक संगठनों

0: की ओर से लोगों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर प्याऊ भी लगाई गई है। पिछले दिनों जिले में विश्व पृथ्वी दिवस पर विभिन्न संस्थाओं, संगठन, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक समूहों द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर जिले में अनेक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम रखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन ने संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए निरंतर निगरानी भी रखी। इसके साथ ही दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश का दौरा सारू पधारेला, राज्य ने नुवी रेला री सौगात देवेला। प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टानो काम पूरो फियो। राज्य में जबरदस्त तावड़ो, लोगों सागे जिनावर और परिंदाई बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण ने बचावण सारू आज गोडावण दिवस मनाई चियो। और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम में चुनी जी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रो प्रदेश रा दो दिन रा दौरा सारू काल पधारण रो कार्यक्रम है। वह काल समारे जोधपुर माए न्यारी न्यारी रेलगाड़ियां री शुरुआत करेला। पेश है माना खबर नवी श्री रपट।
2: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22 मई से ये ट्रेन 20 कोच के साथ

0: स्थापना की घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: जोधपुर रेल मंत्री रो जालौर जावन रो कार्यक्रम है वे भुज नई दिल्ली रेलगाड़ी ने रवाना करेला। आ गाड़ी प्रदेश रा कई स्टेशन वहती निकलेला। ई पाछा श्री वैष्णव पाली माए अमृत भारत स्टेशन योजना रा तेज चाल रहा काम रो जायजो लेवेला। रेल मंत्री रो थावर ने जयपुर माए राख्या जावन वाला रोजगार मेला माए केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा दफ्तर माए नवी नौकरी लाग्या कर्मचारियों ने नौकरी लागण रा कागजात देवन रो कार्यक्रम है। ई पाछे व इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर उद्योग जुड़िया नुमाइंदा सा गई बातचीत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम रा तहत आज डूंगरपुर जिला री धम्बोला ग्राम पंचायत माए काम वाला सागे बातचीत रो कार्यक्रम है। इनु पहली वे बांसवाड़ा माए अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। श्री शर्मा गैर कानूनी तरीकाओं धर्म बदली करावन वाला और सियासी हलचल माए शामिल हुए वाला सरकारी कर्मचारियों रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना। मुख्यमंत्री नहरा और तलावा री साफ सफाई सागे माही नदी रा पानी रे हर एक बूंद काम लेवन सारू कहो। वह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान माथे जोर देता थका पानी रा हल्का माए खुद रे पान उबो वेवन न सब ऊंचो बतायो। मुख्यमंत्री कुशलगढ़ रा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद रा कमिश्नर दुर्गेश सिंह रावल ने तुरंत एपीओ करण रा हुकम ही दीना। राज्य में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव सारू वार्डां रा पुनर्गठन और वोटर लिस्टां तैयार करण रो काम पूरो फेंक्यो है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज झुंझुनू जिला रा नारनोद गांव माए खबरनवीसां सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे कहो कि चुनाव री तैयारी पूरी कर ली रीची है। श्री पटेल अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण रा बारा माए कहो कि सुप्रीम कोर्ट रा हुकम रा मुजब ट्रिपल टेस्ट रपट रा आधारों राजनीतिक आरक्षण दियो जावेला।
2: हमारी सरकार ने अनेक बार आयोग का गठन किया है। आयोग अपनी कार्रवाई तीव्र गति से कर रही है और जो आयोग की रिपोर्ट आएगी सरकार चुनाव कराने को तैयार है। संवैधानिक बाध्यता के तहत तब तक ओबीसी वर्ग के

0: आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक चुनाव कराया जाना शायद चुनाव आयोग।
1: राज्य मानवाधिकार आयोग नागौर जिला में खुदाई रा काम जुड़िया मजूरा में सिलिकोसिस री बीमारी हरमारा इलाज सारू जरूरी सुविधा री कमी माथे खुद संज्ञान लिनो है। आयोग रा अध्यक्ष जस्टिस जी आर मूलचंदानी नागौर रा कलेक्टर और चीफ माइनिंग इंजीनियर ने नोटिस जारी कर गैर कानूनी तरीका खुदाई रा खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना। आयोग अहलकारा ने सगला खनन हलका री भौतिक जांच करण और मजूरा ने हिफाजत तू जुड़िया साजो सामान मुहैया कराउन तय करण और सिलिकोसिस रा मरीजा रा इलाज सारू हर महीना खास शिविर लगावन बाबती कहो। भारतीय प्रशासनिक सेवा रा साल 2025 बैच रा सिखावन ले रिया अहलकार आज जयपुर रा लोक भवन माए राज्यपाल हरिभाव बागड़े मुलाकात कीनी। ई मौके राज्यपाल आ अहलकाराओं जनता रा प्रति संवेदनशील भैर काम करण सारू कहो। श्री बागड़े जनताओं जुड़िया मुद्दा माथे खास ध्यान देवन री राय दीनी। राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार का नियम चलाई जावन वाली विकास री योजनावां ने असरदार तरीकाओं लागू करण माथे जोर दीनो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश माए पड़ रहा जबरदस्त तावड़ा सागे उन्नो बायरो बाजनो मिनखा जिनावरा और परिंदा रा हाल बेहाल है। बाड़मेर माए आखा दिन आंधी चालनो परेशानी रो सामो करनो पड़ियो। राज्य माए लारला 24 घंटा माए सब बत्तो तापमान श्री गंगानगर माए 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी चियो। वठे तेज गर्मी न ध्यान राखता थका चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री ओर जनताओं एहतियात राखण री अपील करी ची है। फलौदी माए 44.8 और अलवर और पिलानी माए 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नापी चियो। मौसम विभाग रे मुजब आवता एक सप्ताह ताई प्रदेश रा घनखर हलका माए मौसम साफ रहवेला। हालांकि काल राज्य रा उत्तराद आतुणी हलका माए 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार आंधी चालन रा आसार है। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा कहो है कि जनता री भेड़ी कोशिशां और गोडावण प्रजनन केंद्रां रे जरिए राज्य पक्षी गोडावण री तादाद माए लगातार बढ़ोतरी फैल रही है। वे आज जैसलमेर माए राखी चिया राज्य रा पहला गोडावण दिवस कार्यक्रम माए बोल रहा है।
2: और जो मुझे जानकारी दी गई है इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावन पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावन पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावन उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावन की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावन पक्षी और वन विभाग देने का।
1: ई मौके वन मंत्री गोडावण री मूरत रो अनावरण कीनो और पर्यावरण न बचावण रे बारा माए स्कूला माए राखी जी होणा जीतण वाला रो मान कीनो। ई पाछे वे समरा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर और डेजर्ट नेशनल पार्क रा सुदासरी हलका रो दौरो कीनो। श्री शर्मा वठे अहलकाराओं गोडावण न बचावण सारू करी जा रही कोशिशां री जानकारी लीनी। स्कॉटलैंड रा ग्लासगो माए 23 जुलाई 2 अगस्त ताई भेवन वाला कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 माए शिरकत करण सारू भारत रा खिलाड़ियां रा नाम रो ऐलान करतियो चियो है। आमाए कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी शामिल है। वा 70 किलोग्राम भार वर्ग माए भारत री ओर रिंग माए उतरेला। अरुंधति राष्ट्रमंडल खेला माए शामिल भेवन वाली राजस्थान री पहली महिला मुक्केबाज वेला। वे बॉक्सिंग विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप माए तमगा जीतर देश और प्रदेश रो नाम रोशन कीनो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अरुंधति ने सोशल मीडिया संदेश रे जरिए बधाई देता थका कहो कि हमारी आ उपलब्धि नौजवाना सारू सीख देवन वाली है। अरुंधति फिलहाल भारतीय खेल प्राधिकरण साई रा पटियाला केंद्र माए सिखावन ले रही है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ री ओर दृष्टि बाधित शतरंज होड़ काल सरू फैला। जयपुर रा कल्याण संघ परिसर माए फेवन वाली 3 दिन री इन होड़ माए दृष्टि बाधित 65 खिलाड़ी शामिल फैला। आहोर वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग माय फैला। जयपुर रा बिचून औद्योगिक हलका माय माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनायो चावेला। श्री यादे माटी कला बोर्ड रा अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक आज जयपुर माय खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वह कहो कि इनो माटी कलाकारा सारू नुवी तकनीक रे जरिए नुआ काम धंधा रा मौका बनेला। श्री टांक कहो कि राज्य माय माटी कला रा सगला कलाकारा और कामगारा रा आर्टिजन कार्ड बनावन सारू बोर्ड री ओर शिविर लगाया जावेला। वे बतायो कि प्रदेश माय बिजली चालन वाला 5000 चाक और मिट्टी गूंदवारी मशीना दी जावेला। इस आगे मौजूदा साल माय माटी कला रा 100 प्रशिक्षक तैयार करावनो ही तय करी चियो है। राज्य सरकार और गूगल इंडिया री ओर आज जयपुर माय बिल्ड विद एआई कार्यशाला राखी ची। इन माय नुआ एआई टूल्स री सिखावन दीरी ची। ये मौके सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग रा शासन सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर सरकारी सेवावां और जनता रा भलारी योजनावां री पात्र लोगां ताई बेहतर पहुंच तय करण सारू एआई तकनीक रा इस्तेमाल माथे जोर दीनो। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में उम्मीद नेटवर्क देश ने सौंपियो। इस मौके वे कहो कि जनता सारू स्वास्थ्य जुड़ी सेवावां सस्ती और आसान बनावण माथे केंद्र सरकार रो खास ध्यान है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहो कि उम्मीद पहल हाल ताई 3 लाख लोगों ने फायदो मिल चुकी है। आ पीढ़ी दर पीढ़ी भेवन वाली बीमारियां आगे करण सारू जैव प्रौद्योगिकी विभाग री राष्ट्रीय पहल है। इरा तेत आम बीमारियां रा इलाज राय रोकथाम और जनता रा स्वास्थ्य रे बारा माय जाग जगावण माथे खास ध्यान दियो जा रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई तई राय दे सको हो। नंबर ओजु सुन ली राव सा 1800117800। आखिर माय खास समाचार एक कर फेर सुन ली राव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश रा दौरा सारू पधारेला। राज्य ने नुवी रेला ने सौगात देवेला। प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टा रो काम पूरो भयो। राज्य में जबरदस्त तावड़ो लोगों सागे जिनावर और परिंदाई बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण ने बचावण सारू आज गोडावण दिवस मनाई चियो। और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम माय चुनी ची। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल समारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारे किसान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: कार्यक्रम किसान वाणी सुनना रहे सभी किसान भाई बहना ने, भाई अर्जुन का निशू
4: और भाई देवक का निशू, मोकला मोकला, राम राम, राम राम, अर्जुन भाई राम राम। अर्जुन भाई, बार जो बगत है ना, वो तो उन्याला को टीम चल रही है, और उन्यालो भी की एक जबरो है, क्योंकि चारों कन्या देखो तावड़ो है ना, इतो जोर को पड़न लाग रही है कि इनके महीने जी कठे अपना थोड़ी बहुत भी लापरवाही बरत दिया ने तो बा अपने की है के सीध सके। तो आपने जगह किसान बहन भाई ही बना आई कहना चाहूंगा कि भाई खेती बाड़ी को काम धाम तो आपनों चालू रहे, रुके कोई नहीं है, क्योंकि खेत में जब फसल नहीं बैठ रही हुए तो आपने खेत में और भी मोकला काम हुए, खेत में तैयार करना हुए फसलों के लिए, तो बार आपने खेत तैयार करने का काम धाम भी आप खेत में करने लाग रहा, तो भी मैं मोटी सावधानी तो आ रखनी अपने के भाई तावड़ी को जो टेम हो जाने बीक का महीना अपन काम नहीं करना, वो टेम अपन उकाणो है,
3: सुबह शाम कर लियो,
4: सुबह शाम कर लियो। जी हाँ, मान लियो आप सुबह तो खेत में जल्दी पू गई जमा, मान लियो किसान है ना, दिन के पहले तो की है के सूरजी किसान ने खेत में निकले है, सूरज वो खेत के मां पुगे बाद में उगे, तो दिन के तो आप जल्दी पूग जावा, पण के कई बार के किसान लालच कर ले है, काम में लगेड़ो है ने, जब वो सोचे कि भाई वो थोड़ो सो काम जिया, मान लियो आपने कोई बार खेत में जिया खाद गिरी है और सोचा भाई अब थोड़ी आ खाद और पड़ी है, इन आप थोड़ी और खिंडा दें खेत में, और भी चक्कर में जी तावड़ी कर दिया, आता टाइम जी तावड़े के चपेट में आ जावा तो फिर कई दिनों को काम ही खोटी हो जाए,
3: कई दिनों काम हो जाए। दूसरी बात ही बात कब ध्यान रखो, अगर आप पानिया देखा कि भाई आप दो घंटा लगे चार घंटा लगे तो कलेवो सागे ले जाना बहुत जरूरी है।
4: भाई अर्जुन भाई, कलेवो सागे भी ले जाना जरूरी है, जी मान लियो बोला सुधिया जावा बी टेम नहीं करा तो सागे ले जावा, और नहीं मान लो गरा मान लो आप क्लियो करके जावा और पानी सागे लेके जावा, तोलियो तो आपने जो वो तो किसान सागे रखे ही है क्योंकि सिर तो ढकनो बहुत जरूरी है, तो ये तावड़े की एक अपने ख्यात रखनी बहुत जरूरी है, मान लो सुबह शाम में आप काम धाम करता रहा, और एक सागे आपनो जो पशुधन है बिकी भी अपन ख्यात रखनी, आ नहीं कि आप अपनी अपनी तो ख्यात रख लिया और आपनो जो और पशुधन है और आपना जगह मान लो भेड़ बकरी ही गा ही पशु ही बंको भी आपना नंडिया टाबर ही बंकी भी सेंकी अपन की ख्यात रखनी है, और पशु की बात रही जब चली ने तो अर्जुन भाई के है के आदमी ने दूध की जरूरी है ना, बस ज्यादा रहे आप दिन के पहले उठा ना, उठते ही अपना दूध याद आवे, नन्हे टाबर ही भी उठते ही दूध मांग ले, और माने भगत भगत पर मान लो नन्ना टाबर ही मन दूध चाहिए भी, तो दूध की मान लो इतनी मांग है कि दूध वालों जो को काम है ना वो कदे ही है कि मंदो पड़ने वालों को नहीं,
3: मंदो पड़ने वालों को नहीं होगा कदे ही।
4: हाँ, तो कहने को मतलब वो है कि भाई आप खेती बाड़ी के सागे जी धन पशु रखा तो भी ठीक है, आप सोच लिया के आपने कन जगह है पर्याप्त भाई, जी मान लो के पशु रखने की जगह है, पशु के चारे ने रखने की जगह है, आपने खुद की है तो भी के बाद में आप डेयरी व्यवसाय है वो भी आपने की है लाभ को सौदो है, डेयरी व्यवसाय के मायने नुकसान कम होने की संभावना है, और जको आदमी मान लो जगह थोड़ा पशुधन को ध्यान हुए पशुधन को काम भी को करेड़ो है या भी ने करने को भी जिज्ञासु हुए भी ने ठीक लागतो है तो भी ने ई काम में उतरना चाहिए अर्जुन भाई,
3: उतरना चाहिए। और एक मान देखो कह दिया भाई, सबसे बढ़िया बात है कि जको भी आप पशुधन रखा आपने क्षेत्र को आपने वातावरण को आपने क्षेत्र आपने वातावरण को अगर कोई पशु रखा ने तो भी कमान आपने मोकलो फायदो जाओ,
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: मुख्य जखी भी आपने जिया मान लिया आपने चूरू का क्षेत्र गवाए ने तो चूरू का मायने अपनी बात को ध्यान रखना चाहिए कि भाई आ गाय गाय रखनी है, आ भैंस रखनी है, ए बकरी रखनी है, ए भेड़ रखनी है, अब जी हम आलू का कई किसानियां देखे है कभी आपा तो डेयरी खोल रहा
4: है
3: अमेरिकन का लिया हुआ तो वह देखो कि तावड़े का मन तो हल्का लग जावे
4: बिल्कुल।
3: और दूसरी बात के बाकी इतनी मेहनत करनी पड़े है देखो बने तावड़े से तो बताना पड़े बने ठंड से बताना पड़े लुहा से बताना पड़े बाकी कूलर के साथ व्यवस्था करनी पड़े क्योंकि वह गाया यहाँ की हो जाए आपने क्षेत्र का बहुत कम पन पाए तो आपने जिकी भी क्षेत्र का मायने आपने क्षेत्र में आपने इलाके का मायने जो कोई पशुधन है कामयाब हो बिको अगर डेयरी व्यवसाय करा तो भी कामयाब आपने जरूर मिलेगी।
4: भाई अर्जुन भाई थारो कहने को मतलब वो ये के आपने क्षेत्र को जो पशु आपने के नोसी ने तो भी मैं भी के लिए आपने अलगू कोई व्यवस्था को करनी पड़े भाई वो तो आपने क्षेत्र को ही है आपनों जो को तापमान है आपने जो को वातावरण है आपनी जी की प्रकृति है वो भी कमाई ने पलो बढ़ेड़ो है जन्मेड़ो तो भी के लिए अलग आपने की व्यवस्था को करनी पड़े। अभी थे अमेरिकन या होलिस्टन बागाया की जी की बात कर रहा तो वे गाया के दूसरे ठंडे मान लो वातावरण की ही और बांध में मान लो आज की आपने देखो गर्मी मोकली पड़ने लग रही है बाहर तो तावड़े के महीने अर्जुन भाई यहाँ लगो यहाँ डोला गंदे खाने जिदी झड़सी निकली है और सड़क के ऊपर तो यहाँ लहर सी चाल रही जानी वास्ते में जल निकट नहीं है कि निकलने आ गई तो इतनी जोर की जगह गर्मी पड़े ने बा गर्मी जगह ठंडे प्रदेश का पशु होने बेके बांक के लिए फिर सेन कौन करे बांक के लिए फिर अपन अलग व्यवस्था करनी पड़े बांक को जो आवास है ने वो भी अपने भी तापमान के हिसाब बनाना पड़े बांक के लिए अपन कूलर भी लगाना पड़े क्योंकि विश्व ही नहीं तो भाई लक्की मान लो बीमार हो जाए बीमार होने के बाद में पशु मर भी जा तो नुकसान हो जा तो कहने को मतलब वो है कि भाई अपन जो डेयरी व्यवसाय में उतरा ने तो मोटी बात है कि आपने क्षेत्र की जगह उन्नत नस्ल की जगह किस्म ही ने जिका नस्ल ही और बी नस्ल का जगह पशु ही वो अपन अगर राख से बढ़िया दूध देने वालों बढ़िया जो पशु है बी को अपन चयन कर लिया अपने आसे पासे की अपने देश की जगह नस्ल ही बढ़िया देसी तो मामू मान लियो अच्छी दुधारू जगी गाय ही बह ले अच्छी नस्ल की भैंस है अगर डेयरी में अपा गाय की डेयरी करना चाहो तो आप अच्छी नस्ल की गाय ले लिया और गाय और भैंस दोनों अपा रखना चाहो तो बम भी बढ़िया नस्ल को अपा चेंज करा। ये मोटी बात है कि अर्जुन भाई सौ मोटी बात आई है डेयरी के महीने के जी आपने अगर आपने खुद की जगह हुए जेटा आप पशुओं को बड़ी आवास बना लिया पशुओं के लिए चारे की अच्छी व्यवस्था कर लिया तो वो आपने अगर है तो भी के बाद में आप आगे बढ़ा फिर बढ़िया नस्ल का पशु ले आया और काम करने को भी अपन के पशुओं के जो मान लो बाकी पशुओं की खेचल करने को पशु कई बार के हो गए जब मान लो अपन ने पशुओं में रुचि को नहीं अपन जो डेयरी व्यवसाय में उतर जावाने जब तो देखो काम बने को नहीं भाई डेयरी व्यवसाय अपन करना है तो कम से कम वो काम अपन आते हुए भी काम में अपनी रुचि हो पशुओं के बारे में पशुओं की खेचल करने में आपने ध्यान हो ने जो आपा भी व्यवसाय में सफल हो उसका
3: व्यवसाय करा। और दूसरी बात ये बात को भी आपा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपा डेयरी व्यवसाय को काम करा तो छोटे स्तर के ऊपर अगर आपा आगे बढ़ा ना है तो देखो आगे कामयाब हो जाएगा क्योंकि कई बार यहाँ देखा कि बड़े स्तर पर कर लिया अभी कमान देखो घाटो होने की संभावना ज्यादा रहे जो धीरे धीरे अगर आपा जो मान लो कोई गाय रखा या भैंस रखा है दो लिया तो दो के बाद में आपा ने फिर पड़ जाएगा कि भाई इस समय का मैंने बया होगी इस समय का मैंने टिको लाग गए इस हिसाब से को खर्चो लाग रही है इतो चारो लाग इतो बने खड़े देने पड़े तो बिग हिसाब से अगर धीरे धीरे धीरे अगर आप पशु बढ़ावा है तो बिग मैंने अब मैं बताऊं कि निश्चित रूप से आप फायदा मंद होगा क्योंकि डेयरी व्यवसाय को एक यहाँ को काम है कि नकद रुपया जाए हाथ तो हाथ या मान लो सुबह दूध बेचो तो शाम के पैसा शाम के बेचो सुबह एक मान आई कोई जरूरी को नहीं इका जिया मान लो पशुधन रखा है कि देखो कि आमदनी बहुत बढ़िया है जब गोबर पोटा तो भी आप बढ़िया देसी खाद बना के बेचा तो भी कमाने भी देखो मोगलो फायदा हो जा।
4: भाई कहने को मतलब वो है कि आप जगह किसान बहन भाइया खेती बाड़ी को काम करा बंक के लिए तो पशुधन की है कि बहुत जरूरी भी
3: जरूरी है
4: क्योंकि अपन खेत के मायने खाद भी जाए और अपन खुद ने भी दूध दे जाए बढ़िया मान लो देसी भोजन हो गो जो आप मान लो शरीर बलिष्ठ हो गो काम करने के योग्य हो क्योंकि खेत को काम तो किए अर्जुन भाई बहुत ही है मेहनत को काम है तो भी कमाइन चाहे और भी के बाद में की है कि जब आप मान लो डेयरी को जो को काम करिए तो आप धीरे धीरे बढ़ाओ और फिर आप सोच लियो कि भाई अपन तो पांच पशु या दस पशु सागे लेना ही तो बिम की है अपनी जी सरकार ही ने वह की है कि अर्जुन भाई मान लो बैंक के द्वारा ऋण है ने वो उपलब्ध करावे वो अनुदान के सागे उपलब्ध करावे बीबी कमाई ने कई योजना मान लियो आपने जिकी सरकार है बाकी चाल नहीं आपने भारत सरकार है जिकी आपने राज्य की जिकी सरकार ही बे अलग अलग प्रकार की डेयरी पर जिकी योजना ही बे चाल नहीं बा योजना के मायने की है अपन ऋण उपलब्ध कराऊं बैंक का और भी ऋण के सगे अनुदान भी होए यानी कुछ राशि है कितो परसेंट होए वो भी अनुदान के रूप में भी मिले तो जद मान लियो अपन मान लियो ज्यादा बड़ो

अपना जका मान लो जका देश का जका प्रधानमंत्री बाकी जकी सोच है ना बा खेती बाड़ी के लिए बहुत ही दूरदर्शी सोच है और बाका जका प्रयास ही ने खेती बाड़ी के लिए।

0: जगह देश का जगह किसान वर्ग के सगे सगड़े देश ने भी बधाई दिया कि भाई वो अपने लिए गौरव को विषय है। तो आज आपने जो को किसान समुदाय है ने भी के लिए वो बहुत ही अच्छो गौरव को जो को क्षण है कि वो एग्रीकोला मेडल जो को सम्मान है वो आपने देश के प्रधानमंत्री जी ने मिले है। तो आपने देश का करोड़ों जो का किसान ही बंगो परिश्रम है बंगो खेती बाड़ी खेती के क्षेत्र में जो को उपलब्धियां को जो को सम्मान है ना वो है कि आपने देश की खेती है वह भी देखो विश्व स्तर पर सराही जा रही है और आपना जो का किसान ही वे भी नवाचार कर रहे हैं भी आपनी जी की सरकार है वह बहुत बड़ो योगदान दियो है। तो जरूर आपने लियो गौरव को विषय बात भी अपन और भी कर पहली की है अपना जगह किसान बहन भाई ने बीच बीच में मनोरंजन की उड़ीक तो रही है और जरूरी भी है,
1: जरूरी भी
0: है? अर्जुन भाई जरूरी भी है क्योंकि मनोरंजन को तड़को लागे बिना ज्ञान है ने वो पच्चे को नहीं है। तो देखो एक लोग ज्ञान दे रो भी ठीक को नहीं बीच बीच में मनोरंजन भी करावा तो आ देखो प्रकृति में जुड़ी एक लोक रचना है तो बस सुन लिया वहां सुनो सा तावड़े पर एक चंद्रकला ठक्कर और सत्यंगी आवाज में लोक रचना।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: हैं? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो किसान बहन भाई, अभी अपने सांतरा सा संदेश सुनिया और संदेश से पहले अपने एक लोक रचना सुनी, तावड़ा मधुरो पड़ जा रहे चंद्रकला टक्कर की आवाज में। तो तावड़ों देखो अर्ज करे जा रही है कि मधुरो पड़ जा, तो तावड़ो तो मधुरो पड़े ने पड़े अर्जुन भाई, पर अपन ने की है कि ख्यात रखनी जरूरी है। और एक सागे की है कि अब आर आप जा खेती बाड़ी के महीने जिकी अपनी अब आने वाली खरीफ फसल ही बम बवागा, तो बं के लिए भी अपन की है कि खेत अपने परंपरागत तरीकों खाद भी तैयार करना ही, उर्वरकों का जो खर्च है वो अपने की इनकी बचानो है, क्योंकि बचत है ना, आज की बचत काल को भविष्य मजबूत करे। तो भी यही मान लियो आपने जी, मान लियो अपना जिका जिका कृषि मंत्री ही शिवराज सिंह जी चौहान है, तो वह भी एक जिकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है आपने मान लियो एग्रीकल्चर खरीफ कंपेन ने बी के महीने मान लियो 28 और 29 महीने जिकी होगी, तो बिम्बे भी देखो भी बीमे जिकी खरीफ की जिकी तैयारी है ना, बी की रणनीति के लिए मान लियो ये एक आयोजन करी गई है। तो 28 और 29 महीने होने वाला जो खरीफ सम्मेलन में जो कि संतुलित उर्वरक ही ने बाके उपयोग के ऊपर ही विशेष जोर देने की बात है अपना जो कृषि मंत्री जी ही बे जिका कह रहे हैं। और सागे यह भी कह रहे हैं कि भाई जिकी प्राकृतिक जिकी खेती है ना बिना बढ़ाओ देने के लिए भी के मायने एक अलग सत्र भी आयोजित करने की बात करी गई है, वो निर्णय भी ले गए। और बीक महीना मान लो जिका अपने गुजरात का जिका राज्यपाल आचार्य देवव्रत ही वह भी बीक महीना होगा बने भी सम्मान सहित मान लो आमंत्रित करे गए ही। और प्राकृतिक खेती है बी के लिए व्यवहारिक जो प्रेरणादायक जगह अनुभव ही वह अपना जगह राज्य के सागे देखो भी कंपेन में साझा करे जाएगा। और बी के सागे सागे वो सिस्टम रहेगो के भाई खेती के मायने भी अपने जो रासायनिक उर्वरक ही कम कम काम में लेना चाहिए। और भाई आबार जो चौमासे को टेम आ रही है अभी के महीने भाई पौधा लगाने के लिए भी अपन खड़ा खुड़ा खोद की तैयारी कर लेना चाहिए। और बात नहीं तो अपन पौधा रोपण पर और भी करने मन करो, अपन वक्त के बंदे रहा हाँ। आज के कार्यक्रम को वक्त हटाई था नहीं, भाई देव ने
2: और भाई अर्जुन ने
1: देव सीख करा राम
2: राम राम।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। और आज के इस राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे चित्रेश शर्मा और साथियों।

राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चित्रेश शर्मा और साथियों द्वारा गई कुछ लोक रचनाएं। राजस्थानी लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 110.7 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम

तो श्रोताओं, फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति आप सुनेंगे बंटी और बबली फिल्म से। गीत को गाया है अलीशा चिनॉय और शंकर महादेवन ने, साथ दिया है जावेद अली ने, गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

तो श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। पहली प्रस्तुति आपने सुनी बंटी और बबली फिल्म से अलीशा शिनॉय और शंकर महादेवन की आवाज में ये नगमा। आइए सुनवाते फिल्म संगीत में अगली प्रस्तुति चालबाज फिल्म से। गीत को गाया है अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों ने। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की प्रस्तुति चालबाज फिल्म से अभी आपने सुनी अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में। आइए बढ़ते हैं फिल्म संगीत में अगली प्रस्तुति की ओर। विश्वात्मा फिल्म का ये गीत अब आप सुनने जा रहे हैं। इस गीत को गाया है साधना सरगम ने। आप सुन रहे हैं विजू शाह के संगीत निर्देशन में बनाई गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने।

विश्वात्मा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना साधना सरगम की आवाज में। फिल्म संगीत की ये प्रस्तुति इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। आइए सुनते हैं एक और प्रस्तुति, त्रिदेव फिल्म से ये गीत अभी आप सुनेंगे। अमित कुमार, सपना मुखर्जी और

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: श्रोतम फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनेंगे और फिल्म का नाम है चमेली। इरशाद कामिल का लिखा यह गीत आप सुन रहे हैं, जिसे संगीतबद्ध किया है संदेश शांडिल्य ने।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: श्रोतम, फिल्म संगीत की ये प्रस्तुति आप सुनेंगे हीरो नंबर वन फिल्म से, और इस गीत को गाया है उदित नारायण और पूर्णिमा ने। संगीत इस गीत में दिया है आनंद मिलिंद ने और लिखा है समीर ने।

शरद फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से। अभी आपने गीत सुना, हीरो नंबर वन फिल्म का ये गीत। आइए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फिल्म संगीत की ये प्रस्तुति थानेदार फिल्म से आप सुनेंगे। पपी लहरी और अनुराधा पोडवाल ने इस गीत को गाया है। गीत लिखा है अंजान ने और संगीत दिया है पपी लहरी ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत की ये अंतिम प्रस्तुति।

तो श्रोताओं, थानेदार फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या, और रात्रि 9:00 समय रहेगा न्यूज़ @9 का। इन समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया।
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त

0: सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
2: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

श्रोताओं, राजस्थानी लोक संगीत का यह कार्यक्रम रफीक सागर की इस रचना के साथ अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद सुनेंगे आप आकाशवाणी दिल्ली से रिले कार्यक्रम। सबसे पहले रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कंट्री वाइड और रात्रि 9:45 पर समय रहेगा इनसाइट्स का।

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कंट्रीवाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे देश में हीट वेव की वर्तमान स्थिति और आगामी मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक। डॉक्टर पटनायक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि हीट वेव वास्तव में है क्या, किस स्थिति को हीट वेव समझा जा सकता है।
2: हीट वेव जो हमारा समर में जो आता है, जैसे कि हम डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कोई भी स्टेशन का, और जो हम डिपार्चर जैसे आज का टेम्परेचर कुछ है तो नॉर्मली कितना रहता है और 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको हीट वेव कहते हैं। जब डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल से तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि समर में मई महीने में, जून महीने में, अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है कि लगभग बहुत जगह में हीट वेव प्रिपेल करता है।
1: अगर देखा जाए तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही हम इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो ये जो पैटर्न है इससे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या कारण है फिलहाल?
2: अभी जो फिलहाल जो स्थिति है हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव का प्रभाव है और उसमें रेड कलर का वार्निंग दिए हुए हैं, और ये लगभग इसी रीजन में हम अगले 3 दिन तक यही रहेगा। बाकी जगह में भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। मुख्य तो ये तीनों जो बताया मैंने, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें हमको रेड कलर भी वार्निंग दिया है। काल का अगर तापमान देखा जाएगा तो बहुत जगह में कंट्री के 40 से 47 डिग्री के बीच में उस जगह में टेम्परेचर रहा। सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो काल था बांडा में ईस्ट उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री। तो ये एक बेल्ट है जो है उसमें ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसी एरिया में भी है, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एरिया में भी, झारखंड एरिया में भी है, थोड़ा सा जो गुजरात के कोस्टल एरिया और जो कि महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया, कर्नाटक कोस्ट एरिया, वहाँ थोड़ा नहीं है, बाकी लगभग बहुत जगह में अभी ये स्थिति बना हुआ है।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी आपने रेड कलर ऑरेंज अलर्ट की बात की, तो एक सामान्य इंसान अगर समझना चाहे तो क्या वो समझ सकता है कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट का अगर हीट वेव का जारी किया गया है इस तरह के अलर्ट, तो उनका महत्व क्या है और इन चेतावनियों को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए?
2: हीट वेव भी आजकल स्नो क्लियर हो जाता है, इसी हीट वेव चलते बहुत कर कैजुअलिटी भी होता है। जब हम टेम्परेचर का वार्निंग देते हैं, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म जो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम दिया जाता है तो उसको लोगों का नजर में अच्छा से आता है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से जो डिजास्टर मैनेजर है वो ले पाते, इसलिए हम कलर कोडिंग का वार्निंग उसको बोलते हैं, कलर कोडिंग वार्निंग देते हैं। तो हमें 4 कलर जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 4 कलर में देते। तो ग्रीन अगर दिया गया है तो उसमें हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहाँ येलो है तो थोड़ा सावधानी होना पड़ेगा, येलो उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो गया, लेकिन जब ऑरेंज है तो ये वार्निंग है, एंड अगर रेड दे दिया मतलब टेक एक्शन, आपको एक्शन

0: बाहर नहीं जाना है, आपको एक्सपोजर में नहीं करना है, काम नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं लेना है, पानी पीना है, ये सब जो बाकी जो हमारा गाइडलाइंस होता है कि ऐसे ऐसा स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, एनडीए में या बाकी बहुत सारे एजेंसी जो बताते हैं, यही हम कलर कोड वार्निंग दे के उन्होंने भी उसका ग्रेविटी सिचुएशन देख के उन्होंने वो बताते हैं और लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए।
1: एक सामान्य गर्मी होना और हीट वेव होना कई बार लोगों को लगता है कि जैसे एक जैसी बात है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो हीट वेव मतलब कितना अलग है सामान्य गर्मी से, और इसमें जो इसकी अवधि होती है और तीव्रता होती है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में बढ़त देखने को मिल रही है, क्या इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा सकता है?
0: जलवायु परिवर्तन हम किसको कहते हैं? हमारा जो तापमान जो है धीरे धीरे धरती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम लास्ट पिछले 30-40 साल देखेंगे तो उसका ट्रेंड जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारे चीज में, जैसा कि अभी एक्सट्रीम हीट वेव, हमारा हीट वेव है उसका इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी जो कि बहुत होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये होता है, थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ये हीट वेव रिलेटेड के लिए भी उसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज का है।
1: डॉक्टर साहब, अगर अभी के समय की हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हीट वेव का असर काफी हिस्सों में देखा जा रहा है, किन हिस्सों में इसकी एक्सट्रीम लहर देखने को मिल रही है और जहां लोगों को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, जो प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें करने की जरूरत है?
0: देश के बहुत जगह में अभी हमारा हीट वेव का प्रभाव है, ज्यादातर प्रभाव जो है बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये तीन राज्य जो है मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का भी वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर दिए हुए हैं, देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5-6 दिन तक ये प्रभाव रहेगा। धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा, 4 दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
1: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे हीट वेव जैसी परिस्थितियों से निपटने में लोगों को किस प्रकार सहायता मिल रही है?
0: हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है, हम क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फोरकास्ट देंगे, लोकलाइज फोरकास्ट देंगे, हाइपर लोकल फोरकास्ट देंगे। दिल्ली में क्या है, आज मान लीजिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो और जगह 48 डिग्री भी हो रहा है, तो हाइपर लोकल में तापमान का नहीं, बाकी जो कभी कभी बहुत अचानक जो आपका ये भी हो जाता है कि थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश बहुत हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये सब हमको मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे जिसमें कि हम ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कि एक दिन के अंदर, आज ये शाम को 4 बजे के बाद किया होगा, 6 बजे के बाद किया होगा, शाम को ये बहुत थंडरस्टॉर्म आएगा, हेवी रेनफॉल होगा, ये हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम वही डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा काफी नया नया चीज हम इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राडार लगा रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडल जो कि फोरकास्ट देता है उसको हमने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने AIML का टेक्निक टूल भी हम उसमें लगा के उस हाइपर लोकल फोरकास्ट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं।
1: अगर शहरों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं को?
0: हाँ, अर्बन हीट आइलैंड, देखो ज्यादा का शहर में देखेंगे तो जो शहर का डेंस एरिया है, बीच वाला जो एरिया होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसका भी टेम्परेचर में थोड़ा सा प्रभाव करता है। दूर थोड़ा चले जाएंगे तो थोड़ा सा गाँव जैसा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, तो आपको लगेगा कि सिटी के अंदर में एक हॉट पॉकेट बन गया, 2-4 डिग्री का ज्यादा होगा उसे बाहर से, तो ये इसके लिए हम बोलते हैं कि आइलैंड जैसा कि बीच में आपका हीट आइलैंड, जैसे कि उसका 3-4 डिग्री ज्यादा बन जाएगा, वो उसके लिए बहुत कारण है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका शहरीकरण हो गया, बहुत में सिटी है, इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल है, आपका AC है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिटी के अंदर हमको 3-4 डिग्री कभी कभी ज्यादा मिलेगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं।
1: तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, या फिर निर्माण स्थल जैसी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में कामकाज करते हैं, वहां पर हीट एक्शन प्लान बनाना कितना जरूरी है?
0: भारत के अधिकतम राज्यों में हीट का प्रभाव है, तो हीट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखा गया कि हीट एक्शन प्लान करते गुजरात साइड में पहले स्टार्ट हुआ, बहुत सारे राज्य में है, तो वो हीट एक्शन प्लान के वजह से जो हीट वेव में जितना रिलेटेड डेथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा लेकिन हीट एक्शन प्लान में क्या होता है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ रहता है, मेडिकल टीम आपके साथ रहते हैं, क्या करना है, देन आपका जो IMD की जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं वो उनके साथ रहेगा। तो उसके बाद उन्होंने प्लान के हिसाब में पहला प्री सीजन, पहला समर से पहले उनको क्या करना है, तैयारी करेंगे, मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो एक्शन प्लान। तो हीट एक्शन प्लान के तरफ अगर काम करेंगे तो हमारा जो हीट वेव रिलेटेड जो डेथ या बाकी जो सारे लॉसेस हो रहा है वो काफी कम हो रहा है भी, और हीट एक्शन प्लान का बहुत जरूरी है। ऑलरेडी बहुत सारे राज्य में ये हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी इफेक्टिव है।
1: डॉक्टर पटनायक, किसानों की अगर बात करें तो अत्यधिक गर्मी का जो हीट वेव का टाइम होता है एक तरह से उनके लिए दोहरी चुनौती है, खेतों में काम भी करना और अपने आप को भी संभालना है, कामकाज पर और फसलों पर भी असर पड़ सकता है। तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए विशेष तौर पर सलाह जारी की जाती है?
0: उनके लिए तो अभी पूरा अत्यधिक गर्मी टाइम में उनको जितना कम एक्सपोजर होना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट का इतना वो करना चाहिए, जो कि पार्टिकुलर टाइम होता है या आपकी जो धूप में टाइम में मान लो 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे, इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। सुबह सुबह काम जो अर्ली आवर्स है उसमें थोड़ा काम को देखना पड़ेगा या शाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्सपोजर जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में आपको जितना भी होगा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर होते हैं वो उनको काम करना ही पड़ता है, वो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी हम देख रहे हैं कि कई बार ये हमें सुनने में आता है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया या इस रिकॉर्ड को पार कर गया, पिछले इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर हम देखते हैं टेम्परेचर का, तो इसके पीछे स्थानीय मौसम की भूमिका होती है परिस्थितियों की, या फिर कोई वाह इफेक्ट की बात होती है जहाँ पर हम अल नीनो की भी चर्चा करते हैं कि उसका भी असर हो सकता है?
0: आपने बताया कि कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड, तो हमारा टेम्परेचर होता है मान लीजिए अगर एक स्टेशन को हमने फिक्स कर लिया, मान लो दिल्ली का, तो हर साल में तो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा या हर दिन में भी सेम टेम्परेचर, अगर मई महीना ले लीजिए तो पूरा 31 डेज अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है बहुत सारे फैक्टर के कारण, काल देखेंगे तो 7 दिन के बाद 4 डिग्री कम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री कम, ये चेंजेस जो होता है एक सीजन के अंदर ये तो होता है, लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में देखा जाएगा मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर से ज्यादा कितना दिन हो रहा है, तो पहले महीने में कम दिन 40 हो रहा था बहुत पहले, अभी 40 से ज्यादा बहुत दिन हो रहा है, तो इसके चलते चलते कभी कभी हमारा एक एक दिन में कुछ रिकॉर्ड पर नया क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए हमको एक्सट्रीम बोलते हैं। वो ऑलरेडी हर मंथ का हर स्टेशन का हमारे पास मेंटेन रहता है कि अगर ये महीने में ये हफ्ते में अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम देखेंगे यस ये टेम्परेचर ये स्टेशन का सबसे अधिकतम अभी हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि जैसे कि ऑब्जर्वेशन। दूसरा आपने जो एलिनो बात किया, एलिनो का भी प्रभाव रहता है, एलिनो के कारण तो आपका मानसून के में भी ज्यादा प्रभाव रहता है और एलिनो के कारण बारिश भी कम होता है और थोड़ा हीट वेव का भी प्रभाव होता है एलिनो के कारण, बट वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एलिनो एक दिन में ये नहीं है, एक सीजन में एलिनो हो रहा है, कभी कभी लास्ट करता है एक साल तक भी एलिनो रहता है, तो उसके चलते ये जो सीजन में है उसी सीजन में एलिनो का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टाइप का एलिनो के साथ हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे जो एक्सट्रीम होता है वो बाकी लोकल फैक्टर के भी ऊपर निर्भर करता है।
1: मॉनसून का आपने जिक्र किया था, अब जो आने वाला मॉनसून है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: मॉनसून का IMD फोरकास्ट देता है कि सीजन कैसा रहेगा, सीजन कैसा रहेगा, जो कि अप्रैल में हमने 13 तारीख अप्रैल को हमने ये इसके बारे में बताया कि एलिनो आ रहा है, एलिनो पहले बताया कि एलिनो जो है मॉनसून को थोड़ा सा खराब प्रभाव पकड़ता है, मतलब मॉनसून अच्छा नहीं होता जनरली अगर एलिनो होता है तो हमने जो अप्रैल में बताया कि एलिनो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, जून में वीक एलिनो हो जाएगा, जुलाई में मॉडरेट एलिनो हो जाएगा, अगस्त में भी मॉडरेट एलिनो होगा, उसके बाद सितंबर में मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एलिनो होगा, ये हमारा जो फोरकास्ट, उसके चलते हमने मानसून का भी थोड़ा रेनफॉल कम आकलन किया है जो कि 92% जो दिया गया है, तो इसलिए एलिनो के चलते मानसून में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और इसका जानकारी हमने पब्लिक को गवर्नमेंट को सभी को 13 तारीख को दिया, हमने इसमें बताया है।
1: क्या मौसम विभाग ने ये अंदाजा लगाया कि किन इलाकों में बारिश कम रह सकती है या कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है इसके असर से?
0: जनरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं कि जिस स्पेस में कौन सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया ये सब सारा, तो वो भी मैप हम दिए हुए हैं, लेकिन जब एक जगह में एक साल में अगर बारिश थोड़ा सा खराब है जिसको हम बिलो नॉर्मल से अगर कम बारिश हो रहा है, तो साधारण तक ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भाग, नॉर्थ वेस्ट, इसमें तो साउथ में तो कम होने का चांस, थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला जो उसी का फुट पार्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, ये जनरल पैटर्न है। पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा राज्य में कैसा होगा वो मैप में भी हमने दिए हुए हैं।
1: एक सवाल महत्वपूर्ण बड़ा ये बचता है कि आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश हो कि वो किस तरह से इन स्थितियों में, खासतौर पे हीट वेव की परिस्थितियों में, अपनी देखभाल कैसे करें जिससे वो सुरक्षित रह सके।
0: हीट वेव के कारण हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। पहला तो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सन रे को एक्सपोज जितना कम होगा इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना जरूरी ना हो बाहर का जाके काम ना करे पड़े, एंड पानी सफिशियंट पीना चाहिए। ये सबसे बड़ा

0: मेडिसिन है कि आप पानी कंटिन्यूस पीते रहने, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी अपने साथ में रहिए, क्या क्या करोगे एंड सनलाइट एक्सपोजर कम करना है एंड आपका खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किस टाइप का खाना खाएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये जो साधारण ज्ञान है ये हम बताते हैं, और लेकिन ये लोग को करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई कोई हार्ट पेशेंट वीक फैले उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
1: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
0: मौसम विभाग तो हम सारे अपडेट करते रहते हैं, हम जो परिस्थिति है जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, और अगले 7 दिन तक हम बता रहे हैं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो नाउ कास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना होगा, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान देके आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
1: डॉक्टर पटनायक, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे पद्मश्री यानी अभी हाल ही में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है माननीय तगाराम जी भील हमारे साथ हैं और बचपन से लेकर आज तक अनेकों संघर्ष के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और इनका संघर्ष और इनकी कला से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। तगाराम जी, हम बहुत बहुत अपने श्रोताओं की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। और हम शुरू करते हैं आपका वो बचपन। देखिए तगाराम जी, जब बचपन होता है ना

0: अलगोजा पकड़ा, तो ये क्या परिस्थितियां रही कि आप अलगोजा आपके हाथ में कैसे आया और कैसे शुरुआत कैसे हुई इसकी?
1: जी हुकुम, मैंने मेरी जब कम छोटी उम्र में, मैं जब 6-7 साल का था, तब से मेरे पिताजी के पास एक ऊंट था और 4-5-7 बकरियां थी और एक अलगुजा की जोड़ी थी जो पिताजी पहले पुराने टाइम में लाए थे, वो कोई सिंध से मंगाया था पाकिस्तान से, तो वो अलगुजा मेरे पिताजी बजाते। ये क्या कि पहले बनते ही उधर सिंध में ही थे।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो मैं वो बकरियों के साथ मेरे को पिताजी भेज देते थे और मेरे पिताजी क्या कि लकड़ी ऊंट पे लकड़ी बेचते थे, शहर में लेके आते थे उस टाइम में, मतलब बहुत 70 की बात कर रहा हूँ, 70-71 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम में मैं क्या कि पिताजी के अलगुजे रखे हुए, तो छुप छाप उठा करके बकरियों के साथ
0: ले जाते थे।
1: बिल्कुल। तो मेरी माता जी है वो मेरे को कहती थी कि बेटा ये तुम, तेरे पिताजी वापस आएंगे तो अगर तोड़ दिया उसको तो हम तुम्हें मारेंगे। तो मैं को नहीं तोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे करते करते मेरी वो टाइम में मैं बकरियों के साथ बकरी चराते हुए खेलते हुए उस टाइम में 3-4 साल की उम्र में मैंने
0: शुरुआत की थी। अच्छा, जब आपने अलगोजा बजाना शुरू किया था तो आपको क्या उम्मीद थी कि ये कला एक दिन हमको उस पुरस्कार को दिला देगी जिसके लिए लोग यूं कहते हैं कि बहुत सारी मेहनत करते हैं तब भी नहीं मिल पाता? क्या उम्मीद थी कि ये कला आपको कहां तक लेके जाएगी?
1: तो उस टाइम में तो बस 6-7 साल की उम्र कितनी होती है उस टाइम में, मैं ये सोच भी नहीं सकता। तो वो तो मेरे लिए एक खिलौना था कि मैं खेलता था उसके साथ, जो बजाता था मेरे पिताजी, मुझे अच्छा लगता था ना, तो मैं भी उनको कोशिश करता था कि मैं भी बजाऊं। तो इस तरह से ये कहानी चलती रही और मैं जब 3-4 साल तक मैंने मेहनत की तो 10 साल की उम्र में मैंने मेरा सांस वगैरह वो लेना, सांस को चलाना सीख गया। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा, जो औरतें शादियों में गीत गाती हैं, जब कभी शादी होती थी तो वो शादियों में बैठ जाता तो उनका गीत गुनगुनाता था, तो वो गाते गाते थोड़ा गीत भी गुनगुनाने लगा 4 साल के टाइम बाद में। तो ऐसे करते करते मेरा जीवन जो शुरू हुआ, जैसे मैं 10-12-13 साल का हुआ तो फिर मेरे को पिताजी कभी लकड़ी तोड़ने भेज देता था तो भी साथ में रखता था। तो कभी पत्थरों का, जब 15 साल का हुआ तो फिर पत्थरों का काम था, पत्थर भी तोड़ता था तो भी मैं अलगुजा साथ में रखता था। जहाँ भी बकरियों में जाता, पत्थर तोड़ने जाता, कहीं भी जाता, मैं साथ में रखता था, इतना शौक हो गया था इनसे मेरे।
0: मतलब आपका अलगुजा के प्रति जो लगाव था
1: जी
0: और जो साधना थी और वही कारण रहा कि आज भी अलगोजा आपके साथ है और दुनिया में आपने इस कला को यूं कहें कि अपने अलगोजा के माध्यम से पहचान दिलाई है। अच्छा, थोड़ा हम इस वाद्य यंत्र की बात करें
1: जी।
0: तो ये क्या है, हम जो हमारे श्रोता सुनने वाले हैं तो ये अलगोजा एक बांसुरी जैसा देखने में होता है, तो बांसुरी में और इसमें क्या फर्क होता है?
1: बांसुरी का जो होता है ना, वो छेद ऐसे होता है जैसे यूं बजाते हैं, यहाँ पर होता है यहाँ पर, और इसका जो जैसे इधर मुंह बना है, इसकी जीभ भी बनी है, इधर जैसे सांस लेने के लिए ये भी बना है, नाक भी बना है, तो ये मतलब पूरा जैसे गला और जुबान और सब कुछ इसके अंदर उस हिसाब से बन गया है। तो इसका एक गला बन गया, इसके अंदर मतलब हवा जैसे सांस डाल दिया तो इस तरह से ये हो गया।
0: अच्छा, बांसुरी तो सिंगल होती है, ये दो एक साथ होते हैं?
1: हाँ, ये दो।
0: अच्छा, दोनों में क्या अंतर होता है?
1: दोनों में एक दूसरे का सहारा बनता है, ये जैसे ये पकड़ के रखता है, बैस को पकड़ के रखता है तो ये साथ में सुर को पकड़ता है, मतलब सुर इधर उधर ना हो तो इसको पकड़ के रखता है, तो उसको उसमें थोड़ा अच्छा लगता है, दोनों का साथ में एक बीन जैसा आवाज निकलता।
0: अच्छा अच्छा, दोनों की अलग अलग ध्वनि होती है ना? अच्छा, दोनों एक बार बजा के बताएं कि क्या अंतर है इनकी?
1: ये बोल सा जैसा होता ना, तो ये तो नीचे की सा चलाता है,
0: मतलब ये उच्च स्वर और वो जो लो स्वर होता है बेस जिसको, बिल्कुल ठीक है।
1: तो क्या जैसे एक बड़ा आदमी गा रहा है, एक बच्चा गा रहा है,
0: बिल्कुल
1: तो उस तरीके जैसे ये राग ऊपर नीचे,
0: बिल्कुल
1: एक ऊपर की सरगम एक नीचे की सरगम।
0: अब कौन सा जो सुर है गाना कोई निकालना है इसके माध्यम से तो आप बदलते हो कि ये उधर वाले में बजेगा ये इधर वाले में, बहुत कठिन कला है ये।
1: हाँ मतलब इसमें भी हवा को कंट्रोल से
0: पूरा दोनों में अलग अलग करना,
1: दोनों में हवा कंट्रोल से
0: बिल्कुल। देखिए श्रोताओं, जो ये दोनों वाद्य यंत्र अलग अलग, इनकी ध्वनियाँ एक में बेस है, एक में यूँ कहें कि जो उच्च स्वर होता है वो है। अब ध्वनियों को दोनों एक ही मुख के माध्यम से दोनों को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा अब हम बात करें, जो देखिए कोई भी वाद्य यंत्र होता है तो बिना गुरु के उसको सीखना बहुत मुश्किल होता है।
1: सही बात है।
0: तो आपका, हम गुरु आप किसको मानते हो, ये जो बेसिक चीजें किसने सिखाई?
1: जैसे गुरु तो ऐसे शुरुआत में माना तो पिताजी गुरु है, क्योंकि अगर पिताजी नहीं बजाते तो मेरे को मिलता ही नहीं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो गुरु तो वही हो गए, लेकिन एक विद्या गुरु भी होते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो जैसे मैंने जब बजाना सीखा, जब 17-18 साल की उम्र हो गई मेरी, तो उसके बाद में जब मैं किसी ने शहर में सुना कि भाई कोई अलगुजा इधर बनाता है बजाता है, तो उस टाइम एक धना धने खान एक बांदा खुयाले से एक आता था, वो भी बजाता था, तो मेरा भी नाम सुना। तो एक दिन क्या कि अपने जिला जनसंपर्क अधिकारी शंभुदान जी रत्न, उस टाइम में नेहरू योग केंद्र में वो कोई प्रोग्राम करवा रहे थे, तो उस टाइम मेरे को 15 अगस्त की मौके पर मेरे को बुलाया, और वो अकबर खान जी मंगनियार थे, ये आलम खान दरबारी, वो उनको उनके साथ वो लेके आया, और अकबर जी और दोनों में पता नहीं वहाँ में हमारे ढाणियों में कहीं रहते थे हम, वहाँ मूल सागर से बाहर जंगलों में ढाणियों में रहते थे, घर नहीं था हमारे पास, पिता के पास घर था नहीं, कुछ नहीं थे, ऐसे झाड़ियाँ काट करके झुपड़ी बना करके जंगल में ही बैठे होते थे। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पूछे कि आपका बेटा के अलगुजा बजाता है तो कहाँ है, तो वो तो बकरियों के साथ में। तो मैंने को कहे वहाँ से ढूंढते ढूंढते देख वहाँ ढूंढ लिया, और तो फिर मेरे को बोला कि आपको प्रोग्राम में ले जाएंगे वहाँ पर, आज 15 अगस्त का प्रोग्राम है, कलेक्टर के सामने प्रोग्राम करना है। तो मेरे को भाई प्रोग्राम कैसे करते हैं, तो प्रोग्राम अलगुजा बजाना है। अच्छा, और तो कुछ नहीं, और मेरे को प्रोग्राम नहीं आता, अलगुजा में बजा लूंगा। तो इस तरह से मैंने बात किया, क्योंकि समझ में नहीं था, प्रोग्राम था ही नहीं उस टाइम। तो फिर वो वहाँ

0: वो भी सच
1: की शुरुआत हो चुकी थी
0: तो फिर बियासी में मेरा नंबर लगा उसमें।
1: अच्छा वो 15 अगस्त का जो आपने बताया पहली बार आपने कलेक्टर साहब के सामने जो अलगोजा बजाया था, तो उस समय कोई हिचक थी और कौन सी ध्वनि बजाई थी, थोड़ा हमें उसका याद है आपको क्या बजाया था आपने
0: उस टाइम में? ये तो जैसे मोरूबाई ये नए नए गीत उस टाइम पुराने गीत यही चलते थे, मोरूबाई एवड का गीत है मखणो मखणो डोरे मखणा डो थार खेत में खेजड़ियो मखणा दो
1: राजस्थान के उन पर आधारित वो ध्वनियां थी।
0: जैसे
1: तो ये थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाएंगे वो जो पुरानी लोक धुने थी जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी वो जो कहते हैं माखड़ियों या सुनाओ थोड़ा
0: तो ये मतलब जो एवड चराते भेड़ बकरिया गाय भैंस चराते समय ये गीत गाते चलते थे वहाँ पर, तो मखना सुना था दो मखना दो मारे डिबियो ढल गई छांगड़ ली रे मखना दो दो छांगड़ मतलब
1: बिल्कुल बिल्कुल

0: बहुत ही खूबसूरत, देखिए हर कोई इस ध्वनि पे झूमने लग जाए, ऐसी ध्वनि आपके अलगोजा की। और हम श्रोताओं को बता दें, देखिए ये आपने बताया कौन सा गीत,
1: मखणो,
0: मखणो, और इसका अर्थ है कि जब छांग चराते हैं ना भेड़ बकरी, और रेत के पहाड़ों के दूसरी तरफ चली जाती है कि ढल गई, मारवाड़ी में हम कैसे बोलेंगे, वो ढल गई हमारी,
1: हमारी छांगड़ी डिबियो ढल गई, छांगड़ी
0: डिबियो ढल गई,
1: दो रे दो, बस वो ये मतलब चराते हुए समय ये गीत गाया।
0: हाँ, तो ये वो खूब इसका, देखिए जितने की लोकगीत हमारे राजस्थान में है उनका जो अर्थ समझ लेंगे ना तो और ही उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो उस समय ये गीत बजाया जाता था। अच्छा, हम बात करें

0: की कि ये कला आप फिर डेजर्ट फेस्टिवल आया और डेजर्ट फेस्टिवल के माध्यम से ये कला ना सिर्फ हमारे पूरे देश में गई बल्कि जो बाहर के विदेशी पर्यटक आते थे उन्होंने इस कला को बहुत सराहा और फिर जब बाहर जाने लगे तो बाहर के प्रोग्राम आपको कैसे मिले?
1: बाहर के पहली बार मेरा प्रोग्राम हुआ था, मैं 1996 में गया था, तो उस टाइम पहली बार राजस्थान टूरिज्म ने प्रोग्राम दिया था, राजेंद्र सिंह शेखावत जी यहाँ रहते हैं जैसलमेर में, उन्होंने मेरे को और तृप्ति पांडे जी ने उन्होंने मेरे को भेजा था, टूर एक करवा था, तो एक नॉर्थ फेस्टिवल था फ्रांस में, तो उस फेस्टिवल में गया था मैं, तो उस फेस्टिवल में कई कलाकार साथ में थे, तो उस टाइम में वहाँ पर जो लोग सुने मेरा अलगुजा पहली बार सुना ना, तो रात को हमने जब शाम को प्रोग्राम किया तो दूसरे दिन स्कूल वाले आ गए कि हमारे स्कूल में प्रोग्राम करना है, ये बच्चों को दिखाना है कि भाई कैसा है ये हमारे नया नया जो ये अलगुजे वहाँ पर होते ही नहीं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो इसलिए फिर वो स्कूल का प्रोग्राम रखा, तो बहुत ही लोगों ने सराहा, बहुत ही अच्छा वहाँ पर मान्यता, बहुत ही अच्छी हमारे अलगुजों के लिए, बहुत ही सबके कलाकारों के लिए बढ़िया रही। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट जो है दो एक साथ बजाते हैं तो उनको अचंभा होता है कि दो को
0: कैसे बजा लेते हैं। बिल्कुल,
1: बड़ा ही लगा उन लोगों।
0: और अच्छा तकाराम जी, एक और जो विदेशी लोग, तो देखो आपकी भाषा अलग उनकी अलग, लेकिन संगीत की कोई भाषा नहीं होती, उनको भी बहुत अच्छा लगता था, है ना?
1: बस
0: अच्छा, कभी उन्होंने उनके वाद्य यंत्र होते हैं तो प्रयास किया कि इसके साथ हम कहें कि जो संगत करते हैं ना, ऐसा कभी मौका मिला?
1: हाँ, वो कभी कभी, जैसे अब फिर मैं दूसरे टूर में गया था, 3 महीना रहा था मैं यूरोप में, तो हम वहाँ पर कई अंग्रेज है जो कोई गिटार बजा रहा है, कोई क्या बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, तो वो मेरे साथ बैठ जाते थे।
0: बिल्कुल,
1: कई साथ जैसे जो गिटार की तरह सारंगी की तरह, ऐसे अपने यहाँ सारंगी कमाचा होता वहाँ पे अलग अलग है, तो लोग कई
0: बजाते थे
1: साथ में बजाते थे।
0: हाँ, बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा लगता था।
0: अच्छा, फिर उन्होंने कई जो सीखने का प्रयास करते हैं अच्छा लगता है, तो आपका जो घर है वहाँ पर आप कुछ लोगों को सिखाया भी आपने, तो बाहर के लोग भी आते थे, तो वो कितने दिन में क्या कुछ सीखे गए क्या इस कला को?
1: हाँ खूब, आज मैं जब मूल सागर में पहली बार मैंने एक झोपड़ा बनाया था, उसी टाइम में जैसे मैं ढाणी में रहता था, तब वहाँ लोग के रास्ता नहीं था, आ भी नहीं पाते थे।
0: हाँ।
1: तो तब रोड पर बनाया ना, तब लोग वहाँ सब घूमने जाते, तो आते समय उनको सबको पता होता था कि यहाँ पर तकाराम अलगुजे बजाने वाला रहता है, तो गाइड वगैरह वो साथ में ग्रुप के साथ वो आते तो आ जाते थे। फिर मेरे साथ एक पहली बार एक फ्रांस का एक बंदा आया था, तो दो भाई आए थे, तो एक वो बांसुरी बजा रहा था, तो उन्होंने दो कहा कि भैया ये नई चीज़ है मेरे लिए, उन्होंने सुना तो वो करके मेरे को भी खरीदना है, तो उसी टाइम मैंने अलगुजे बनाने ही शुरू कर दिए थे, मैं खुद बनाता हूँ।
0: अच्छा, आज आप ये खुद बना रहे हो?
1: हाँ, खुद बना रहा।
0: अच्छा, अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी लकड़ी का उपयोग होता है?
1: ये तो कैर की है, जो है पीली है, वाइट लकड़ी, और ये ऐसी शीशम की।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये लकड़ी यहाँ पे मिलती है या बाहर से मंगानी पड़ती है?
1: ये तो यहाँ भी है, लेकिन अभी यहाँ भी कम मिलती है, लेकिन बाहर से ही है। मैं अभी गया था कश्मीर, गया था तब वहाँ से लेके आया।
0: ओ, कश्मीर का शीशम,
1: पठानकोट से लाया था ये लकड़ी।
0: अच्छा, देखिए तकाराम जी, प्रत्येक जो माँ बाप होता है वो चाहता है कि अगर आपकी जो कला है इसने इतनी ऊंचाइयां छुई हैं, तो ये आपकी परंपरा बने, आपके पिताजी से आपने सीखा, और फिर क्या आपके बेटे भी इसको बजा रहे हैं?
1: हाँ, एक बेटा बजा रहा है मेरा, मुकेश, बाकी बड़े वाले तो वो नहीं बजा रहे, वो पत्थर का ही काम करते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: मजदूरी पत्थर में ही करते हैं, और एक मुकेश है वो बजा रहा है, तो कई बार मेरे साथ भी बजाया है, मैंने कई बार ले भी।
0: मतलब ये कला आगे आपके परिवार में आगे और बढ़ेगी और ऊंचाइयां छुएगी। अच्छा देखिए, पहली बार जब आपने डेजर्ट फेस्टिवल, एक बड़ा मंच है और वहाँ पर जब स्टेज पर गए थे, तो उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था, क्या नर्वस थे या खुशी हो रही थी, वो वाक्या बताइए।
1: वो डेजर्ट फेस्टिवल में कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे साथ मटके भी बजते थे, ढोलक भी बजते थे, तो जब अलगोजों की लहर चलती थी ना, तो अंग्रेज है वो वहाँ पर बैठे बैठे उठ उठ के नाचने लग जाते।
0: क्या बात है,
1: वो मतलब इतनी, मतलब वो अंग्रेज की धुनी पर लोग आकर्षित होते थे, तो बहुत ही, मतलब इस साज जैसा मेरे को तो लगता है कोई मीठा और साज,
0: बहुत मीठा है। बिल्कुल,
1: तो इसलिए मैंने अभी जिंदगी में जब से मैंने इसको सीखा है तब से मैं अभी भी दिन भर यही काम करता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ।
0: अभी बना रहे
1: हो? हाँ, मेरे कई स्टूडेंट अभी दिल्ली में

0: बहुत खूबसूरत जो हमारी देशभक्ति की रचना आपने अगर तैयार की है तो वो सुनाइए हमारे श्रोताओं के लिए।
1: ठीक है, थोड़ा एक लाइन सुनाऊंगा मैं गीत।
0: कौन सा आप सुनाएंगे?
1: अब
0: मेरे वतन के लोग।
1: नहीं नहीं, तुझे सूरज कहूं या चंदा।
0: अरे वाह क्या बात है। हाँ, ये
1: मेरा राजदुलार।
0: चलिए सुनाइए।

0: जो संगीत है हमारा हर किसी को झूमने को मजबूर कर देता है और इतनी अच्छी अलगोजा की जो मीठी ध्वनि आप बजाते हो इसी के कारण आज ये अलगोजा विश्व के पटल पर और भारत में ही नहीं विदेशों में भी गूंज इसकी सुनाई दे रही है और आज आप हमारे जैसलमेर के एक पद्मश्री बने हैं आपको अवार्ड मिला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है जो सरकार ने आपसे आपको सम्मानित किया है सचमुच हमें गर्व है आपके ऊपर आगे की क्या योजना है कि इस आप क्या चाहते हैं कि इस अलगोजा को और ऊंचाइयां किस प्रकार से दी जा सकती हैं आपकी क्या इच्छा है
1: अब आगे मेरी इच्छा यही है कि अभी तक मैंने जब से अलगोजा बनाने सीखे उसको मैंने को बनाते बनाते 30 साल हो गए 30 सालों में मैंने जो मेहनत करी है इसकी बनाने की वो मैंने अकेले ही करी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ठीक है और कोई मेरा साथी नहीं है मेरा बेटा है तो वो ठीक है घर पे रहते हैं वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा कर लेते हैं लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई बनाने वाला कोई आदमी तैयार है नहीं है लेकिन एक आदमी एक मेरे पास है हमारे भीलों में ही है एक दास नाम है वो लड़का आया था तो मेरे पास बैठता था तो वो भी थोड़ा बहुत बनाना उनको आ गया है तो लेकिन वो जैसे मैं बनाता हूँ उस हिसाब से उनसे बनता नहीं है मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो सरकार ने मेरे को सम्मानित किया है मेरे को भारत सरकार ने जो सम्मान दिया इससे मुझे बहुत खुशी हुई है और सब लोगों का यहाँ जैसलमेर के लोगों का यहाँ के मीडिया के लोगों का आकाशवाणी जो भी है दूरदर्शन है मतलब डेजर्ट फेस्टिवल है सभी जो जिस लोगों ने मुझे बुलाया मैं उसका आभारी हूँ धन्यवाद देता हूँ सबको और भारत सरकार को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे ये पद्मश्री के लिए सम्मानित किया है
0: और बिल्कुल अगर हम आपके जो सफ़र की बात करें जैसलमेर से निकल करके अब तक आपने कितने देशों की यात्रा की है
1: मैंने कम से कम मैंने हिसाब लगाया मेरे हिसाब से मैंने कम से कम 35 देशों की यात्रा
0: 35 देश ये अलगोजा आप लेके गए हो उन 35 देशों में ये बहुत बड़ी बात है न सिर्फ हमारे जैसलमेर के लिए इस वाद्य यंत्र के लिए और आपके लिए भी अच्छा देखिए कोई भी वाद्य यंत्र जब इतनी ऊंचाइयां छूता है तो एक जो उसके ऊपर प्रति लगाव है जो आपका तो आप चाहते हैं कि ये और आगे बढ़े अगर जैसे सरकार आपको कोई सुविधा दे जैसे आपका जहाँ पर घर है एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का तो वहाँ आप क्या चाहेंगे क्या क्या सुविधा आपको दी जाए कि आप आने वाली पीढ़ी जो इसको सीखना चाहते हैं वो वहाँ आकर इस वाद्य यंत्र को सीख सकें
1: बस मेरी तमन्ना यही है मैं मेरी सरकार से यही मांग है कि हमारे जैसलमेर जिले में इसमें ऐसा बनाने वाला कोई है नहीं तो मैं अब चाहता हूँ कि मेरे पास संस्था है रजिस्ट्रेशन कराई हुई है तो क्या अभी उसको अच्छे से चलाने के लिए मुझे सरकार की मदद अगर मिल जाएगी तो मैं और

0: 35 देशों की यात्रा किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में हमारा ये
1: और भी देशों में आगे
0: और
1: जाए,
0: और भी देशों में आगे जाए, ताकि अपना ये साज है जो अपने देश का बहुत नाम रोशन कर रहा है, ये सभी जगह ये इसकी मांग है इसकी। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो लड़के बच्चे हैं, मेरे गाँव के वासी हैं, मेरे ढाणियों में रहते हैं, आस पास के गाँव में रहते हैं, शहर के हैं लोग हैं, जो जिसकी तमन्ना होगी सीखने के लिए, हम वहाँ खोलेंगे तो सब के लिए वो सीखने को मिलेगा।
1: बिल्कुल। और जब ये इतना खूबसूरत है, इतनी ध्वनि है, और हम सब चाहेंगे कि ये और आगे बढ़े और लोगों तक पहुंचे और इस मीठी ध्वनि को हम सब महसूस कर सकें। तगरम जी, एक बात और भी है, देखिए कि जहाँ पर जैसे कि ये आपने कहा पहले सिंध में बनता था,
0: हाँ।
1: सिंध से भारत, मतलब ये जो अलग हो गया तो यहाँ भारत, मतलब हम कहें कि राजस्थान के अंदर,
0: हाँ।
1: आपने इसको बना करके जिस तरह से यहाँ पर इसको ऊंचाइयाँ दी हैं, क्या आपको मालूम है कि जहाँ ये सिंध का जो ये वाद्य यंत्र है, क्या वहाँ भी बजाने वाले हैं, क्या आपके संपर्क में है?
0: हाँ, सिंध वाले लोग अभी जो पहले सिंध में बनते थे ना, वो सिंध वाले लोग क्या, वो बलूचिस्तान के लोग है जो वो ज्यादा बनाते हैं, वो बलूचिस्तान अलग हो गया। अब सिंध में जो लोग है उनके पास भी मुश्किल से मिलता है, तो वो भी बलूच से मंगाते हैं। तो भले सिंध वाले हो नहीं, मेरे को एक दो आदमियों ने पहले कोई इसमें फेसबुक में लिखा कि भाई आपकी तगरम जोड़ी बनाई हुई भेजो।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा भाई पैसा आप मेरे पास कैसे पहुंचाओगे? तो कहा आपका ऑनलाइन नंबर दे दो मेरे को। भाई नंबर से तो मैं दे नहीं सकूंगा, क्योंकि हमारे कोई अनपढ़ आदमी हूँ मैं, कहीं उसके CID के चक्कर में कहीं फंस ना जाऊं। तो मेरे को भैया आपका कोई आदमी आएगा यहाँ पर तो मैं दे दूंगा,
1: ले जा सकता।
0: पासपोर्ट पे कोई आ जाए तो मैं दे दूंगा, बाकी मेरे,
1: क्योंकि ये इतना खूबसूरत वाद्य यंत्र है, कई विदेशी लोग जो आते हैं आपकी ध्वनि सुनकर के वो भी मांग करते होंगे कि हमको बना के दे दो, तो क्या उनके लिए भी आप बना के देते हो उनको?
0: हाँ बिल्कुल, अभी भी एक मेरे पास मैसेज आया हुआ इटली का, वो बस आने वाला 8-10 दिन में, तो उनके लिए मैंने वो उन्होंने ऑर्डर दिया है, तो एक जोड़ा उनको लिए बना के रखूंगा। और ऐसे मतलब मेरे पास एक पहली बार जब फ्रांस का ऑर्डर आया था, वो उन्होंने मेरे को एक मशीन भी दिलाई थी।
1: अच्छा, बनाने
0: 50,000 की। वो उनको क्या कि पहली बार तो मैंने उसको 5-6 जोड़ियां दी थी, तो फिर वो 2 साल बाद आया तो खूब और सारा ऑर्डर लेके आया, तो मेरे को 150 जोड़ी बनानी थी। तो अब वो बोल रहा था कि भाई तू ऐसे बनाएगा तो
1: कब बनेगा,
0: साल भर में भी नहीं बनेगा, तो कोई उपाय है? तो उपाय तो मशीन ऐसे हो तो फिर मैं बन सकती।
1: क्या बात।
0: हाँ, तो क्या वो फर्नीचर वाली मशीन जो वो मैंने आइडिया लगाया, तो मैं उसमें कुछ जुगाड़ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो फर्नीचर वाली मशीन हम उस टाइम में आज से 25 साल पहले से
1: लाए थे आप,
0: लाया था मैं, तो वो अंग्रेज बेचारा वो साथ में ले जा करके मुझे दिलाई थी,
1: और
0: तो
1: उसी मशीन से आज भी
0: उसी मशीन से अब मैं थोड़ा राहत मिली है मुझे, क्या बनाने के लिए थोड़ा आसान से बनता है। तो फिर मैंने उनको 100 जोड़े
1: बना के दिए
0: स्पीड से, एक साल के अंदर 100 जोड़ी बनाई
1: थी।
0: उस टाइम क्या कि मैंने थोड़ा स्टाफ भी लगाया था, तो हो गया था।
1: तो ये भारत का वाद्य यंत्र विदेशों में भी खूब जा रहा है और डिमांड भी है, और उसका कारण है हमारे तगाराम जी। और तगाराम जी, हम बात करें आपकी, बहुत मीठी एक मधुर दिन है मेरे वतन के लोगों, हम चाहेंगे

बहुत खूबसूरत। और देखिए तगाराम जी, आपकी ये ध्वनियाँ आपको उस ऊंचाई पर लेकर आई हैं जहाँ पर हर किसी की कामना होती है। और ये अलगोजा के माध्यम

0: श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना हरिहरन द्वारा गाई ये रचना। सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पर। श्रोताओं, रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी सायंकालीन सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह पहली सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।